ये आकाशवाणी जोधपुर का एफएम सन सिटी चैनल है। एफएम बैंड 102.1 मेगा हर्ट्ज पर। आज गुरुवार है, शक संवत 1948 के वैशाख माह की 24वीं तिथि तदनुसार, दिनांक 14 मई सन 2026। इस समय सवेरे के 5:57 होने को है। हमारी आज की पहली सभा अब आरंभ होती है।

0: ये आकाशवाणी जोधपुर का FM सन सिटी चैनल है। कुछ ही पलों में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार रिले किए जाएंगे।
1: समाचार के साथ मैं फरहत नाज। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए खरीफ की 14 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने किसानों को उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए ये फैसला किया है।
2: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 260,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा इस पूरे फैसले से। और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन LMT।
1: श्री वैष्णव ने बताया कि सूरजमुखी के बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में 622 रुपये प्रति क्विंटल, कपास के लिए 557 रुपये और तिल के लिए 500 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। मंत्रिमंडल ने कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के लिए संवर्धन योजना को भी मंजूरी दी है। ये योजना भारत के कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी से देश के करोड़ों किसानों को उपज का उचित और लाभकारी मूल्य मिलेगा। श्री मोदी ने कहा कि अहमदाबाद धुलेरा सेमी हाई स्पीड डबल लाइन परियोजना देश की रेल विकास यात्रा के लिए महत्वपूर्ण पड़ाव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव सीवी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि श्री मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान से मुलाकात करेंगे।
3: During the visit, यात्रा के दौरान दोनों नेता निवेश, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, संस्कृति और आपसी जनसंपर्क समेत विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने के उपायों पर चर्चा करेंगे।
4: People to people connect।
1: ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की 2 दिवसीय बैठक आज से नई दिल्ली में शुरू हो रही है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। दूसरे दिन ब्रिक्स के सदस्य और सहयोगी देश ब्रिक्स एट 20 लचीलेपन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण विषय पर आधारित सत्र में हिस्सा लेंगे। इसके बाद वैश्विक शासन और बहुपक्षीय प्रणाली में सुधार पर सत्र आयोजित किया जाएगा। भारत इस वर्ष ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है।

0: मिट्टी से खेलते हो बार बार किस लिए। लता मंगेशकर की आवाज में शैलेंद्र का लिखा गीत अभी आप सुन रहे थे पतिता फिल्म से। संगीत शंकर जयकिशन का था।
1: जैसे कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर। लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आए और अपने दोस्तों को लेकर आए।
0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी। आपके जीवन में घोलते हैं संगीत भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें धुनों की अनूठी परवाज सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

लता मंगेशकर और तलत महमूद की आवाजों में परछाई फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में। नूर लखनवी ने इस गीत को लिखा था और सी रामचंद्र ने इस गीत की धुन बनाई थी। भूले बिसरे गीत कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं। इस कार्यक्रम में अब समय है कि एक बहुत छोटा सा अंतराल लिया जाए। अंतराल के बाद फिर से उपस्थित होंगे हम।

0: दीवाना फिल्म का गीत आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज में। शकील बदायूनी ने इस गीत को लिखा था, नौशाद ने इस गीत की धुन बनाई थी।
1: कुछ रेशमी ख्वाब, कुछ मखमली अंदाज।

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

ये कैसी बोल रही दुनिया। दाग फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में। बोल लिखे थे शैलेंद्र ने और धुन बनाई थी शंकर जयकिशन ने। लीजिए अब सुनिए मोहम्मद रफी और कमल बारोट की आवाजों में आनंद बख्शी का लिखा हुआ गीत। संगीतकार हैं कल्याण जी आनंद जी। फिल्म का नाम है फूल बने अंगारे।

0: हस्बैंड, तू है मेरी वाइफ,
1: यही ऑफिसर्स तो रहेगा सारी लाइफ।
0: अरे मैं हूँ तेरा हस्बैंड, तू है मेरी वाइफ।

0: याद है तुझे वो मेरा तान तोड़ सांग
1: सांग छपा है तो वो थी मुर्गे की बांग
0: याद है तुझे वो मेरा तान तोड़ सांग
1: सांग छपा है तो वो थी मुर्गे की बांग
0: तूने उसी बांग पे कहा था वन सवार।

जग्गू फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। आवाज थी मधुबाला चावेरी की, भरत व्यास की रचना आपने सुनी और हंसराज पहल का संगीत था। इसी गीत के साथ ही आज का भूलिए बिसरिए गीत कार्यक्रम यहीं समाप्त करने की इजाजत सविता सिंह को दीजिए। नमस्कार।

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।
1: कम प्रीमियम ज्यादा बोनस अपनों के लिए सबसे सही आरपीएल लाइफ, इससे बेहतर कुछ नहीं।
2: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस आरपीएलआई की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
3: हम बोल रहे हैं विविध भारती से। हम है राही प्यार के इस कार्यक्रम के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

0: प्रस्तुत है कार्यक्रम हम है राही प्यार के। इस कार्यक्रम में आप सभी को नमस्कार, सविता सिंह का।
1: मैं तुझे प्यार करूंगा तो

मैं तुझे प्यार करूंगा तो तेरी याद आएगी, तेरी याद आएगी तो हम तुम मिलेंगे, हम तुम मिलेंगे तो, हम तुम मिलेंगे तो सब लोग देखेंगे, सब लोग देखेंगे तो, देखेंगे तो

आनंद बख्शी ने लिखा था और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने तर्ज बनाई थी। लीजिए अब सुनिए जख्मी फिल्म का गीत। ये आवाजें हैं किशोर कुमार और आशा भोसले की, गौहर कानपुरी की ये रचना है और बप्पी लहरी की तर्ज।

जैसे कि आप जानते हैं, विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने, देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।

एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन। अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का

संजो रहा है सांस्कृतिक धरोहर का श्रोताओं से नाता, सांगीतिक परंपरा की खोज और फिल्म संगीत में शास्त्रीयता।

0: सुनना न भूले प्रतिदिन सुबह और शाम 6:45 पर विविध भारती का कार्यक्रम संगीत सरिता।
1: अरे सुनो, कल 3 बजे की टिकट बुक कर लूं? सब लोग कह रहे हैं कि वो मूवी बहुत अच्छी है।
2: 3 बजे? मैं तो 3 बजे बिजी हूँ, शाम का शो बुक कर लो।
1: यार ऐसा क्या कर रही हो तुम कल 3 बजे?
2: कमाल है, इतना भी नहीं समझते। अरे 3 बजे हम सब मिलकर सुनते हैं
3: सखी सहेली।
4: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हम है राही प्यार के। इस कार्यक्रम में एक बहुत छोटा सा अंतराल लेते हैं।

कब मिलोगी। यह फिल्म का नाम जिसका गीत अभी आप सुन रहे थे, लता मंगेशकर मुकेश की आवाजें थी और संगीतकार थे आर डी बर्मन। लीजिए आप सुनिए लता मंगेशकर किशोर कुमार की आवाजों में हाथ की सफाई फिल्म का गीत। गीत गुलशन बाबरा का है, संगीतकार हैं कल्याण जी आनंद जी।

रात की सफाई फिल्म का गीत लता मंगेशकर किशोर कुमार की आवाजों में आप सुन रहे थे। गीत गुलशन बाबरा का था, संगीतकार थे कल्याण जी आनंद जी। लीजिए अब सुने लता मंगेशकर और मुकेश और साथियों की आवाजों में रोटी कपड़ा और मकान फिल्म का ये गीत।

रोटी कपड़ा और मकान फिल्म का गीत लता मंगेशकर, मुकेश के और साथियों की आवाजों में आपने अभी सुना। संतोष आनंद ने इस गीत को लिखा था और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने धुन बनाई थी। इसी गीत के साथ ही आज का हम है राही प्यार के कार्यक्रम समाप्त करने की दीजिए इजाजत। सविता सिंह को नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी जोधपुर का FM सनसिटी चैनल है। FM बैंड 102.1 MHz पर इस समय सवेरे के 8 बजने को है। कुछ ही पलों में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार प्रभात रिले किए जाएंगे।
1: आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की दो दिवसीय बैठक आज से नई दिल्ली में शुरू हो रही है। असम सरकार 26 मई को विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक प्रस्तुत करेगी। भारत ने घरेलू कीमतों पर नियंत्रण के लिए इस वर्ष सितंबर तक चीनी के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया। पश्चिम बंगाल सरकार ने आलू, प्याज, फल, सब्जियों, अनाज और अन्य आवश्यक वस्तुओं की अंतर राज्य आवाजाही पर सभी प्रतिबंध हटाए। उत्तर प्रदेश में बारिश, आंधी और बिजली गिरने की घटनाओं में 60 लोगों की मौत। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निदेशक प्रवीण सूद का कार्यकाल एक वर्ष बढ़ाया गया। और IPL क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 6 विकेट से हराया। विराट कोहली ने रचा इतिहास। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की दो दिन की बैठक आज से नई दिल्ली में शुरू हो रही है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे।
2: बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री पारस्परिक हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। बैठक के दूसरे दिन ब्रिक्स A20 लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण विषय पर एक विशेष सत्र आयोजित किया जाएगा। इसके बाद वैश्विक शासन और बहुपक्षीय प्रणाली में सुधार पर चर्चा की जाएगी। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की पिछली बैठक 26 सितंबर 2025 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र के दौरान हुई थी। बैठक की अध्यक्षता भारत ने 2026 के लिए ब्रिक्स अध्यक्ष के रूप में की थी। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव सिबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि श्री मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे। पिछले पांच

0: महीने में प्रधानमंत्री मोदी और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान की दूसरी मुलाकात होगी। दोनों नेताओं की पिछली बैठक जनवरी में नई दिल्ली में हुई थी।
1: भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच ऊर्जा और व्यापार के क्षेत्र में मजबूत साझेदारी है। इस बारे में खाड़ी क्षेत्र के लिए अपर सचिव असीम महाजन ने बताया।
2: The UAE is an important partner.
3: UAE हमारी ऊर्जा सुरक्षा का महत्वपूर्ण साझेदार है। पिछले साल UAE भारत के लिए कच्चे तेल का चौथा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता था और उसने हमारी कुल जरूरत का लगभग 11% तेल उपलब्ध कराया। LNG के क्षेत्र में भी भारतीय कंपनियों और UAE की आबुधाबी नेशनल ऑयल कंपनी के बीच दीर्घकालिक समझौते हुए हैं, जिनके तहत भारत को कुल 4.5 MMTPA LNG की आपूर्ति की जाएगी।
2: MMTPA LNG to India।
1: भारत के यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI और संयुक्त अरब अमीरात के आनी सिस्टम को जोड़ने से दोनों देशों के बीच व्यापार करना पहले से आसान हो गया है। पश्चिम एशिया संघर्ष के बीच आबू धाबी में होने वाली यह बैठक दोनों देशों के मजबूत और दीर्घकालिक रिश्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से चाहत सिंह।
0: असम सरकार 26 मई को विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक प्रस्तुत करेगी। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने कल अपने नए कार्यकाल की पहली मंत्रिमंडलीय बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में ये घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि विधानसभा का विशेष सत्र 21 से 26 मई तक चलेगा। इसमें नव निर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी।
4: यूनिफॉर्म सिविल कोड विधेयक सत्र के अंतिम दिन यानी 26 मई को पेश किया जाएगा। प्रस्तावित कानून में विवाह की आयु, बहुविवाह, उत्तराधिकार और लिविंग संबंधों जैसे विषय शामिल होंगे। धार्मिक प्रथाओं को इस विधेयक के दायरे से बाहर रखा जाएगा, जबकि राज्य के पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों में रहने वाले जनजातीय समुदायों को भी प्रस्तावित कानून के दायरे से बाहर रखा जाएगा। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: उत्तराखंड और गुजरात के बाद असम नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का तीसरा राज्य होगा। सरकार ने घरेलू कीमतों पर नियंत्रण के लिए इस वर्ष सितंबर या अगले आदेश तक चीनी के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन विदेश व्यापार महानिदेशालय की अधिसूचना में ये जानकारी दी गई। ये प्रतिबंध अमरीका, यूरोपीय संघ और अन्य देशों की खाद्य सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निर्यात की जा रही चीनी पर लागू नहीं होगा। निर्यात प्रक्रिया में पहले से मौजूद खेपों को भी छूट दी गई है। पश्चिम बंगाल सरकार ने आलू, प्याज और अन्य आवश्यक उत्पादों को अन्य राज्यों में ले जाने पर लगे सभी प्रतिबंध हटा दिए हैं। ये प्रतिबंध पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस सरकार ने लगाए थे। इन प्रतिबंधों से आलू उत्पादक किसानों और अन्य संस्थाओं को भी भारी नुकसान हुआ था। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव से पहले राज्य के किसानों को प्रतिबंध हटाने का आश्वासन दिया था।
5: आलू, प्याज, सब्जियां, फल, खाद्यान्न और तिलहन जैसी वस्तुओं अब बिना किसी बाधा के राज्य की सीमाओं के पार स्वतंत्र रूप से भेजी जा सकती है। जिला प्रशासन, पुलिस और परिवहन अधिकारियों को इस आदेश के सुचारू क्रियान्वयन के सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। यह निर्णय छोटे और सीमांत किसानों के साथ साथ व्यापारियों को भी लाभ पहुंचाएगा। अब किसानों की उनकी उपज का उचित मूल्य मिलेगा। मुख्यमंत्री ने यह भी चेतावनी दी कि यदि माल से भरे वाहनों को अंतर्राज्य सीमाओं पर अनावश्यक रूप से रोका या परेशान किया गया तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। संदीप अंदाज गुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
6: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
7: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
6: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए खरीफ की 14 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने किसानों को उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए यह फैसला किया है।

0: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 2,60,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन।
1: श्री वैष्णव ने बताया कि सूरजमुखी के बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में 622 रुपए प्रति क्विंटल, कपास के लिए 557 रुपए और तिल के लिए 500 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में बारिश, आंधी और बिजली गिरने की घटनाओं में 60 लोगों की मौत हो गई। एक रिपोर्ट।
2: मौसम में आए अचानक बदलाव ने राज्य भर में भारी तबाही मचाई है। आंधी, भारी बारिश और बिजली गिरने से कई लोगों की जान चली गई है। प्रयागराज में 17, भदोही जिले में 15, मिर्जापुर में 10, फतेहपुर में 9, बदायूं

0: भदोही जिले में 15, मिर्जापुर में 10, फतेहपुर में 9, बदायूं में 5 और बरेली जिले में 4 लोगों की मौत हो गई है। 100 से ज्यादा लोग घायल भी हैं जिन्हें अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। सबसे ज्यादा मौतें बिजली गिरने की घटनाओं के कारण हुई हैं। विभिन्न जिलों से बिजली के खंभे और पेड़ गिरने की घटनाएं भी सामने आई हैं, जिससे बिजली आपूर्ति और सड़क यातायात प्रभावित हुआ है। बारिश के साथ हुई ओलावृष्टि से फसलों को भी भारी नुकसान हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की और उन्हें अगले 24 घंटों के भीतर प्रभावित लोगों को मुआवजा दिलाने का निर्देश दिया। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: केंद्र सरकार ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निदेशक प्रवीण सूद को एक वर्ष का सेवा विस्तार दे दिया है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के आधिकारिक आदेश के अनुसार मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने ये मंजूरी दी। श्री सूद का कार्यकाल 24 मई को समाप्त होना था। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग की महत्वपूर्ण शिखर बैठक आज से शुरू हो रही है। श्री ट्रंप पेकिंग पहुंच गए हैं। 2 दिन की बैठक में ईरान से युद्ध, ताइवान को अमरीकी हथियारों की बिक्री, व्यापार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टैरिफ जैसे कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की उम्मीद है। ये बैठक दुनिया की 2 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच बढ़ती आर्थिक और तकनीकी स्पर्धा के बीच हो रही है।
2: अमेरिकी राष्ट्रपति अपने साथ कई शीर्ष व्यापार और प्रौद्योगिकी अधिकारियों को लेकर गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपनी यात्रा से पहले आशा व्यक्त की है कि इस बैठक से आने वाले दशकों तक अमेरिका और चीन के बीच मजबूत संबंधों का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। राष्ट्रपति ट्रंप के साथ विदेश मंत्री मार्को रूबियो और रक्षा मंत्री पीट हेक्सेथ सहित वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी और व्हाइट हाउस के प्रमुख सहयोगी भी गए हैं। इस यात्रा पर वैश्विक स्तर पर कड़ी नजर रखी जा रही है, क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप और शी जिनफिंग की ये मुलाकात व्यापार, प्रौद्योगिकी और रणनीतिक प्रभाव को लेकर दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव के समय हो रही है। 2017 के बाद राष्ट्रपति ट्रंप की चीन की यह पहली आधिकारिक यात्रा है। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: आईपीएल क्रिकेट में विराट कोहली ने कल रात रायपुर में कोलकाता नाइट राइडर्स पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की 6 विकेट की जीत के दौरान इतिहास रचा और कई कीर्तिमान ध्वस्त किए। कोहली ने 60 गेंद में नाबाद 105 रन बनाए। ये आईपीएल में उनका 9वां शतक है, जो इस टूर्नामेंट के इतिहास में किसी भी खिलाड़ी के सबसे ज्यादा शतक हैं। वे T20 में सबसे तेज 10,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने क्रिस गेल का कीर्तिमान ध्वस्त करते हुए 409 पारियों में ये उपलब्धि हासिल की। गेल ने 423 पारियों में ये रिकॉर्ड बनाया था। कोहली ने इस आईपीएल में 400 रन भी पूरे कर लिए हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स ने 20 ओवर में 4 विकेट पर 192 रन बनाए। जवाब में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 19 ओवर और एक गेंद में 4 विकेट के नुकसान पर 194 रन बनाकर मैच जीत लिया। विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। टूर्नामेंट में आज शाम 7:30 बजे धर्मशाला में पंजाब किंग्स का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। मौसम विभाग ने आज पश्चिम मध्य प्रदेश और पश्चिम राजस्थान के कुछ इलाकों में लू चलने की संभावना जताई है। साथ ही पूर्वी राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में भी लू की स्थिति बनी रह सकती है। वहीं अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में भी भारी बारिश का अनुमान है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, केरलम, माहे, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी और काराइकल में अगले 3 दिन भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, बिहार, छत्तीसगढ़, चंडीगढ़, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों में आज गरज चमक और बिजली गिरने की आशंका जताई गई है। मौसम विभाग ने झारखंड, तटीय कर्नाटक और उत्तर आंतरिक कर्नाटक में अगले 2 दिन तक तेज आंधी और गरज के साथ बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
3: धन्यवाद मुकेश। विदेशी मुद्रा की बचत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर कार्रवाई शुरू होने की खबर पर नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, पीएम मंत्र समझदारी से खर्च बनेगा, देश का आर्थिक कवच कटौती नहीं, स्मार्ट लाइफ की सलाह, हम मिलकर कर सकते हैं ये सब। हिंदुस्तान का शीर्षक है, सख्ती संयम का समय शुरू, मोदी और शाह ने गाड़ियों के काफिले में कटौती की, उत्तराखंड में वर्क फ्रॉम होम और एक दिन नो व्हीकल डे। जनसत्ता का शीर्षक है, सोने चांदी पर आयात शुल्क शेष से बढ़कर 15%। इसी खबर पर दैनिक जागरण ने फिजूल खर्ची की संस्कृति शीर्षक से संपादकीय में लिखा है कि ये अच्छा है कि प्रधानमंत्री ने अपनी कारों के काफिले में कटौती कर इसका उदाहरण पेश किया कि वो जो कुछ औरों को करने के लिए कह रहे हैं उस पर स्वयं अमल कर रहे हैं। आशा है कि भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और मंत्री भी इसका अनुसरण करेंगे। अमर उजाला ने नीट पेपर लीक पर सुर्खी दी है। सीबीआई

0: मारे कई जगह छापे एनटीए मुख्यालय भी पहुंची एजेंसी चार और गिरफ्तार 40 लाख तक में बिका पेपर पंजाब केसरी का शीर्षक है तमिलनाडु में फ्लोर टेस्ट में विजय की शानदार विजय समर्थन में 144 और विरोध में 22 वोट पड़े दैनिक भास्कर ने केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसले देते हुए लिखा है धान का समर्थन मूल्य 72 रुपए बढ़ाकर 2441 रुपए किया खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में भी इजाफा जनसत्ता का कहना है प्रधानमंत्री मोदी कल से 5 देशों की यात्रा पर सबसे पहले यूएई जाएंगे एलपीजी और रणनीतिक तेल भंडार पर करार संभव राजस्थान पत्रिका के अनुसार ईरान को ब्रिक्स से आस कहा अधिकार की रक्षा करें पत्र के अनुसार दिल्ली बनी केंद्र भारत मंडपम में जुटेंगे कई विदेश मंत्री दैनिक ट्रिब्यून का शीर्षक है हरियाणा निकाय चुनाव में कमल का क्लीन स्वीप हुड्डा के गढ़ से लेकर तीनों निगमों तक भाजपा का दबदबा पीएम मोदी ने जताया आभार लोकसत्य की सुर्खी है सीबीआई निदेशक प्रवीण सूद का कार्यकाल एक साल बढ़ा देशबंधु ने महंगाई का एक और झटका शीर्षक से लिखा है अमूल ने बढ़ा दिए दूध के दाम 2 रुपए प्रति लीटर दैनिक जागरण की सुर्खी है 12वीं में अव्वल बेटियां ही बेटियां पत्र के अनुसार सीबीएसई की 12वीं कक्षा की कॉपियां स्क्रीन पर जांची गई 7 साल में सबसे कम रहा रिजल्ट
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की 2 दिवसीय बैठक आज से नई दिल्ली में शुरू हो रही है असम सरकार 26 मई को विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक प्रस्तुत करेगी भारत ने घरेलू कीमतों पर नियंत्रण के लिए इस वर्ष सितंबर तक चीनी के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया पश्चिम बंगाल सरकार ने आलू प्याज फल सब्जियों अनाज और अन्य आवश्यक वस्तुओं की अंतर राज्य आवाजाही पर सभी प्रतिबंध हटाए उत्तर प्रदेश में बारिश आंधी और बिजली गिरने की घटनाओं में 60 लोगों की मौत और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निदेशक प्रवीण सूद का कार्यकाल एक वर्ष बढ़ाया गया इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ नमस्कार
2: ये आकाशवाणी जोधपुर का FM सेंसिटी चैनल है FM बैंड 102.1 मेगा हर्ट्ज पर लीजिए सुनिए फिल्म संगीत फिल्म संगीत में लीजिए सबसे पहले सुनिए रब ने बना दी जोड़ी इस फिल्म का गीत आवाज़ है सुखविंदर सिंह की बोल है जयदीप सहानी के और संगीत है सलीम सुलेमान का

आइए अब अगला गीत सुनते हैं उदित नारायण और महालक्ष्मी अय्यर की आवाज़ों में फिल्म टशन से। बोल है पीयूष मिश्रा के, संगीत है विशाल शेखर का।

लीजिए, सुनिए आतिफ असलम और अलका याग्निक की आवाज़ों में किस्मत कनेक्शन फिल्म का ये गीत। बोल है शैयद कादरी के और संगीत है प्रीतम का।

ये आकाशवाणी जोधपुर का FM सेंसिटी चैनल है। FM बैंड 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर प्रस्तुत है कार्यक्रम नमस्कार।

नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन सभी सुधी श्रोताओं का। फिर एक नई सुबह, फिर एक नया दिन और सूरज की हर उठती किरण कह रही है आज कुछ अच्छा जरूर होगा। और इसी सुंदर सोच के साथ शुरू करते हैं आज का हमारा मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम नमस्कार।

जी हाँ दोस्तों, यही तो दस्तूर है जीवन का कि हर शाम ढलते ढलते कुछ नई उम्मीदें, कुछ नए सपने सजा जाती है हमारी आंखों में, कि सुबह जब आंख खुलेगी तो एक नए जोश, एक उल्लास के साथ उन उम्मीदों को, उन सपनों को पूरा करने में हम अपनी पूरी एनर्जी लगा देंगे। जैसे जैसे दिन बीतेगा हम अपनी सफलता की नई इबारत लिखेंगे और शाम होते होते फिर कुछ नए सपनों का ताना बाना बनने लगेंगे। हम भी हर सुबह एक नई ताजगी के साथ इंतजार करते हैं उस नियत समय का जब हमें आपसे मिलना होता है। घड़ी की ठीक 8:30 बजाते ही हम अपनी पूरी टीम के साथ अपना दैनिक कार्यक्रम नमस्कार लेकर हाजिर हो जाते हैं। तो चलिए, इससे पहले कि हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, करवाते हैं आपका अपनी टेक्निकल टीम से परिचय। तो दोस्तों, आज HPT ट्रांसमीटर से हमें साथ मिल रहा है प्रकाश पंवार और नरेंद्र सिंह राठौड़ का।

0: कंट्रोल रूम से हमारे साथ हैं सुनील जयपाल। और प्राइमरी चैनल के इस कंसोल पर अपनी उंगलियों को थिरकाते हैं शराफत अली। और वहीं एफएम चैनल के कंसोल की कमान संभाले हैं साक्षी। हमारे इस प्रोग्राम का संयोजन किया है राजेश लामरोड ने। और मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम नमस्कार के प्रस्तुत करता है संजय व्यास। और इस पूरी टीम के साथ मैं कविता पवार
1: और मैं लीना माथुर
0: एक बार फिर से करते हैं आपका स्वागत अभिनंदन।

0: से बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: उफ, इस पथरी की परेशानी ने तो परेशान कर रखा है, कहाँ कहाँ इलाज ना करवाया।
3: अब चिंता की कोई बात नहीं, गुर्दे की पथरी का सफल इलाज, बिना ऑपरेशन, बिना चीरा, बिना टाके,
4: सीमेंस आधुनिकतम लिथोट्रिप्सी मशीन से।
5: प्रोस्टेट गुर्दा रोग के इलाज हेतु
4: कमला नगर अस्पताल, पाल लिंक रोड, जोधपुर।

0: दोस्तों, जीवन निरंतर चलने रहने की चलते रहने की एक प्रक्रिया है। यहाँ चलने की स्पीड का कम या ज़्यादा होना बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता। अगर कुछ मायने रखता है तो वो ये कि निरंतर चलते रहना, आगे बढ़ना। और जब आगे बढ़ने की प्रक्रिया जो है वो अनवरत चलती है तो उसमें कई बाधाएं, कई मुश्किलें भी सामने आती हैं।
1: ये जरूरी है।
0: हाँ,
1: क्योंकि यही जिंदगी को रंग भरते हैं।
0: बिल्कुल।
1: और अगर मुश्किलें आती हैं तो उससे निपटने के लिए कई बार हमें रिस्क भी लेना पड़ता है।
0: बिल्कुल।
1: और जो जीवन में रिस्क लेना सीख लेता है या उसकी हिम्मत कर लेता है, वही इंसान इतिहास के पन्नों को बदलने की ताकत भी रखता है।
0: तो फिर जैसी भी परिस्थिति हो, जैसी भी सिचुएशन हमें अपने जीवन में मिले, उसमें हिम्मत के साथ आगे बढ़ते रहना ही हमारी समझदारी है।
1: बेशक,
0: है ना? और इस तरीके से आगे बढ़ने से हम सिर्फ अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचते, बल्कि उस शिखर पर हम पहुंचते हैं जहां पर हम अपनी, सिर्फ अपनी नहीं, अपने साथ, अपने समाज की और अपने पूरे कुनबे की सफलता का परचम लहरा सकते हैं।
1: जी बेशक।

0: दोस्तों, जब हम जीवन यात्रा की बात करते हैं ना, तो यात्रा में ही छुपा है कि जीवन निरंतर चलते रहने का नाम है। हाँ, ये अलग बात है कि किसके जीवन की कितनी अवधि है ये निर्धारित नहीं है। कोई अपने जीवन में छोटी सी दूरी तय करके अपने स्टेशन पर उतर जाता है या अपना मन चाहा मकाम पा लेता है। कोई व्यक्ति लंबी दूरी तय करने के बाद भी अपने मन चाहे मकाम पर नहीं पहुंच पाता, लेकिन वो लंबी दूरी तय करता है, पर ठहरता कोई नहीं।
1: हाँ, ठहरता नहीं है, सब अपनी इस यात्रा में जो है चलते ही रहते हैं। अब जहाँ तक इस यात्रा का सवाल है, यात्रा के दौरान जो परेशानियाँ, जो विवाद हमारे मन पर बोझ बना देते हैं, तो ठीक रहेगा कि हम उस बोझ को अपने मन पर लेकर ना चलें,
0: जी
1: क्योंकि ये तो हम यात्रा के दौरान देखते ही हैं ना कि हमारे पास सामान जितना कम होगा,
0: जी
1: यात्रा उतनी ही सुखद होगी। तो बेहतर है कि जो भी परेशानियां आती हैं या जो भी मुश्किलात आती हैं, उनको हम अपने साथ लेकर ना चलें, बजाय इसके कि हम उनको लेकर चलें, उनको ढोएं अपने साथ, हम उनको सॉल्व करने की
0: वैसे
1: कोशिश कर
0: नीरा
1: रहे
0: जी,
1: हैं।
0: सड़कों पर भी देखा होगा तो स्पीड ब्रेकर्स जरूरी है
1: हाँ,
0: ना?
1: स्पीड
0: तो
1: ब्रेकर्स।
0: व्यवधान आना जरूरी है, क्योंकि व्यवधान आने से आपके जीवन की जो गति है वो कुछ पल के लिए ठहरती है, सोचने का वक्त देती है और फिर आगे बढ़ने को
1: और
0: प्रेरित
1: फिर
0: करती है।
1: शायद वो आपकी गति को एक तेजी भी देती
0: तेजी
1: है ना,
0: उड़ा, जी
1: आपकी
0: जी
1: कार्य क्षमता को भी बढ़ाती है
0: बेशक।
1: ना। तो
0: हाँ
1: ये इस तरीके से जो ये जीवन यात्रा, इसमें सबसे ज्यादा अनमोल यात्रा, जीवन यात्रा की हम बात करें तो सबसे ज्यादा अनमोल है रिश्ते, है ना। और
0: निश्चित रूप से,
1: रिश्तों में कभी किसी की कोई कड़वी बात या कोई प्रतिकूल परिस्थितियां अगर रिश्तों पर हावी हो जाए, तो उन्हें थोड़ा सा लेट गो करना भी चाहिए, है ना।
0: बिल्कुल
1: क्योंकि
0: बिल्कुल
1: संबंध हो या टाइम, ये
0: जी
1: सब
0: जी
1: एक कृतज्ञता, प्यार और अपनेपन, इन दोनों को, इन चीजों से, इन दोनों को, संबंध और समय, इन दोनों
0: बिल्कुल
1: को हम मधुर बना सकते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा है आपने। रिश्ते हो, लक्ष्य हो या फिर यात्रा, संयम के साथ जिया जाए उसे,
1: हाँ,
0: और मिठास के साथ अगर आपने अपनी गतिशीलता को आगे बढ़ाया, तो निश्चित रूप से आप मनचाही जगह पर

0: इससे बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: पथरी प्रोस्टेट से पाना हो छुटकारा तो विनायका हॉस्पिटल ही अपनाना, जहां सुप्रसिद्ध यूरोलॉजिस्ट एवं गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर प्रदीप शर्मा द्वारा इसका निदान पाया जा सकता है।
3: RGHS व चिरंजीवी योजना के अंतर्गत निशुल्क ऑपरेशन। पथरी मतलब विनायका हॉस्पिटल, गीता भवन रोड, जोधपुर।
4: चाहे गर्मी हो या जाड़ा, इलाज हो हर मौसम में प्यारा। इस गर्मी से घबरा कर अपनी आँखों की सर्जरी ना टाले। विजिट डॉक्टर कामदार आई हॉस्पिटल, शिप हाउस, पावटा, जोधपुर।

0: दोस्तों, हम सुन रहे हैं गीत, नए नवेले, और बात कर रहे हैं जीवन यात्रा की। तो जिंदगी के सफर में जो है वो चीजों को याद रखने की जितनी इम्पोर्टेंस होती है ना दोस्तों, उतनी ही जरूरत होती है कुछ बातों को भूल जाने की। और खासकर ये लागू होता है रिश्तों में। रिश्तों में कुछ भूल जाना आपसी प्रेम और आपसी मधुरता को और बढ़ाता है, आपकी तारतम्यता को बनाए रखता है। और ये जो भूल जाने का कर्म करते हैं ना, वो आप भले भूल जाएं, लेकिन समय कभी नहीं भूलता।
1: हाँ, इस जगह पे मैं आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ कि अगर हम कर्म करके भूल जाते हैं, लेकिन प्रकृति उन कर्मों का हमें जरूर फल देती है, ये तो हम देखते ही हैं।
0: जी
1: एक जो गिलहरी होती है ना, वो अपने खाने के लिए जो बीज इकट्ठा करती है, वो उसको जमीन में छुपाकर भूल जाती है। अब वो तो भूल जाती है, लेकिन प्रकृति जो है उस बीज को समय आने पर पौधे के रूप में और फिर पेड़ के रूप में
0: जी
1: बड़ा
0: जी
1: कर
0: जब
1: देती
0: पानी पड़ता है तो
1: है
0: उसमें
1: ना।
0: अंकुरण हो जाता
1: हाँ, सूरज की
0: है।
1: किरणें, पानी, मिट्टी, ये सब मिलके।
0: बिल्कुल
1: तो
0: बिल्कुल
1: बस ये, अब ये देखिए, वो पेड़ बड़ा होने से गिलहरी के ही वापस दाने का इंतजाम हुआ है ना। तो बस यही है कि जिंदगी का सफर है, अच्छे
0: बस
1: कर्म करते जाइए, भूलते जाइए,
0: कुछ भूल जाइए और
1: कुछ याद रखिए।
0: कुछ याद रखिए। जो अच्छी बातें हैं उन्हें याद रखिए और जो कड़वी बातें हैं उन्हें छोड़ दीजिए, क्योंकि ये जीवन है।

दोस्तों घड़ी में 9 बजने वाले हैं। यहाँ हम रुकेंगे प्रादेशिक समाचारों के लिए। प्रादेशिक समाचार के बाद नमस्कार कार्यक्रम जारी रहेगा।

हम आकाशवाणी के जोधपुर केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 102.1 मेगाहर्ट्ज और मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलो हर्ट्ज पर। सवेरे के 9 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप हिंदी में प्रादेशिक समाचार सुनेंगे, इसे हमारे जयपुर अजमेर केंद्र से रिले किया जाएगा।

नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नागौर और जोधपुर जिले के दौरे पर, मेड़ता सिटी में राव दूदा और जोधपुर में पूर्व उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किसानों और पशुपालकों से जैविक खेती अपनाने और युवाओं से कृषि से जुड़ने का आह्वान किया। राज्य सरकार ने देर रात 187 आरएएस अधिकारियों के तबादले किए। और प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में भीषण गर्मी और हीट वेव का असर जारी, हालांकि सीकर, बाड़मेर, बीकानेर और चूरू में तेज आंधी के साथ बारिश हुई। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता, और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नागौर और जोधपुर जिले के दौरे पर रहेंगे। वे नागौर के मेड़ता सिटी में मेड़ता के संस्थापक राव दूदा की 15 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण करेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। इनके अलावा केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खेवसर, पंजाब के पूर्व राज्यपाल वीपी सिंह बदनौर सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहेंगे। प्रतिमा अनावरण के बाद जनसभा का भी कार्यक्रम है। केंद्रीय रक्षा मंत्री चार भुजानाथ मंदिर और मीरा मंदिर दर्शन के लिए भी जाएंगे। इसके बाद वे जोधपुर पहुंचेंगे। वहां श्री सिंह रातानाड़ा चौराहे पर आयोजित पूर्व उपराष्ट्रपति और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत की प्रतिमा अनावरण समारोह में भाग लेंगे। समारोह को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किसानों और पशुपालकों से जैविक खेती अपनाने और रासायनिक खाद के प्रयोग से बचने की अपील की है। उन्होंने युवा पीढ़ी से खेती और कृषि से जुड़ने के साथ स्थानीय पैदावार के अनुसार प्रोसेसिंग यूनिट्स लगाने को कहा है। मुख्यमंत्री कल जालौर के पंसेरी गांव में किसानों और पशुपालकों से संवाद कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने आम जन की अपेक्षाओं के अनुरूप प्रदेश के विकास का रोड मैप तैयार किया है, ताकि राजस्थान मॉडल स्टेट के रूप में स्थापित हो। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार मुख्यमंत्री विकसित ग्राम वार्ड अभियान चलाकर प्रदेश की सभी पंचायतों के सुनियोजित विकास का ब्लूप्रिंट भी तैयार कर रही है। मुख्यमंत्री ने राजीविका से जुड़ी महिलाओं से भी संवाद किया। महिलाओं ने उनसे अपने अनुभव साझा किए। श्री शर्मा ने कहा कि राजीविका से जुड़ने

0: के बाद राज्य की महिलाएं आत्मनिर्भर बनी हैं।
1: हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये योजना राजीव का की लखपति दीदी की योजना ये चलाई है। आज इसमें 22 लाख बहनों को ट्रेनिंग इसमें राजस्थान के अंदर मिली है और लगभग 17 लाख बहन हमारी लखपति दीदी बन गई हैं।
0: मुख्यमंत्री ने आज सुबह पंसेरी गांव का पैदल दौरा भी किया। उन्होंने ग्रामीणों से बातचीत की। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गर्मी के मौसम को देखते हुए प्रदेश में पेयजल और बिजली आपूर्ति व्यवस्था को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि पानी और बिजली आपूर्ति को लेकर आमजन को किसी तरह की परेशानी ना हो, इस संबंध में शिकायतें मिलने पर संबंधित जिला कलेक्टर और विभागीय अधिकारियों की जिम्मेदारी तय होगी। श्री शर्मा ने कल मुख्यमंत्री कार्यालय में आयोजित बैठक में निर्देश दिए कि सभी कलेक्टर नियमित रूप से पानी बिजली आपूर्ति को लेकर साप्ताहिक बैठकें कर मॉनिटरिंग करें और संबंधित शिकायतों का विभागीय अधिकारी प्राथमिकता के साथ तुरंत निस्तारण करें। उन्होंने कहा कि गर्मी के दौरान आमजन को राहत पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है और इसमें किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। मुख्यमंत्री ने पेट्रोल डीजल बचत के लिए सभी अधिकारियों को वाहनों का कम से कम उपयोग करने को भी कहा है। मुख्यमंत्री ने कार पूलिंग व्यवस्था अपनाने के निर्देश दिए। ब्रिक्स के विदेश मंत्रियों की आज नई दिल्ली में बैठक होगी। वैश्विक नेता नई दिल्ली पहुंच चुके हैं। इससे पहले विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल नई दिल्ली में रूस, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील और मालदीव के विदेश मंत्रियों से मुलाकात की। डॉ जयशंकर ने बताया कि सभी देशों के साथ रणनीतिक साझेदारी के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की गई और आपसी हित के बहुपक्षीय मुद्दों पर भी चर्चा हुई। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट पेपर लीक मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। 3 व्यक्ति जयपुर से, 1 गुरुग्राम से और 1 व्यक्ति को नासिक से गिरफ्तार किया गया है। अन्य कई संदिग्ध व्यक्तियों की जांच की जा रही है। सीबीआई ने कल इस सिलसिले में कई स्थानों पर छापे मारे और अनेक आपत्तिजनक सामग्री और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए। सीबीआई इस मामले में शुरुआती जांच करने वाले राजस्थान के विशेष कार्यबल के भी समन्वय में है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। राज्य सरकार ने देर रात राजस्थान प्रशासनिक सेवा के 187 अधिकारियों के तबादले किए। तबादला सूची में 70 से अधिक एसडीएम और 35 एडीएम, 8 जिला परिषदों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और 16 विकास प्राधिकरण तथा नगरीय निकाय के अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। साथ ही सचिवालय और संयुक्त सचिव स्तर के 15 और विभिन्न विभागों के 20 निदेशक और अतिरिक्त निदेशक इनमें शामिल हैं। तबादला सूची में बीकानेर के अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जसवंत सिंह को पंचायती राज विभाग में अतिरिक्त आयुक्त और संयुक्त शासन सचिव तृतीय के पद पर, बीकानेर के अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन गोपाल राम बिरदा को जयपुर के जवाहर कला केंद्र में अतिरिक्त महानिदेशक के पद पर लगाया गया है। डॉ ज्योति चौहान का राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के कार्यकारी निदेशक से चिकित्सा शिक्षा विभाग में संयुक्त शासन सचिव के पद पर तबादला किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी से देश के करोड़ों किसानों को अपनी उपज के लिए उचित और लाभकारी मूल्य मिलेगा। कल हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के निर्णयों की सराहना करते हुए श्री मोदी ने कहा कि किसानों के हित में लिए गए इस फैसले से उनके जीवन में समृद्धि आएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि अहमदाबाद धोलेरा सेमी हाई स्पीड डबल लाइन परियोजना देश की रेल संपर्क यात्रा में महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि कोयला लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं की संवर्धन योजना से ऊर्जा सुरक्षा बढ़ेगी, निवेश को बढ़ावा मिलेगा और युवाओं के लिए रोजगार सृजित होगा। केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि अमेरिका के स्मिथसोनियन राष्ट्रीय एशियाई कला संग्रहालय से 3 भारतीय प्राचीन वस्तुओं की भारत वापसी हुई है। इसका उद्देश्य भारत की चोरी हुई सांस्कृतिक विरासत को पुनर्स्थापित और संरक्षित करना है। नई दिल्ली में श्री शेखावत ने कहा कि देश की विरासत, जिसे अनैतिक तरीकों से देश से बाहर ले जाया गया था, अब वापस लाई जा रही है।
2: ऐतिहासिक एंटीक्विटीज को जो भारत लाने का क्रम पिछले वर्षों से चल रहा है उस दिशा में हम ऑस्ट्रेलिया से 11 और अमेरिका से 3 और मूर्तियों को

0: भारत में लाने में सफल हुए। इसके अतिरिक्त भी 657 एंटीक्विटीज को आइडेंटिफाई करके हमने अमेरिका के साथ चर्चा की। यूएस एनफोर्समेंट एजेंसीज ने उनको भारत के दूतावास को अमेरिका में सुपुर्द कर दिया है। उनको लाने की प्रक्रिया भी प्रारंभ हो गई है। 657 एंटीक्विटीज उसके बाद में भारत आएंगी।
1: प्रदेश के पश्चिमी इलाकों में पड़ रही भीषण गर्मी के बीच कल सीकर, बाड़मेर, बीकानेर और चूरू सहित कई जिलों में तेज आंधी के साथ बारिश दर्ज की गई। चूरू में एक दो स्थानों पर ओलावृष्टि भी हुई। हालांकि मौसम में आए इस बदलाव के बावजूद प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में भीषण गर्मी और हीट वेव का असर जारी रहा। कल 5 शहरों में अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया। फलौदी प्रदेश का सबसे गर्म शहर रहा, जहां अधिकतम तापमान करीब 47 डिग्री और न्यूनतम तापमान 34 डिग्री दर्ज हुआ। भीषण

बाड़मेर, बीकानेर और चूरू सहित कई जिलों में तेज आंधी के साथ बारिश दर्ज की गई। चूरू में एक दो स्थानों पर ओलावृष्टि भी हुई। हालांकि मौसम में आए इस बदलाव के बावजूद प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में भीषण गर्मी और हीट वेव का असर जारी रहा। कल पांच शहरों में अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया। फलौदी प्रदेश का सबसे गर्म शहर रहा, जहां अधिकतम तापमान करीब 47 डिग्री और न्यूनतम तापमान 34 डिग्री दर्ज हुआ। भीषण गर्मी के कारण जनजीवन प्रभावित रहा। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि वर्तमान में राज्य के दक्षिणी, पश्चिमी और पूर्वी भागों में अधिकतम तापमान 45 से 48 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि आगामी दिनों में न्यूनतम और अधिकतम तापमान में विशेष बदलाव की संभावना नहीं है। वहीं आगामी 48 घंटों के दौरान बीकानेर संभाग, शेखावाटी क्षेत्र, जयपुर और भरतपुर संभाग के उत्तरी इलाकों में कहीं कहीं बादल गरजने, 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आंधी चलने और हल्की बूंदाबांदी की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नागौर और जोधपुर जिले के दौरे पर, मेड़ता सिटी में राव दूदा और जोधपुर में पूर्व उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किसानों और पशुपालकों से जैविक खेती अपनाने और युवाओं से कृषि से जुड़ने का आह्वान किया। राज्य सरकार ने देर रात 187 आरएएस अधिकारियों के तबादले किए। और प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में भीषण गर्मी और हीट वेव का असर जारी। हालांकि सीकर, बाड़मेर, बीकानेर और चूरू में तेज आंधी के साथ बारिश हुई। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

0: समाचारों के बाद एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से स्वागत मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम नमस्कार में। और दोस्तों, अब समय हो चला है इतिहास के पन्नों को पलटने का, और देखते हैं क्या है खास आज के इतिहास में। आज ही का दिन 1948 में, जब इसराइल की स्वतंत्रता का दिन था, और इस दिन यहूदी एजेंसी के प्रमुख डेविड बेन गुरियन ने इसराइल राज्य की स्थापना की घोषणा की थी।
1: मई 1908, जब राइट बंधुओं ने पहली बार किसी अन्य व्यक्ति जो कि मैकेनिक चार्ली फर्नास थे, उनको हवाई जहाज में यात्रा करवाई।
0: चौदह मई 1954, जब उस समय के लोकसभा अध्यक्ष जीवी मावलनकर ने हाउस ऑफ द पीपल को लोकसभा का नाम दिया था।
1: 1962 का, जब डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के दूसरे राष्ट्रपति के रूप में चुने गए। और 14 मई 1992, जब भारत सरकार ने श्रीलंकाई विद्रोही संगठन LTTI पर प्रतिबंध लगाया।

0: हेलो
1: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
0: फिर से
2: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
3: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
0: सर इतने कहाँ से?
3: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
0: 2 लाख
4: क्या हुआ पापा?
0: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
2: अरे
0: काट दिया।
4: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
0: फ्रॉड?
4: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
0: तो पैसे गवाओगे।
5: RBI कहता है
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: दोस्तों, बदलते परिवेश, बदलते मौसम, ये सब बाध्य करते हैं कि जरा रुक कर सोचा जाए कि आखिर ये तब्दीली जो है वो हमें कहाँ ले जाएगी। और शायद यही सोच रही होगी हमारे प्रोग्राम प्रोड्यूसर की भी। तो आज का हमारा एक सेगमेंट होता है हमारा पर्यावरण, जिसमें आज हम बात करेंगे एलिनो या अलिनो पर। दोस्तों, अलिनो एक ऐसी प्राकृतिक घटना है जिसका असर पूरी दुनिया के मौसम पर पड़ता है और भारत भी इससे अछूता नहीं। सबसे पहले तो समझते हैं आखिर ये एलिनो या अलिनो है क्या। तो ये एक प्रशांत महासागर यानी पैसिफिक ओशन में होने वाली एक मौसमी समुद्री घटना है। सामान्य तौर पर समुद्र की सतह का तापमान संतुलित रहता है, लेकिन जब मध्य और पूर्वी प्रशांत महासागर का पानी सामान्यतः से ज्यादा गर्म हो जाता है, तब इस स्थिति को अलिनो कहा जाता है। और अलिनो शब्द स्पेनिश भाषा से आया है, जिसका अर्थ होता है छोटा बच्चा।
1: क्योंकि ये प्रभाव अक्सर क्रिसमस के आसपास दिखाई देता था, इसलिए मछुआरों ने इसे ये नाम दिया। ये घटना अक्सर वैश्विक मौसम के पैटर्न को बदल देती है, जिससे दुनिया के कई क्षेत्रों में सूखा, भारी वर्षा, भयंकर तूफान और अन्य चरम जलवायु घटनाएं होती है। ये मुख्य रूप से दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट, खासकर पेरू और इक्वाडोर के पास प्रशांत महासागर में विकसित होता है, लेकिन इसकी वजह से पूरी दुनिया के मौसम

0: के चक्र में बदलाव आने लगता है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने पहले ही चेतावनी दी थी कि इस वर्ष मई और जुलाई के बीच अलनीनो की स्थिति बन सकती है। कुछ मौसम विज्ञान एजेंसियों का मानना है कि आने वाला अलनीनो बहुत शक्तिशाली हो सकता है, यहाँ तक कि लगभग 3 दशक पहले हुई सुपर अलनीनो जैसी घटनाओं के करीब भी पहुंचा जा सकता है।
1: और दोस्तों, वैज्ञानिक इस बात पर भी जोर देते हैं कि अलनीनो असामान्य रूप से गर्म महासागरों का एकमात्र कारण नहीं है। ये घटना मानव गतिविधियों से ग्रीन हाउस गैसेस जो उत्सर्जन होता है उसके कारण पृथ्वी पर जारी जलवायु परिवर्तन के प्रभावों की पृष्ठभूमि में घटित हो रही है। तो अब हम बात करते हैं कि भारत पर इसका कैसा प्रभाव रहेगा। तो भारत की कृषि, पानी की व्यवस्था काफी हद तक मानसून पर निर्भर रहती है। तो अलनीनो के दौरान भारतीय मानसून कमजोर पड़ सकता है। इसका साफ मतलब है कम बारिश, सूखा, जल संकट और खेती पर बुरा असर, और गर्मी ज्यादा पड़ सकती है।
0: इसके साथ साथ जंगलों में आग लगने की घटनाएं भी बढ़ सकती हैं। नदियों और जलाशयों का स्तर, जल का स्तर जो है अलनीनो के प्रभाव से घट जाता है और बिजली उत्पादन भी प्रभावित होता है। पर्यावरण के दृष्टिकोण से अगर देखें तो अलनीनो केवल मौसम की घटना नहीं है, बल्कि ये हमें प्रकृति के संतुलन का महत्व भी समझाता है। जब पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ रहा है और जलवायु परिवर्तन भी तेजी से हो रहा है, तब अलनीनो जैसी घटनाएं और अधिक गंभीर प्रभाव डाल सकती है।
1: तो ऐसे में क्या करना चाहिए? ऐसे में हमें जल संरक्षण की ओर ध्यान देना चाहिए। पेड़ लगाने होंगे, ऊर्जा की बचत करनी होगी, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधियों को कम करना होगा, क्योंकि
0: इससे जो प्रकृति का संतुलन बिगड़ेगा उसका असर सीधा हमारे जीवन पर पड़ेगा। तो दोस्तों, अलनीनो हमें ये संदेश देता है कि धरती का मौसम केवल वैज्ञानिक विषय नहीं है, बल्कि हमारे भविष्य से जुड़ा हुआ सवाल है। तो प्रकृति से जुड़िए, पर्यावरण को बचाइए और स्वस्थ भविष्य बनाइए।
1: और दूर दराज इलाकों में बर्फीली जगहों पर रहने वाले, चाहे हमारे जानवर दोस्त हों या समुद्र का बढ़ता गिरता जल स्तर हो, है तो हमारी जिंदगी के दोस्त, और हमें कहीं ना कहीं उनकी पुकार को अनदेखा नहीं करना चाहिए।

0: लीना जी, जब भी काम की बात हम सोचते हैं तो हम अपने जीवन के आसपास, मतलब अपने जीवन चर्या से दूर सोच ही नहीं सकते,
1: बिल्कुल
0: है ना। और अभी के दिनों में खासकर बात करें तो गर्मी की छुट्टियां, एक बहुत बड़ा त्योहार चल रहा है सभी,
1: बहुत बड़ा त्योहार
0: है ना, क्योंकि ये जब आ रही होती है, मतलब ये महीना शुरू होता है, उससे पहले हम इसकी तैयारियां करनी शुरू हो जाते हैं, हमसे ज्यादा बच्चे तैयारियां करते हैं, और उनके चेहरे पर जो खुशी होती है उसका अंदाजा ही लगाना मुश्किल है।
1: बिल्कुल, वो हाँ, अपनी स्कूल के आखिरी दिन जब वो घर आते हैं तो इतनी लंबी लिस्ट उनके हाथ में होती है कि उनको छुट्टियों में क्या क्या करना है।
0: हाँ, और ये जो चेहरे पर खुशी होती है उसका कारण है ना तो स्कूल की घंटी, ना होमवर्क की चिंता, बस मस्ती। कोई नहीं कहता सुबह जल्दी उठो,
1: जल्दी
0: स्कूल के लिए देर हो जाएगी, ढेर सारा आराम और साथ ही साथ ढेर सारी नई बातें सीखने का मौका, नई जगह जाने का मौका और नानी दादी से मिलने का उत्सव।
1: बिल्कुल,
0: है ना।
1: आजकल के बच्चों में हम ये देखते हैं कि सीखने की ललक भी बहुत है
0: जी।
1: वो हर चीज, देखिए कितनी चीजें उनके सीखने के लिए है और बच्चे हर तरफ जाना चाहते हैं। अब हमें ये देखना है कि हम इन छुट्टियों में बच्चों को किस तरीके से बिजी रखें, किस तरीके से उनका टाइम मैनेज करें कि इनकी जो ये छुट्टियां हैं ये यादगार हो जाए
0: और रोचक भी रहे।
1: रोचक
0: है ना, क्योंकि रोचक नहीं होगी तो वो याद नहीं,
1: हाँ,
0: नहीं।
1: याद
0: उसे
1: नहीं।
0: जी नहीं पाता है बच्चा। तो गर्मी की छुट्टियां मतलब नया सीखने का सबसे अच्छा समय होता है, तो इसमें आप बच्चों को पेंटिंग, डांस, संगीत, योग, तैराकी, कंप्यूटर जैसी गतिविधियों की ओर भेज सकते हैं।
1: बिल्कुल।
0: अब इन सबको करने से होता क्या है, केवल टाइम पास नहीं, उनका आत्मविश्वास बढ़ता है, उनकी रचनात्मकता में भी विकास आता है।
1: यहाँ पर एक चीज और है कि ये जो मोबाइल है इसने सिर्फ बच्चों को नहीं हमको भी बहुत बुरी तरह से जकड़ रखा है। अगर हम यहाँ पर बच्चों के लिए अच्छी चित्रकथाएं, एक हमारे जमाने में आती थी कॉमिक्स, जिसको हम पढ़ते
0: के
1: थे,
0: लिए हम छुट्टियों का
1: इंतजार करते बहुत इंतजार करते थे और ढेर लाके रखते थे और उनको पढ़ते थे। हम कितना पढ़ते थे, हमें उस समय के करेक्टर आज भी याद
0: है
1: ना,
0: लेकिन अब
1: हाँ चित्रकथाएं जो हम पढ़ते थे, अब आजकल के बच्चे तो किताबें भी कंप्यूटर में पढ़ते हैं, है ना, वो कंप्यूटर में डाउनलोड कर लेते हैं और कंप्यूटर उसमें पढ़ते हैं।
0: वैसे साइंस ही मानता है कि जिस किसी बात के साथ चित्र जुड़ा होता है वो आपकी मेमोरी में जगह बना
1: है। हाँ, और ज्यादा लंबे समय तक आपको याद रहता है वो। तो अब ये है कि बच्चों को स्क्रीन से हटाने के लिए जरूरी है कि हम वही पुराना दौर वापस लाएं, कुछ चित्रकथाएं लाएं, कुछ इंटरेस्टिंग किताबें लाएं और हम खुद भी पढ़ें उनके साथ बैठकर। क्योंकि देखिए ना, ये कहना बहुत आसान है कि बेटा आप सारे दिन फोन देखते रहते हो, लेकिन हम भी तो कभी कभी वही करते रहते हैं ना तो उनको छुड़वाने से पहले हमें अपना फोन साइड रखना होगा।
0: वैसे आपने नोटिस किया होगा कि जब से ये स्मार्टफोन हाथ में आया है तो हमने खुद भी वो जो घर गृहस्थी से जुड़ी किताबें होती थी, जो कहानियां होती थी, जो हमें प्रेरित करती थी, जो हमारे शब्दकोश को बढ़ाती थी, हमने भी तो उससे रिश्ता थोड़ा सा तोड़ लिया है। तो ये समय

0: आप भी अपनी किताबों को निकालिए,
1: हाँ
0: बच्चों को भी अच्छी अच्छी कॉमिक्स पढ़ने को दीजिए, क्योंकि किताबें सिर्फ ज्ञान नहीं बढ़ाती, वो आपकी कल्पना शक्ति को एक नई उड़ान भी देती है।

सुबह पे जिस तरह शाम का हो गुमा, सुबह पे जिस तरह शाम का हो गुमा, जुल्फों में एक चेहरा कुछ जाहिर।

0: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
1: दुनिया का सारा सुख एक तरफ, हर माँ बड़न रु सुख एक तरफ,
2: निसंतान दंपत्यारे जीवन में खुशियारी उम्मीद, विनायका हॉस्पिटल एंड IVF सेंटर, गीता भवन रोड, जोधपुर।
3: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
4: अगर टाइम मैनेजमेंट सीख ली और समय का प्रोडक्टिव यूज सीख लिया तो आप देखिए, आप कभी भी प्रेशर नहीं लगेगा, थकान नहीं लगेगी।
3: NCPCR आयोजित कर रहा है परीक्षा पर्व, जिसके लाइव सेशन के दौरान आप परीक्षा से संबंधित प्रश्न एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।

0: और अब हम उस मुकाम पर हैं जहां हम याद करते हैं उन लोगों को जिन्होंने अपने जीवन को न सिर्फ जिया बल्कि इस तरह से जिया कि इतिहास के पन्नों में वो नाम सदा सदा के लिए अंकित हो गए, है ना?
1: हम बात कर रहे हैं सबसे पहले भारतीय सिनेमा के उस महान फिल्मकार की जिन्होंने अपनी फिल्मों के माध्यम से समाज, राजनीति और आम आदमी की जिंदगी को बेहद संवेदनशील ढंग से प्रस्तुत किया।
0: और उनका नाम है मृणाल सेन।
1: मृणाल सेन का जन्म 14 मई 1923 को तत्कालीन ब्रिटिश भारत के फरीदपुर में हुआ। मृणाल सेन भारतीय समानांतर सिनेमा या आर्ट फिल्म आंदोलन के प्रमुख स्तंभ माने जाते हैं।
0: उन्होंने अपनी फिल्मों में गरीबी, बेरोजगारी, सामाजिक असमानता और राजनीतिक परिस्थितियों को बहुत ही वास्तविक तरीके से दिखाया, इसलिए उनकी फिल्में यादगार रहती हैं। और उनकी फिल्मों की बात करें तो भुवन शोम, एक दिन प्रतिदिन, खंडर, अकालेर संधाने इनकी कई सारी फिल्में हैं जिनकी खासियत रही यथार्थवाद। ये मनोरंजन के साथ साथ समाज को सोचने पर मजबूर करते थे और अपनी फिल्मों में आम इंसान की परेशानियों को और उनके संघर्षों को साफ दिखाने की क्षमता भी रखते थे।
1: उन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए उन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। मृणाल सेन का निधन 30 दिसंबर 2018 को कोलकाता में हुआ।

0: और जन्म दिवस की कड़ी में ही अगर हम आगे बात करें तो आज यानी कि 14 मई को जयंती दिवस है अलादि कृष्णा स्वामी अय्यर का। 14 मई 1883 को मद्रास यानी कि आज के चेन्नई में जन्मे अलादि कृष्णा स्वामी अय्यर भारत के प्रसिद्ध न्यायविद, अधिवक्ता और शिक्षा शास्त्री थे। अय्यर का एक उदारवादी दृष्टिकोण था और इसी के चलते उन्होंने अपना पूरा न्याय करियर पूरा किया।
1: स्वतंत्रता के बाद अल्लादि कृष्णा स्वामी अय्यर देश के संविधान सभा के सदस्य चुने गए और वे संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली समिति के मुख्य सदस्य रहे। उनका ये कहना था कि धर्मों से संबंधित कानूनों में सुधार करने की आवश्यकता है। आज जयंती दिवस पर हम उन्हें नमन करते हैं।

0: राज्य सरकार व केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए निशुल्क ऑपरेशन डॉक्टर कामदार आई हॉस्पिटल शिप हाउस पावटा जोधपुर।
1: पथरी प्रोस्टेट गुर्दा रोग मूत्र रोग व यौन रोगों के इलाज हेतु सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर प्रकाश रांका यूरोलॉजिस्ट व एंड्रोलॉजिस्ट बरकतुल्ला स्टेडियम के सामने जोधपुर। मोबाइल 9829027065।

0: दोस्तों, जयंती दिवस के अवसर पर ही आज हम याद करते हैं भारत के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और राजनीतिक कार्यकर्ता अरुण चंद्र गुहा को। 14 मई 1892 को बंगाल में जन्मे अरुण चंद्र गुहा अपनी कानून की शिक्षा ग्रहण करने के दौरान ही देश की क्रांतिकारी गतिविधियों में सक्रिय हो गए थे। रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद के विचारों से वो बहुत प्रभावित थे। गीता के निष्काम कर्म योग को उन्होंने अपने जीवन का प्रमुख लक्ष्य बनाया। आनंद मठ, जो कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का की रचना थी, उससे भी वे बहुत प्रभावित थे। 1906 में बंग भंग विरोध में जो स्वदेशी आंदोलन हुआ, उसमें अरुण चंद्र गुहा ने अपनी सक्रिय भागीदारी निभाई। सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने के कारण उन्होंने कई बार जेल की यात्राएं भी की। अरुण चंद्र गुहा ने ऐतिहासिक और पौराणिक विषयों पर अनेक रचनाएं की। क्रांतिकारी आंदोलन से संबंधित उनकी पुस्तक फर्स्ट स्पार्क ऑफ द रिवॉल्यूशन बहुत प्रसिद्ध हुई।
1: जन्म जयंती की कड़ी में एक और नाम को याद करते हैं, शंभाजी। शिवाजी के ज्येष्ठ पुत्र और उत्तराधिकारी

संभाजी 14 मई 1657 को इनका जन्म हुआ और ये विश्व के पहले बाल साहित्यकार हैं। 14 वर्ष की उम्र तक उन्होंने संस्कृत में बुद्धभूषणम, हिंदी में नायिका भेद, सात शतक, नक्षिक जैसे ग्रंथों की रचना कर डाली थी और मराठी, हिंदी, फारसी, संस्कृत, अंग्रेजी और कन्नड़ जैसी भाषाओं पर संभाजी का प्रभुत्व था। जिस तेजी से वो लिखते थे उसी तेजी से उनकी तलवार भी चलती थी। स्वराज के लिए अपने प्राणों को न्योछावर करने वाले, हिंदवी स्वराज का विस्तार कर पूरे हिंदुस्तान में स्वराज की स्थापना की इच्छा रखने वाले संभाजी की इतिहास में सदा स्मृति बनी रहेगी।

0: जन्मदिवस के बाद अगर हम बात करें पुण्य स्मरण दिवस की, तो आज यानी कि 14 मई को हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार जगदीश चंद्र माथुर का पुण्य स्मरण दिवस है। 1917 में उत्तर प्रदेश में जन्मे जगदीश चंद्र माथुर आकाशवाणी में काम करते हुए हिंदी की लोकप्रियता के विकास में उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया।
1: बचपन से ही साहित्य, संस्कृति और कला के प्रति आपकी गहरी रुचि थी और आगे चलकर उन्होंने प्रशासनिक सेवा में भी महत्वपूर्ण काम किए और अपनी असली पहचान बनाई साहित्यकार और नाटककार के रूप में। आप हिंदी नाटक और एकांकी साहित्य के प्रमुख हस्ताक्षर माने जाते हैं।
0: माथुर जी की प्रारंभिक शिक्षा खुर्जा और उच्च शिक्षा इलाहाबाद और प्रयाग विश्वविद्यालय में हुई। उन्होंने अपना लेखन कार्य जो है अपने अध्ययन काल से ही शुरू कर दिया था और फिर जब साहित्य से जुड़ने के बाद जब भारत में टेलीविजन का शुरू होने का समय आया तब जगदीश चंद्र माथुर ने ही टीवी का नाम दूरदर्शन रखा। उनका कहना था कि सरकार किसी भी भाषा में चलाई जाए पर लोकतंत्र हिंदी और भारतीय भाषाओं के बल पर ही चलेगा। परिवर्तन और राष्ट्र निर्माण के ऐतिहासिक समय में जगदीश चंद्र माथुर ICS और ऑल इंडिया रेडियो के डायरेक्टर जनरल थे। उन्होंने ही AIR का नामकरण आकाशवाणी किया
1: जी, और आकाशवाणी के उच्च पदों पर काम करते हुए रेडियो नाटक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों को लोकप्रिय बनाने में आपने बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इसीलिए इन्हें याद किया जाता है।

0: और पुण्य स्मरण की ही कड़ी में आज हम याद करते हैं 1902 में जन्मे महान भाषाविद, प्रख्यात विद्वान, राजनेता और भारतीय धरोहर के मनीषी आचार्य रघुवीर को। बाल्यकाल से ही आचार्य रघुवीर को संस्कृत में गहन रुचि थी और इसी के चलते उन्होंने एक पुस्तक विक्रेता के वहां जाकर संस्कृत के काव्य रामायण, महाभारत जैसे सशक्त ग्रंथों का अध्ययन किया। वो एक महान कोशकार, शब्दशास्त्री और भारतीय संस्कृति के उन्नायक थे।
1: आचार्य रघुवीर ने लगभग 6 लाख शब्दों की रचना की। इसकी शब्द निर्माण की पद्धति बड़ी ही वैज्ञानिक रही और इन्होंने विज्ञान की प्रत्येक शाखा के शब्दकोश की रचना करके अपने नाम को अमिट कर दिया।

0: तो दोस्तों कार्यक्रम के समापन गीत की तरफ बढ़ने से पहले कर लेते हैं आज की खास बात। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 वर्षों के पूरे होने के उपलक्ष्य में आकाशवाणी जोधपुर द्वारा सुगम संगीत संध्या स्वर उत्सव का आयोजन कल यानी कि 13 मई की शाम को किया गया। ये आयोजन बृहस्पति सभागार केंद्रीय कार्यालय जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय में किया गया, जिसमें अनुपराज पुरोहित ने भजन की और आमिर हुसैन ने गजल की प्रस्तुतियां की। चलिए बढ़ते हैं समापन गीत की तरफ।
1: देखिए हमारा 5-स्टार होटल है, यहाँ पर हमेशा कैबरे के प्रोग्राम ही पसंद किए जाते हैं। सिर्फ एक बार हमने कव्वाली का प्रोग्राम रखा था ये, जो गेस्ट ने बिल्कुल पसंद नहीं किया।
2: मैनेजर साहब, मैं फख्र के साथ कह सकता हूँ आज तक हमारा एक भी भांगड़ा या फोक का ऐसा प्रोग्राम नहीं हुआ जिसे देखकर देखने वाले खुद उठकर हमारे साथ नाचने नहीं लगे। हमारी पार्टी पंजाब की सबसे मशहूर पार्टी है।
1: नाम तो मैंने भी सुना है।
3: तो एक बार काम भी देख लीजिए ना। गुड मॉर्निंग मैनेजर साहब।
1: गुड मॉर्निंग।
3: गुड मॉर्निंग।
2: गुड मॉर्निंग। ये मेरी बेटी है सोना।
1: ओह आई सी।
2: हमारे ट्रुप के हर तरह के प्रोग्राम को,
4: प्रोग्राम कोई भी हो और जब भी हम किसी प्रोग्राम की ओर बढ़ते हैं तो वो सफ़र काफ़ी लंबा लगता है, लेकिन जैसे ही ख़त्म होने लगता है तब बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो जी में रह जाती है और मन करता है कि थोड़ा सा समय मिल जाता तो हम उन बातों को याद कर लेते। और कई सारे ऐसे व्यक्तित्व भी रहते हैं जिन्हें हम याद करना चाहते हैं अपने इस प्रोग्राम में, पर समय नहीं होता। लेकिन कुल मिलाकर नमस्कार का अपना एक उद्देश्य है, कुछ खास बातें, कुछ खास जानकारी, कुछ इतिहास के पन्नों को पलटा जाए तो कहीं किसी व्यक्तित्व के आदर्शों को टटोला जाए, कहीं मन की बात को कहकर गीतों को नए नवेले तरीके से प्रस्तुत किया जाए तो फिर लास्ट में समापन की ओर बढ़ा जाए।

0: और इस गीत के साथ ही आज के इस नमस्कार के इस अंक को देते हैं विराम, तो कविता को
1: और लीना को
0: दीजिए अनुमति। नमस्कार, नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नमस्कार, ये आकाशवाणी जोधपुर का FM सन सिटी चैनल है। FM बैंड 102.1 मेगा हर्ट्ज पर प्रस्तुत है हमारा अगला कार्यक्रम अंताक्षरी।

0: 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर ये है FM सन सिटी और प्रोग्राम है फिल्मी अंताक्षरी। साक्षी के साथ मैं हूँ कविता। हमारे संग हो सकते हैं आप सभी। डायल करना होगा 25 53 300 25 54 300। ये संगीत की महफिल है जिस पर आप फोन करके हिस्सा ले सकते हैं और अपने पसंदीदा नगमों को गुनगुना सकते हैं।
1: तू भी आ जा के आ गई रुत मस

0: हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ जी नमस्कार, स्वागत।
1: नमस्कार।
0: कौन बोल रहे हैं?
1: मैं जतिन जोधपुर से बात कर रहा हूँ।
0: जी जतिन जी, पहली बार फोन किया है क्या?

0: में।
1: जी
0: जी बहुत स्वागत है आपका। क्या करते हैं जतिन, अपने बारे में बताएं थोड़ा। पढ़ाई
1: पढ़ाई
0: कर रहे हैं, बहुत बढ़िया बहुत
1: जी।
0: बढ़िया। तो ढेर सारी शुभकामनाएं, आप अपनी पढ़ाई में जो भी आपने सोच रखा है उस लक्ष्य को जरूर पाएं।
1: हाँ
0: और आपने फिल्मी अंताक्षरी में फोन किया है तो आपको गाना होता है, ठीक है ना?
1: हाँ
0: तो अपने पसंदीदा गीत को शुरू करें,
1: भजन गा सकते हैं, भजन
0: गाना होना चाहिए वो भी फिल्मी।
1: फिल्मी।
0: हाँ जी,
1: ठीक है सुनाता हूँ।
0: ठीक है, तो फिर हम भी सुनते हैं।

0: निशान
1: क्या बात है
0: जैसा।
1: जतिन जी।
0: हाँ
1: हेलो, एक तो पीछे
0: हाँ
1: क्या आवाज आ रही है बहुत तेज।
0: अरे वो पता नहीं क्या आवाज आ
1: पता
0: रहा
1: नहीं क्या आ रही, चलो इग्नोर करो। वैसे आप कह रहे पढ़ाई करते हैं, फिर आपने कहा भजन गा दूं, तो लगा आपको फिल्मी गानों का ज्ञान कम होगा, लेकिन आपने जब फिल्मी गाना चुना तो इतना खतरनाक अच्छा गाना चुना आपने। हाँ
0: हाँ मैं
1: चलिए,
0: बांसुरी भी बजाता
1: अरे वाह वाह, बहुत ही खुशी की बात है ना। तो ये प्रोग्राम फिर आपके लिए बहुत ही उपयुक्त प्रोग्राम है। चलिए आगे बढ़ते हैं जतिन जी, हम आपको एक गीत का अंश सुनवाएंगे, उसमें से कोई एक शब्द ऐसा चुन लीजिए जिस पर आपको फिल्मी गीतों के तीन चार मुखड़े, मतलब तीन चार गाने, एक एक लाइन आपको याद हो, ठीक है?
0: ठीक है।
1: तो सुनिए।

0: जतिन जी,
1: हाँ मैम,
0: कोई शब्द ऐसा है जिस पर आपको तीन चार गाने फिल्मी याद आ गए हों? एक एक पंक्ति गानी है
1: हाँ मैं कोशिश करता हूँ।
0: जी प्लीज।
1: एक एक है दिल,
0: दिल, ठीक है।
1: दिल है कि मानता नहीं, ओ दिल है कि मानता नहीं।
0: अगला गाना।
1: ना नहीं क्या था यार,
0: दिल दीवाना नहीं आता, बिन सजना के माने ना, ये भी नहीं आता।
1: सुना तो है
0: ये दिल और
1: मैंने।
0: उनकी निगाहों के साए, ये दिल तुम बिन कहीं, अभी अभी सुना आपने तो। इसे सेकेंड राउंड में कम से कम चार गीत आपको याद दिलाने होते हैं, तब हम आपको थर्ड राउंड में ले जाते हैं, ठीक है?
1: ठीक है
0: तो
1: मैम,
0: जतिन जी, इस बार आपने समझ लिया, अब की बार जब आप फोन करेंगे तो मुझे लगता है आप पूरे ही तीनों राउंड पर हमारे साथ बने रहेंगे, है ना? फिलहाल फोन करने के लिए बहुत शुक्रिया, और बस इसी तरह संगीत से जुड़े रहिए।
2: कॉल इज नाउ बीइंग रिकॉर्डेड।
0: हेलो
3: हाँ जी नमस्कार, मैं से
0: जी, नमस्कार
3: जी विश्वा बात कर रहा हूँ।
0: जी। विश्वा जी, मैं कविता बात कर रही हूँ, कैसे हैं आप?
3: मैं ठीक हूँ मैडम।
0: चलिए, हमेशा ठीक रहिए, ढेर सारी दुआएं।
3: जी,
0: क्या गाएंगे?
3: फिल्म आज और कल का सॉन्ग है
0: अच्छा,
3: मोहम्मद रफी के साथ, क्या होगी, इतनी अच्छी लगती है जवान।
0: क्या बात है, सितारों की शाम है।
3: शुरू करता हूँ। सांसों में दिल रही है, किसी सांस की महक सांसों में घुल रही है, किसी सांस की महक दाम

0: दिन
1: जवारात क्या करे। बहुत सुंदर, बहुत ही खूबसूरत, इसीलिए आगे बढ़ते हैं और सेकंड राउंड का ये गाना आपको सुनवाते हैं।

0: हाँ जी, कौन सा शब्द
1: यस
0: आपने चुना?
1: जी, अजनबी
0: इस पर कम से कम चार गीत आपको याद होने चाहिए।
1: जी, दो तो याद है,
0: ठीक
1: दो में आपकी हेल्प।
0: है, कोशिश कर सकते हैं।
1: अजनबी तुम जाने पहचाने से लगते हो, एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई। अब दो
0: फिर
1: में आपकी
0: मुझे भी यही याद आ रहा था, एक अजनबी हसीना से।
1: जी नहीं आ रहा है।
0: ये शब्द मुश्किल है थोड़ा,
1: हाँ, इस वर्ड मुश्किल
0: तो क्यों
1: मुश्किल
0: चुना? इससे तो मुलाकात, क्या क्या क्या शब्द आए थे,
1: जी।
0: हम तो खो गए
1: नहीं
0: थे
1: याद आ
0: जरा।
1: रहा है, अजनबी से याद नहीं आ रहा है, वही याद है।
0: तो अजनबी कौन हो तुम, जब से तुम्हें देखा है, देखा पे भी कई सारे गाने हो जाते,
1: हाँ, बिल्कुल,
0: अभी भी हो
1: तुमको
0: सकते
1: देखा
0: हैं,
1: तो ये ख्याल है।
0: अभी भी हो सकते हैं।
1: अच्छा, अभी बोल रहे हैं, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, देखा एक ख्वाब तू ये सिलसिले हुए, देखा है पहली बार।
0: बस
1: किंतु स्टॉप,
0: देखा ना है रे,
1: देखा ना है रे, यूं
0: सोचा ना है
1: निशाने
0: रे,
1: पे
0: रख ली
1: जा,
0: निशाने पे जा,
1: बार बार
0: देखो
1: देखो, हजार बार देखो, ये
0: मैंने
1: एक
0: देखा है ये एक
1: एक
0: सपना,
1: सपना, फूलों के शहर में हो घर अपना,
0: तुमको देखा।
1: देखा।
0: चलिए, ये राउंड क्लियर हो गया, इसीलिए हम
1: जी,
0: आगे
1: आपने
0: बढ़ते
1: हेल्प
0: हैं
1: कर दी।
0: थर्ड राउंड की तरफ। ठीक है, तो थर्ड राउंड में एक म्यूजिक ट्रैक प्ले करेगी साक्षी, उसे सुनना है, समझना है और साथ गाना है।

0: साथ निभाता चला गया हर फिक्र को धुएं में उड़ा। चलिए अच्छा प्रयास, सुंदर प्रयास, आपने हमें फोन किया, बहुत अच्छा लगा, शुक्रिया फोन करने के लिए।
1: थैंक यू सो मच।
0: हेलो,

0: हेलो।
1: हाँ, पूरी टीम FMTV को और हमारी बहन कविता जी को प्यार भरा नमस्कार।
0: नमस्कार जी, नमस्कार। कैसे?
1: हाँ, महबूब भाई याद कर रहा
0: हाँ
1: हूँ।
0: जी, महबूब भाई, कैसे हैं आप?
1: हाँ, एकदम दुआ है, बहनों की दुआ है, बहुत ठीक हूँ मैं।
0: हमेशा जी
1: आप, हमारी बहन कैसी है?
0: बहुत अच्छी है, अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए गाना शुरू
1: फूलों
0: करें।
1: की रानी, पहाड़ों की मलिका, तेरा मुस्कुराना जग हो गया। ना तुम होश में है, ना मैं होश में है, गजल का मिलाना जग हो गया। मैं
0: चलिए
1: फूलों की रानी, पहाड़ों
0: आगे
1: की
0: बढ़ते हैं महबूब
1: मलिका।
0: भाई, सेकंड राउंड की तरफ। और ये गाना प्ले कर रहे हैं, एक शब्द चुनना है, कम से कम चार गीतों के मुखड़े याद दिलाने।
1: देखो, कोशिश करता हूँ।
0: ठीक है।

0: क्या चुनते हैं आप महबूब भाई, हुस्न या चांद? ठीक है,
1: तेरे हुस्न की क्या तारीफ करूं, कुछ कहते हुए दिल शर्माता है। हुस्न हाजी है महापत की सजा पानी को,
0: दो आगे। हुस्न वाले
1: हुस्न वाले तेरा जवाब नहीं,
0: फिर आगे तेरा हुस्न रहे मेरा
1: तेरा
0: इश्क
1: रहे
0: रहे फिर ये सब है ये शाम रहे ना। तो महबूब भाई आपने दो ही गाने गाए हैं। तो जब तक चार मुखड़े आप नहीं गाते हैं, हम थर्ड राउंड में नहीं ले जाते ट्रैक राउंड में।
1: कोई बात नहीं, कोई
0: ठीक
1: बात
0: है,
1: नहीं।
0: तो आपने हमें फोन किया, अच्छा लगा, शुक्रिया फोन करने के लिए। हेलो हेलो जी, नमस्कार, कौन है? हेलो, ये है फिल्मी अंताक्षरी का प्रोग्राम और इसमें आप हमें फ़ोन कर सकते हैं 25-53-300, 25-54-300 डायल करें, 0291 हमारा STD कोड है। हेलो,
2: हेलो,
0: हाँ जी
2: मैडम, मेरा नाम कैलाश गिरी है।
0: जी कैलाश गिरी जी, बहुत स्वागत, नमस्कार, कैसे हैं?
2: थैंक यू मैडम।
0: कैसन बा, कैसे हैं? ओ हेलो, चलिए आपका फोन डिस्कनेक्ट हो गया किसी कारणवश, हम क्षमा चाहते हैं, ये बड़े दुख की बात है, आपसे बात होती

0: आपके गाने सुनते तो और ज्यादा अच्छा लगता। हेलो,
1: गुड मॉर्निंग।
0: वेरी गुड मॉर्निंग जी।
1: न्यू बॉम्बे से दिनेश कुमार सोनग्रा
0: जी। दिनेश
1: मैडम,
0: मैं ठीक हूँ। दिनेश जी,
1: आपका आशीर्वाद पूरे एफएम टीम को नमस्कार और सभी को प्रणाम।
0: पूरी आकाशवाणी परिवार की ओर से आपको प्रणाम।
1: कविता जी नमस्कार।
0: जी नमस्कार। अरे वाह, आज तो आपने पहचान लिया।
1: आपकी जो है ना, आपकी जो वॉइस है ना, इतनी प्यारी है जैसे फूल खिलते हैं।
0: तभी आप हमें अलग अलग नामों से पुकारते।
1: मैं कंफ्यूज हो गया ना, आपके बात हुई थी 23 जनवरी जब मेरा बर्थडे था, याद है?
0: हाँ जी हाँ जी, आपका बर्थडे कौन नहीं भूलता है, आप हर प्रोग्राम में हमें याद दिलाई देते।
1: ये आपका बड़ेपन है मैडम।
0: चलिए एक गाना शुरू कर।
1: मेरी सांसों में बसा है तेरा ही एक नाम, तेरी याद हम सफर सुबह शाम, तेरी याद हम सफर सुबह शाम, तू मेरे दिन में रातों में खामोशी में बातों में, बादल के हाथों में भेजू तुझको ये पयाम, तेरी याद हम सफर सुबह शाम।
0: चलिए आगे बढ़ते हैं
1: जी मैम।
0: सोनगरा जी, सेकंड राउंड का ये गाना सुनिए, एक शब्द चुन लीजिएगा, उसमें से कम आपको चार गीत के मुखड़े याद होने चाहिए।
1: थोड़ा आप हेल्प कीजिएगा,
0: कोशिश कर सकते हैं, हमें भी अगर याद आया तो।

0: आपको पता
1: जी
0: चेहरा
1: ठीक है
0: तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती नजारे हम क्या देखें चेहरा क्या देखते हो दिल में उतर कर देखो ना
1: दो
0: और थोड़ा याद नहीं आ रहा है हल्का सा दो आप
1: चेहरे पे खुशी
0: चेहरे पे खुशी छा जाती है जब तुम अपना कहते हो ये मूवी है तो वक्त
1: जी
0: और यार प्लीज फॉर रिक्वेस्ट
1: चेहरा छुपा लिया है
0: किसी ने ही जाब में जी चाहता कि आग लगा दू नकाब में क्या बात है थैंक यू
1: चलिए ये याद दिलाने का जो काम आपने लगा दिया है हमें ना चलिए
0: आपको बड़ा बोला है थैंक यू वेरी मच वंस अगेन
1: तो अभी ट्रैक पर गाएंगे आप
0: आप भी इसमें हेल्प कीजिएगा
1: अच्छा
0: मैं बैंक के बाहर बैठा हूँ आईसीसी बैंक के पास बेलापुर में
1: तो काहे को ऐसा करते हो चलिए कोशिश कीजिए
0: मैं करता हूँ
1: सुनिए
0: सर्विस करता हूँ यहाँ पे न्यू बॉम्बे में
1: ठीक है धन्यवाद अच्छी बात है खुशी की बात है ट्रैक को सुनिए
0: आदत आदत कर ले

0: अरे
1: यहाँ से
0: यही है ना।
1: हाँ
2: होती
0: अगर
2: हमें और जीने की चाहत
0: ना होती, अगर तुम न होते, अगर तुम न होते,
2: अगर तुम न होते,
0: मैं दो दोस्त रिद्धि ने चाहत न होती, अगर तुम न होते। थैंक यू वेरी मच।

0: थैंक यू. हाँ जी थैंक यू. हाँ जी
1: चार दोस्तों नाम ले रहा, वो मुझसे कुछ गुस्सा हो जाएंगे, मुझसे बात नहीं करेंगे.
0: तो हम आपसे बात नहीं करेंगे.
1: कन्हैया लाल और राजा, और राजा का ऑल स्टाफ प्रताप नगर से.
0: आप एक बात बताइए, यहाँ रहने वाले लोग अगर हमें फोन नहीं कर सकते और आपको फोन करके कहते हमारा नाम लीजिए, तो ये गलती उनकी है.
1: अरे रात को कॉल किया 11:30.
0: चलिए चलिए चलिए, शुक्रिया फोन करने के लिए.
1: थैंक यू वेरी मच, सो नाइस ऑफ यू, टेक केयर.
0: हेलो, ये फिल्मी अंताक्षरी का अंक है और आपका स्वागत है. हेलो, कौन है जो फोन पे है? हेलो, कौन है वो, क्या नाम है उनका? हेलो
2: हेलो.
0: हाँ जी,
2: देवराज चौहान बोल रहा हूँ.
0: देवराज जी, एक और आवाज आएगी साथ.
2: अभी तो डायरेक्ट आपने बताया.
0: बीना जी, चलिए हम बता देते हैं हमारे श्रोताओं को. हेलो बीना जी, कैसे हैं आप? मैं अच्छी हूँ.
3: अच्छा ही जी, मैं सब.
0: हाँ जी, तो देवराज जी और बीना जी चौहान का स्वागत करते हैं तहे दिल से.
3: थैंक यू,
2: धन्यवाद.
0: और अब क्या गाएंगे?
2: हाँ जी, 1971 की फिल्म रखवाला का है जी.
0: अच्छा, चलिए शुरू कीजिए.
2: तेरे जलवों से रोशन नजारे रहे, इन नजारों में तेरे इशारे रहे.
3: नीले अंबर से जब तक सितारे रहे, तू हमारे तुम्हारे रहे.
2: तेरा रखवाला दिन है मेरा, तेरे में मिलने दिल से न जाने क्या कहा हूँ. तेरे में मेरे देखते रहे.
0: चलिए, ये तो बड़ी, देखिए आप अन्यथा मत लीजिएगा, ये तो अच्छी ही बात है कि दिल ने दिल से क्या कहा समझ ही नहीं आया और आप आपस में देखते ही रहे और ये प्रेम यूं ही बना रहे. हम ये दुआ करेंगे बस ऐसे ही आप साथ साथ रहें, गाते मुस्कुराते हुए स्वस्थ एकदम, है ना. आगे बढ़ते हैं सेकंड राउंड की तरफ, ठीक है.

0: होता है दर्द वहाँ, तीर चला के ये तो न पूछ दिल है कहाँ और दर्द कहाँ।
1: दिल की गिरह खोल दो चुप न बैठो,
2: दिल की गिरह खोल दो चुप न बैठो, कोई गीत गाओ। चौथा,
0: मेरा दिल अब तेरा हो सजना के सजा दिन तेरा तो सजना।
2: पांचवा,
0: दिल ने दिल से ये तो गया गया तुम, दिल ने फिर याद किया बल्क सी लहरा।
2: छठा, ये दिल दीवाना है, दिल तो दीवाना है। इस गाने के लिए हम आपको पांचवा छठा करवाए जा रहे हैं, पता है आपको? चलिए, बहुत सुंदर।
0: आप कुछ कह रहे थे, हम सुन नहीं पाए।
2: बस यही ये जो पांचवा छठा करे जा रहे थे ना, ये इस गाने के इंतजार में, ये दिल दीवाना है। चलिए हम थर्ड राउंड की तरफ बढ़ते हैं। ये म्यूजिक ट्रैक प्ले कर रहे हैं, आपको पहचानना है और गाना है।

0: मुस्कुराए तो मुस्कुराए के
1: कर्जे सोचा ही नहीं दर्द संभालने होंगे कर्ज उतारने होंगे मुस्कुराए गा रहे हैं आप
0: है।
1: जैसे होठों पे कर्ज रखा है चलिए एक्चुअल में क्या होता है हाँ जी
0: ट्रैक दिया ना साफ नहीं दे
1: रहा हमें आपकी आवाज नहीं आ रही ट्रैक तो हमें बड़ा साफ सुनाई पड़ रहा है पर ट्रैक में आपकी आवाज दब जाती है जब हम सुनते हैं तो है ना पर कुल मिला के आपका आना बड़ा अच्छा है और आपके आने के लिए हम आपको शुक्रिया कहते हैं आपने हमें फोन किया याद रखते हैं अपना स्नेह पहुंचाते हैं इसके लिए हम कर्जदार हैं तो ढेर सारा धन्यवाद फोन करने के लिए और एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं लौटकर आपसे मिलते हैं
2: उफ, इस पथरी की परेशानी ने तो परेशान कर रखा है कहां कहां इलाज ना करवाया
3: अब चिंता की कोई बात नहीं गुर्दे की पथरी का सफल इलाज बिना ऑपरेशन बिना चीरा बिना टाके सीमेंस आधुनिकतम लिथोट्रिप्सी मशीन से
4: प्रोस्टेट गुर्दा रोग के इलाज हेतु
3: कमला नगर अस्पताल पाल लिंक रोड जोधपुर
5: चाहे गर्मी हो या जाड़ा इलाज हो हर मौसम में प्यारा इस गर्मी से घबराकर अपनी आंखों की सर्जरी ना टाले विजिट डॉक्टर कामदार आई हॉस्पिटल शिप हाउस पावटा जोधपुर
6: कम्प्रीमियम ज्यादा बोनस अपनों के लिए सबसे सही RPLI इससे बेहतर कुछ नहीं
7: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें
2: उफ, इस पथरी की परेशानी ने तो परेशान कर रखा है कहां कहां इलाज ना करवाया
3: अब चिंता की कोई बात नहीं गुर्दे की पथरी का सफल इलाज बिना ऑपरेशन बिना चीरा बिना टाके सीमेंस आधुनिकतम लिथोट्रिप्सी मशीन से
4: प्रोस्टेट गुर्दा रोग के इलाज हेतु
3: कमला नगर अस्पताल पाल लिंक रोड जोधपुर

0: राज्य सरकार व केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए निशुल्क ऑपरेशन डॉक्टर कामदार आई हॉस्पिटल शिप हाउस पावटा जोधपुर।
1: ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत फिल्मी अंताक्षरी के इस अंक में। साक्षी के साथ मैं हूं कविता और हमारे संग कौन है देखे जरा। हेलो
2: नमस्कार।
1: नमस्कार
2: अर्जुन दान चरण कर्मवाक बालोदरा से।
1: जी अर्जुन दान जी बहुत स्वागत है आपका। कैसे हैं?
2: तन मन दुरुस्त।
1: चलिए तन मन दुरुस्त है तो बस फिर क्या चाहिए।
2: फिर क्या है?
1: शरीर से व्यस्त और तन मन से दुरुस्त है ना
2: जी।
1: चलिए क्या गाइएगा?
2: गाते हैं किशोर कुमार का गीत है।
1: ठीक है।
2: दिल ने दिल मेरा दूरा बर्बादी की कर ऐसा मोड़ा एक भले मानुष को मानुष बना कर छोड़ा।
1: नाम बताइए उसका। क्षमा चाहती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। वैसे तो हम आप इतने आदरणीय हैं, हम आपसे ऐसी मजाक भी नहीं कर सकते बट फिर भी। हाँ जी हाँ जी। तो चलिए गाना बड़ा अच्छा आपने चुना और बड़ा दिल से गाया, इसीलिए आगे बढ़ते हैं सेकंड राउंड की तरफ। ये गाना हम आपकी नजर कर रहे हैं।

0: ऐसा कौन सा शब्द है जिस पर आपको तीन चार गाने याद आ जाए? ठीक है, तेरे घर के सामने
1: ही सात रंग
0: क्या बात है? फिर तीन हुए। तेरे चेहरे से ये हो गए चार। जी बड़ी बात है अपने समय में तो, है ना, पास हो जाना बड़ी बात है। चलिए ट्रैक पर गाएंगे आप? चलिए ठीक है, आपने हमें फोन किया और अपने आशीर्वाद स्वरूप इन गीतों से नवाजा हमारे प्रोग्राम को, धन्यवाद फोन करने के लिए। हेलो।
2: हेलो।
0: नमस्कार।
2: नमस्कार,
0: कौन बोल रहे
2: हैं? अकबर खान बोल रहा हूँ कविता से।
0: अच्छा समझ ही गए होंगे आप।
2: समझ गया।
0: कैसे हैं?
2: ठीक हो जी।
0: चलिए बहुत अच्छी बात है, क्या गाएंगे?
2: बहुत मुश्किलों से फोन लगता है।
0: ये आपका स्नेह है भाई, हम क्या कर सकते।
2: बिल्कुल जी बिल्कुल। आज एक रफी साहब का आया थोड़ा सा,
0: क्या बात है
2: सुनाना चाहता। चांद मेरा

0: हाँ जी, क्या चुना आपने?
1: इसमें जी दिल है और याद है, मैं याद पर शुरू करता हूँ जी।
0: ठीक है।

0: हो तुम प्यार से पुकार लो जहां हो तुम
1: अगला गाना
0: याद न जाए बीते दिनों के जाके न आए जो दिन दिल क्यों भुलाए मेरे दिल क्यों भुलाए
1: अगला
0: याद तेरी आएगी मुझको बड़ा सताएगी जिद ये झूठी तेरी मेरी जान लेके जाएगी

0: है। हाँ
1: चार गाने हो गए।
0: जी
1: चलिए, वैसे आपसे तो उम्मीद रहती है 6 7 8 9। हम ट्रैक की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है?
0: ओके जी।

0: Que é a capa da Pátio, nós ali, a minha.
1: Tu já rabire, har khushi. Doito lá, né? Har khushi ho baha.
0: O que é? Cholata de cara, dois segundos, eu vou dar.
1: चले कोई बात नहीं है अकबर साहब, आपने फोन किया, बड़े अच्छे अच्छे गाने हम तक पहुंचाए, शुक्रिया फोन करने के लिए। हेलो
2: हेलो मैम
1: जी, तेजदान जी नमस्कार।
2: नमस्कार, कविता जी बोल रही हैं?
1: हुकुम
2: जी, पहले तो बहुत बहुत बधाई देता हूँ मैं आपको। जी आप हमारे श्रोताओं के सम्मेलन में पधारे थे, उसकी वीडियो वगैरह मैंने देखी, आपका गाना भी सुना हमने,
1: धन्यवाद।
2: हम तो सुनकर अभिभूत हो गए थे,
1: धन्यवाद।
2: मैंने कहा आपको सुनने का मौका मिला हमें, तो मैं पिछले प्रोग्राम में भी आपको मिस कर रहा था, आप थे नहीं, तो मैंने कहा आज आता आता आपको बधाई दे दूं।
1: अरे हम पिछली बार भी थे साहब, आप कहाँ थे?
2: जी मैं मतलब एक साल के आता हूँ ना मैं।
1: चलिए गाना शुरू करें।
2: जी जी हैप्पी जहांगीरी सदा

सदा मैं गीत वहां के गाता हूँ।

0: हाँ जी
1: जी प्यार शब्द लिया है मैंने,
0: ठीक है।
1: प्यार प्यार प्यार प्यार प्यार प्यार प्यार चाहिए, थोड़ा प्यार थोड़ा प्यार चाहिए। एक हो गया
0: नेक्स्ट गाना
1: जी। नेक्स्ट गाना आ गए, क्या बात है। आपने प्यार में प्यार कर ले, प्यार कर ले, नहीं तो फांसी चढ़ जाएगा। प्यार कर ले, नहीं तो यूं ही मर जाएगा। ये दूसरा हो गया मैडम।
0: प्यार में आपने बोला, प्यार में से भी गाना है।
1: जी काफी है आज, पता नहीं
0: प्यार
1: क्यों
0: में दिल
1: दीवाने, प्यार
0: पे मार दे गोली ले।
1: दीवाना होता। याद आ गया मुझे एक और, प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है। ये हो
0: एक
1: गया तीन,
0: और।
1: फिर
0: हाँ जी
1: एक और चाहिए ना। प्यार

0: Bot, you be at I have him. Bot, no, thank you, आपने कभी याद दिलाए दो आज.
1: चलिए अभी तीसरे राउंड की तरफ चले.
0: शुक्रिया मैम.
1: चले क्या म्यूजिक ट्रैक की तरफ?
0: बिल्कुल बिल्कुल, चलने को तैयार हूँ मैम.
1: ठीक है फिर.

0: इसमें दोनों लाइन दो दो बार है ना तीर्थान जी।
1: अच्छा दो, अच्छा अच्छा मैम, थैंक यू बताने के लिए आपका।
0: कोई बात नहीं, आपने फोन किया, बड़ा अच्छा लगा, शुक्रिया फोन करने के लिए,
1: बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।
0: जय हिंद। हेलो।
2: हेलो मैडम
0: जी, नमस्कार,
2: मेरा नाम कैलाश गिरी है, जोधपुर नांदेड़ से बोल रहा हूँ।
0: जी कैलाश जी, आपका फोन कट हो गया था ना।
2: गाना गाऊ मैडम? चांदी की दीवार तोड़ी प्यार भरा।

0: निर्णय का दामन तोड़ दिया चांदी की दीवान।
1: बहुत बढ़िया कैलाश गिरी जी, अपने रेडियो सेट का वॉल्यूम थोड़ा सा कम कर दीजिए।
0: हाँ मैं
1: और सेकंड राउंड का ये गाना सुनिए।

0: क्या शब्द चुना?
1: चेहरे
0: ठीक है,
1: दिन को देखो चेहरा ना देखो, चेहरे ने लाखों लूटा, दिल सच्चा और चेहरा झूठा, तेरे चेहरे पे वो जादू
0: क्या
1: है,
0: बात।
1: दिन रोज चला आता हूँ, जाना था कहीं और, कहीं तेरी ओर चला आता हूँ,
0: ठीक है, आगे
1: चेहराए या
0: क्या बात है।
1: चांद क्या नाग
0: जैसी आंखों वाली
1: वाली
0: ये
1: ये तो
0: तो बता
1: बताते
0: तेरा।
1: नहीं, नाम है क्या?
0: हाँ,
1: एक
0: एक और
1: और चेहरा ये तो
0: चेहरा क्या
1: था,
0: देखते हो,
1: क्या देखते हो,
0: दिल में उतर कर देखो
1: देखो
0: ना,
1: ना,
0: दिल में उतर कर
1: उतर कर
0: देखो
1: देखो
0: ना।
1: ना।
0: चलिए, ये हमने चार गाने पूरे कर लिए है ना,
1: हाँ ठीक,
0: अभी आप ट्रैक पर गाएंगे?
1: हाँ बिल्कुल,
0: ठीक है, तो सुनिए।

0: कैलाश गिरी जी
1: आज मैडम
0: बड़े अच्छे गानों की जानकारी रखते हैं, गाते भी बड़ा अच्छा।
1: मैडम बहुत पुराने 50 साल से ज्यादा हो गए सुनते हुए।
0: जी बिल्कुल,
1: रेडी अकेला अपन बैठ कर सुबह से शाम को 5 बजे तक पूरे गाने सुनता हूँ यहाँ बैठे बैठे।
0: बहुत अच्छा, धन्यवाद।
1: वाटर बॉक्स से रिटायरमेंट के बाद
0: इस प्रेम के लिए हम आपको धन्यवाद प्रेषित करते हैं। फोन आपने किया बड़ा अच्छा लगा, शुक्रिया।

0: हेलो।
1: हेलो
0: हाँ जी नमस्कार।
1: हेलो
0: नमस्ते। हेलो।
1: हेलो
0: हाँ जी नमस्कार सुमित्रा जी।
1: हेलो

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम अंताक्षरी। ये आकाशवाणी जोधपुर का FM सन सिटी चैनल है, FM बैंड 102.1 MHz पर। आइए सुनते हैं हमारा अगला कार्यक्रम, टेम ने नमस्कार।
1: आपरी वाणी आकाशवाणी हाजिर है आपरो पसंदीदा प्रोग्राम टेम ने नमस्कार।

0: बर्थडे ते बैठा ना जी हो रो वे
1: आले तो ही काकू आले घर घर में बावे लो
0: को नहीं भाई हमें तो कह नहीं गिरमी इतनी होगी एक बार मार तो आप
1: मोटे मोटे है राम जान जो थे घरे डागले माते पायड़ा
0: ना दे क्या कौन भाई उठा पान ढाड़ी हूँ कम मिन बकाया नहीं के घरों घरों की दिकोट की अन पास आई
1: ना ना अल्ले हमें कहूँ लोग हम जन रोगा जो को अंठा है कि भाई अपो हमें हावल नहीं दिया तो आओ नाले पीढ़ियों खतरे में
0: मिन का भर घरों आई कि भाई उनके कौन कौन ही
1: तो कई जना ऐड़ा है हालांकि घना नहीं है पर तो कई है एड़ा जो पेड़ पौधा हूँ प्रेम करन लागा है एंड पेड़ पौधा घर में ही राखन डूका है
0: क्या नहीं रिपिया बेड़ा करने लागोड़ा है कोई कोई कोई कोई कोई नहीं है जो कभी थोड़ा घना कोई गाउड़िया में बावे था कोई नहीं बागे

0: को अंठा है कि भाई अपो में हावल नहीं दिया तो आम नाली पीढ़ियों खतरे में हो जाए।
1: मिन का भर घनो आई कि भाई उनके कौन कौन ही
0: तो कई जना ऐड़ा है, हालांकि घना नहीं है पर तो कई है ऐड़ा जो पेड़ पौधा हूँ प्रेम करन लागा है और पेड़ पौधा घर में ही राखन डुका है।
1: क्या नहीं रिपिया बेड़ा करने लागोड़ा है कोई कोई कोई कोई कोई नहीं है जो कभी थोड़ घना कोई गाउड़िया में बावे सा कोनी बागेट है मेरे भाई ये कम के ठा नहीं के उठा की करी मगज होयो मैं गारो तो हूं हुनिया हमसार है जी को भाई मारो करो जद मन अंदर अने सो नहीं आवे तो कौन करू
0: ना ना तो रणी सुभा जी बे का
1: है जो का नहीं के गोडा में जे मा तो घाल बे रो नु मन करे और कौन करू
0: ना थारो अने सुकर नो वाजब है जो थंठा है ते काल हु काल हैं देखियोड़ा
1: देखियोड़ा भाई
0: जन थन दियो ने
1: हूँ तो कहूँ भाई ए, ए, क्या नहीं कुदरत बनाया है कौन मांगे की को मांगे हूँ तो कहूँ कोई खेली भर दो कटोरी कोई कह डांडो आयोड़ो पानी पिए तो कह थोड़ो पुन प्रताप है भाई ले बात बतल करा दे मार बात बच घणो जीव कल्पन डूब जाएगी
0: करो। हेलो
2: कविता भाई सा ने काकू ने रेडियो सुनने वाला हेतल सरोतो ने भाई दिनेश ओडेरा घणा घणा राम राम ऐसा
0: दिनेश जी ने भी घणा घणा राम राम
2: काकू रहने तो एक तो वाजिब है और दिनेश ओडारी भी रविंद्र में पहल है आकाशवाणी मार्फत के चिड़ियो रे कबूतर रे एक सकोरो पानी भरे जरूर रखनो दाणो पानी रो ताकि बेजुबान परिंदे अपनी प्यास बुझा सके।
0: बिल्कुल
1: अरे हूं तो को पहला पौ खोलता
2: बिल्कुल
1: अन कई रे कई होता न मैं जो कोई है ही कोई है
0: इन मिने में मुणो भरभर मेलता घर घर
1: मैंने कितो बदलियो उन उम्र में देखियो भाई दिन भाई मार येड़ो कड़पे गणो
2: कड़पाणो नहीं काको री आपने आवे जड़ आने तनी आवंडनो एकमात्र प्रोग्राम है जो को बेजुबान परिंदो रही सब लोगों री अपन समाज री बात रखे।
1: वाह भाई हम थे पौड़ी सडो
2: सडा दो काको
1: एक तो वे गंगत एक वे मंगत
2: मंगत तो किनी बाप कर जो मांगो या कोई चीज मांगो जाने के मंगत गंगत मतलब एक ही चीज बार बार रिपीट करे एक ही चीज बार बार गावे जन के गंगत
1: हूँ गंगत गाऊ हनी
2: मैं नहीं कह
1: सकता नहीं नहीं नहीं मनचा पड़ की मैं बात की हवल पूछी मन का कर
2: हवल बात की नहीं वे दीवान परिंदारी मुख परिंदारी अच्छी बात गई काको ताकि किन की
0: तो थार मान करे था नहीं यूं की कर गए
1: कौन तो कहो है बस मैं हम कौन कहो है हम
2: नहीं नहीं थे आज अधिकारी
1: हो कृष्ण भाई आज तावड़े में बैठ रहे मार जीव घणे कल्पे घणे कम दे मैं जाऊं नाला दूजा है जो मने घणे भाई मारे में करूं
2: कहो काकू आज कम का वाला अगर कम तो नहीं करे तो अपन मकान कौन बना दे उन्होंने धन्यवाद सबने सैल्यूट करो
1: मैं तो भाई देखो कोई खने
0: मैं तो थारे आप ही बुझू काकू थे ऐड़ा मौसम में खेत नहीं जोता काम नहीं करता तो मैं कौन जीमता
1: बात है भाई हमें
2: नहीं
0: जाए जो को सोट बोट में रहो नलर तो जन पचे बारे हम
1: बो के नहीं जाओ जित तावड़ो है लो मैं
2: पण काको ने तावड़ लाको कोन बहुत ही बांध नावे जनो
1: हमें दूजे पावड़ी काम कर चढ़नो
2: हां चलो काको
1: के हंसा सरवर ना तो जो जे जल खारो होई अरे डाबर डाबर डोल ता भला ने कैसी कोई
0: कोई
2: हां के जगह जगह भटकनो की नी सरवर नी छोड़ न कड़ी पिपता आ जावे कड़ी दुख सुख आ जावे तो सरवर नी छोड़ न पुरानी प्रीत है
1: हां पुरानी प्रीत है ने कहनी ना तो रिश्तो है। वाह भाई दिन भाई ओ दे दीजे पौड़ी झटका तीजे पौड़ी मैं आडी हाको
2: तीजे पावड़ी आडी आ है काकू के अजा पुत्र का संबंध ले हाथी कह ले अंत अरे काकू मैं तो ने पूछू अड़ी तरकारी लावणी के भोजन बने अनंत
1: भोजन बने अनंत
2: हाँ काकू
1: अजा का नाम ले
2: अजा पुत्र का संबंध ले हाँ
1: अजा पुत्र का संबंध ले
2: हाथी का ले अनंत
1: हाथी का अनंत
2: कहूँ पूछू काकू अड़ी तरकारी लावणी के भोजन बने अनंत
1: कौ वे
2: मेथी वे काकू अजा पुत्र बकरी रो मैं और हाथी रो लास्ट वाला सब थी
1: मेथी मेथी गया बच क्या नहीं भाई आप कोई नहीं रहा छेती कोई छेती नहीं रहे वाह भाई वाह के कौन थे मेथी जी में जाओ मेथी हाँ लो ये ले मैं दी थारी ठीक है वाह भाई ओ वाह જે પૌડી હતી જે પૌડી સડસુદા ને આપણે ક્યાં રામ રામ.

0: राम
1: राम राम राम राम।
0: गिरदी कोट,
1: गिरदी कोट में थारे कहूं कहूं भाई ठंडो पानी। गिरदी कोट में पहला घणी पाव मत पावता भाई। हमें हाल है जो
2: पाव तो अच्छी है गिरदी कोट में। हाँ
1: वाह भाई, हूं तो जाओ तो जित को एटो बैन आपरे भूख
2: भूख मान ठंडा ठंडा पानी।
1: हां बे पावती तो करी भाई, अबे ना बैठी पावती मीठो मीठो ठाडो ठाडो यारो हुग नालो।
2: हां पानी तो मी है, हमें मसी न पावे।
1: आ पावे के कोनी, हमें पहले पौड़ी सड़नो केल भाई। हां
0: चलो
1: मत भाई हिल गया,
0: पड़पड़ाट
1: गयो, पड़पड़ाट नहीं गयो।
0: पड़पड़ाट तो चमके बेटी चमके पड़पड़ाट करे।
1: खड़खड़ाट
0: फलफड़ाट
1: को गए थार का मगज आगे दिए घणो दौड़े।
0: फलफड़ाट को गए
1: हां
2: खळ खळ
1: फलफड़ाट गयो मैं। खळखळाट
2: खरबूजे हालो ख
0: आ तो सानी
1: आवे। वाह जो धमके बड़े खपत कर लो भाई।
2: हम के मैं आवे जन डाल मा तू भरे।
1: हां जे पानी खळखळाट कर तो बे। वाह कर भाई, ये कहो तालियां बजे ढुकी है के बताई जी सही कोनी ने।
0: राम राम काकू।
1: राम राम राम राम।
0: दिने सोनी बोलो आसो
1: तू। वाह भाईओ आओ। दिन भाई आया बड़े।
0: काकू भाई हालचाल है?
1: ठीक है, मैं पौड़ी सजना।
0: हां पौड़ी सजनो काकू।
1: एक तो वह फलगटी ने एक वह थलगटी।
0: फलगटी तो बावे घर मुंडा का पण जकी थलगटी वे घर बीच में ने जकी फलगटी।
1: घर बीच में घर मुंडा आ गया है तो हां
0: फलगट। एंड और कहीं पूछियो फलगट।
1: फलगटी फलगटी
0: फलगटी खेत रे मायने जी की रेनिंग। पावा जी की बा। बा गए
1: ओ
0: फलगटी
1: यूं थारोड गवार बावी कोनी।
0: बावा गवार बावे
1: तो गवार काडिया बस कहीं फलिया न बो कहूं रे
2: लारे बच्चे जी की फलगटी।
0: ओ लार बचड़ी बचड़ी।
1: हाँ थे होना ही घड़िया हो।
0: होना अबे कहीं घड़ा अबे मैं भी बंद कराई दिया।
1: वाह वाह कहीं कौन बे तो हाउल का ही हो भाई।
2: एंड थलगट है प्रवेश द्वार दी देरी।
0: हाँ हाँ दे हाँ तो मैं बताई।
1: ठीक ठीक हम दूजे पौड़ी है।
0: हाँ हाँ साथ में चलो।
1: के गुणी तो तजे अवगुण और गुणी तो तजे अवगुण। अवगुणी तजे गुण
0: छोटो आदमी वे जिको तो गुण छोड़ देवे और गुणवान वे जिको वो गुण ने कोनी पकड़े और रखे।
1: वाह ते मुंडा पशु होगा वो की कोने हम जो बड़ कर दो। एक दिन भई उन दूसरे दिन भई वाकई कौन देनी बात है थोड़ी
2: एक कहावली सुना
1: पर उत्तर करी? पर उत्तर भाई दे जाए के
0: सांकुना भाई साना
1: जोरदार है जोरदार है आपरे तपीड़ो हो बात हो
2: तो है
1: कोनी।
2: एक
1: तो
0: ढोल
2: रोई गमीडो उठे
0: ढोल रोई गम
2: एने ठमको है नाचे जनो।
1: वासा वाह भाइयो पहले पौड़ी सदा दिया दूसरी पौड़ी है
0: दूसरी पौड़ी कर हो कोशिश।
1: हाँ दूसरी पौड़ी कर दो कोशिश के ठग ठगारा पावना जीकारे व्यवहार।

0: तो यहाँ ठग ठग ठगा हो कह रहा बवार हो तो थोड़ी देर ठग गाई जावे थोड़ी देर रिस पाना हो।
1: आ बात है उजला गबन हनी तो मुझे पौड़ी सर तीजे पौड़ी आदी आको
0: आदी आको। तुम डाल बने हम फूल बने हमने ऐसा किया तुम रो दिए।
2: खादो खादो
0: ना ना भाई जी
2: बिसु कौन में
0: बिसु बिसु
2: हाँ तो ऐ तो कहूँ खादो कदी
1: गड़े खादा काला काला वर्षा वा दिनी बात है
2: मु एक बार मुंह को पानी पीती होठ मत खाल।
1: अरे भाई देगा पीठा नहीं पड़े जीव जिंदा हो रहे तो आ ठीक सा ठीक दिनी बात है दिनी बात वाह भाई है भाई।
2: हाँ भैया
1: अम्बा लवनान कहता हाँ कोई अम्बा तरबूजिया कोई है जो शरबत दूजी इनके पुदीना ने कटे
2: मंगाएड़ा
1: कब मंगाएड़ा ले लाई जो कौन बात करे
2: आवे आवे है
1: आवे तो वहाँ ठीक है देख ले आवे कोई काम कहता थानु तो ये नहीं भाई कि वहीं पे जो केलु ने कहता तो बोलो है जो लिया हो तू मत भी जाते बात कर
2: मैं कह रही हूँ काकू आवे है
1: वह आवे ठीक ठीक हो नहीं आऊँ तो चुदे

0: ਰੁਕੋ
1: ਨਾ ਕੋਈ ਮਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਰੀ ਹੀ ਉਹਨੋ ਹੀ ਕਿਆ
2: ਤੋ ਹੀ ਉਹਨੋ ਹੀ ਲਿਖ ਕੇ ਜਨ ਕਹਿ ਬਈ ਇੱਕ ਰੁਕੋ ਬਣਾ ਨਾ ਤੋ
1: ਓ ਠੀਕ ਠੀਕ
3: ਸੁਪਾਉਣਾ ਨੇ ਕਿ ਰੁਕੋ
2: ਨਾ ਲਿਖਣ ਰੱਖਣੋ ਰੁਕੋ ਛੋਟੇ ਕੋਨੇ ਮਾ ਤੇ ਕੋਈ ਆਪ ਪਰਚੀ ਮਾ ਤੇ ਲਿਖਣ ਰੱਖੋ ਬ ਰੁਕੋ
3: ਅੱਛਾ
0: ਕਾਗਜ਼ ਰੋ ਰੁਕੋ
1: ਵਾ ਭਾਈ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਪੌੜੀ ਸੜਗਾ ਦੂਜੇ ਪੌੜੀ ਹੈ ਗੰਗਾ ਨਾਇ ਗੋਮਤੀ ਛੱਡਿਓ ਨਾ ਗੱਡ ਗਿਗਨਾਰ ਬਿਨ ਜਾ ਰਹੇ ਬਲਦ ਗਯੋ ਜਮਾਰੋ ਹਾਰ ਨਿਕਲੇ ਬੈਟਰ ਗੁਦੜੀਆ ਅੱਲਾ ਕਰਪਰਾ ਟਾਟੀ ਮਤ ਨੈਤ ਅੱਲਾ ਰੇ ਪੰਕੋ ਸਲਾਵੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਉਂ ਕਰੀ ਉਹ ਕਹਿ ਫੁੱਲ ਲਗਾਇਓ
0: ਦੇਸੀ ਜੁਗਾੜ
1: ਉਹ ਆਕੇ ਦੂਜੀ ਪੌੜੀ ਸੀ ਦੂਜੀ ਪੌੜੀ ਹੈ ਦੂਜੀ ਪੌੜੀ ਹੈ
3: ਮਤਾਂ ਕੋ ਗੀਤ ਲੈਣਾ ਗਾ ਦੂੰ
1: ਗੀਤ ਗਾਓ ਗਾਓ ਭਾਈ ਗਾਓ ਗਾਓ
3: ਮਾਰਾ ਹਰਿਹਰ ਬਨਰਾ ਸੁਗਤਿਆ ਥਨੇ ਰਾਮ ਮਿਲੇ ਤੋ ਕਈ ਜੇਰੇ ਥਨੇ ਰਾਮ ਮਿਲੇ ਤੋ ਕਈ ਜੇਰੇ ਥਨੇ ਸ਼ਾਮ ਮਿਲੇ ਤੋ ਕਈ ਜੇਰੇ ਮਾਰਾ ਹਰਿਹਰ ਬਨਰਾ ਸੁਗਤਿਆ ਥਨੇ ਰਾਮ ਮਿਲੇ ਤੋ ਕਈ ਜੇਰੇ
1: ਵਾਸਾਵਾ ਰਾਮ ਮਿਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਵਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਜੇ ਹਰੀ ਤੀਜੇ ਪੌੜੀ ਸਦਗਾ ਹੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆਪਣੇ ਹਾਂ ਸਰ ਬਸ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਤਾ ਰਹਿ ਜਾ ਇਉਂ ਇਹ ਬਾਤ ਹੈ ਬਾਈ ਸੌਖੀ ਬਾਤ ਹੈ ਬਾਈ ਕਰੋ ਜੀ ਕੋਈ ਸੌਖੀ ਹੈ ਦੂਜੋ ਠਾ ਨਹੀਂ ਹੈ
2: ਥੋੜੋ ਛਕੜੋ ਡਬ
1: ਛਕੜੋ ਕਹਾਂ ਡਬ ਕਿਉਂ ਕਰਨੋ
4: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें
5: चाहे गर्मी हो या जाड़ा इलाज हो हर मौसम में प्यारा इस गर्मी से घबराकर अपनी आंखों की सर्जरी ना टाले विजिट डॉक्टर कामदार आई हॉस्पिटल शिप हाउस पावटा जोधपुर
6: पथरी प्रोस्टेट से पाना हो छुटकारा तो विनायक हॉस्पिटल ही अपनाना जहां सुप्रसिद्ध यूरोलॉजिस्ट एवं गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर प्रदीप शर्मा द्वारा इसका निदान पाया जा सकता है
7: RGHS वचिरंजीवी योजना के अंतर्गत निःशुल्क ऑपरेशन पथरी मतलब विनायक हॉस्पिटल गीता भवन रोड जोधपुर
8: पथरी प्रोस्टेट गुर्दा रोग मूत्र रोग व यौन रोगों के इलाज हेतु सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर प्रकाश रांका यूरोलॉजिस्ट व एंड्रोलॉजिस्ट बरकतुल्ला स्टेडियम के सामने जोधपुर मोबाइल 9829027065
9: कम प्रीमियम ज्यादा बोनस अपनों के लिए सबसे सही RPLI इससे बेहतर कुछ नहीं
4: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें
10: दुनिया रा सारा सुख एक तरफ हर माँ बड़न रो सुख एक तरफ
11: निसंतान दंपतियारे जीवन में खुशियाँ री उम्मीद विनायका हॉस्पिटल एंड IVF सेंटर गीता भवन रोड जोधपुर
12: राज्य सरकार व केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए निशुल्क ऑपरेशन डॉक्टर कामदार आई हॉस्पिटल शिप हाउस पावटा जोधपुर
13: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश
14: जिंदगी परीक्षा के लिए नहीं है हमारे जीवन को बनाने के लिए शिक्षा एक माध्यम है
13: NCPCR आयोजित कर रहा है परीक्षा पर्व जिसके लाइव सेशन के दौरान आप परीक्षा से संबंधित प्रश्न एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें
8: पथरी प्रोस्टेट गुर्दा रोग मूत्र रोग व यौन रोगों के इलाज हेतु सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर प्रकाश रांका यूरोलॉजिस्ट व एंड्रोलॉजिस्ट बरकतुल्ला स्टेडियम के सामने जोधपुर मोबाइल 9829027

0: नहीं, मैंने कोई नहीं कह सका, खलक मुलक मार मेरी रिपियो को मांगे
1: नहीं, कोई नहीं मांगे ना, हम चीज बस लाए तो घड़ी घड़ी के
0: पाया, हां घड़ी घड़ी पाया, हां बात है
1: हम कुल में
0: आदि आदि आको अर्जुन जी
2: आदि आको आदि कोई आ गई
0: पल्ला धारी सोसो कोसा दड़ी आवे लागे सबने प्याजी है
2: जोरदार
0: चीज है तो हैंग है जिको ठीक है आंधी घनी आई है मैं आंधी आंधी है आंधी लारे में आवे हैंग बाता भली हुए राम राम
3: राम राम सा राम राम
0: कौन बोलो सा
3: मैं शंकरलाल बोलू कविता भाई ने राम राम और पाए बैठे जी का लीना भाई सा राम राम सा
1: राम राम सा
3: अबार काकू अगर जानो तो के वो गिरीनगर नहीं है वो श्रीनगर है
0: मन कहूँ था ना हूँ ये जो कह दियो वैसे कहूँ वो
3: मारे काकू काले कोई वीडियो दे की थी कि बढ़िया है तो मशीन वाद ही हो जी को श्रीनगर याद है क्यों
0: ना मैं कहूँ क्या कहूँ दे दियो
1: कहीं कौन ऐतान जाने को नहीं हो क्या बरे शंकर लाल जी तुम बो एक फूम्बो
3: तुम्बो तो सर जी को खेतों में उगे जी का तुम्बा वह जी को जी ने गुना खाया करे
1: ना मैं तुम भी हूँ हाँ पर मोटो तुम बो भी है चलो ठीक
3: मोटो तुम बो और दूसरे क्यों आप तुम बो
1: फूम्बो फूम्बो
3: एक तो फूम्बो जी को ने वो गार मत है जी वो फूम्बो
1: मैं फा फल वालों कह रही हूँ फूम्बो
3: फूम्बो अच्छा वो तो साथ देखो डॉक्टर साहब तो ये कि नहीं कोई हुई भी लगा हुआ तो पहली मात्र फूम्बो
1: हाँ मैंने याद है रुई रो फूम्बो
0: ताला बजाई
1: तो बस गीत रो हुनायो ये वादियां
0: बताए तो फुंबो है बजे गए हम दूजे पौड़ी साडो कर बजे हां
1: साडो
0: हूँ साडू तो भाई मने सर कह फिकर साड ना रिया न कह के डगमग ऊंचो रूं खड़ोड़ तगमग ऊंडी डाल चाले जद भाई रो नमे जोड़ हाथ
3: डगमग
0: तो
3: एक बात बोलो तो
0: डगमग ऊंचो रूं खड़ो तगमग ऊंडी डाल चाले जिद बायरो नमे जोड़ बो हाथ
3: तो सा कह के दिन कैमरा मतलब अपन दिन छोका है उनते तो हर चीज अपन अच्छी लगे दिन फरा है पते तो हर चीज तो ठीक पड़ी
0: अरे वो तो रूंकड़े मा तो कहड़ो शंकर भाई कोई गोर घूमे रूंकड़ो वैन मठी डालो वैन पजे हवा आवे नहीं जद बो लुल लुल नमस्कार करे
3: ओहो आप समझो अब
0: हम जो है जो क्या नहीं
3: इंसान नम्रता होनी
0: चाहिए हाँ बात है कल्याण की नहीं काम को आवे
3: बिल्कुल
0: थे गए जो को कह नहीं के हम उनका हूँ तो भाई थोड़ा मारो ठीक को लगे
3: नहीं नहीं सर बहुत अच्छा लगा
0: वाह मैं थे तीजी पौड़ी में आड़ी आको
3: एक तो मैं कोई आदि है या कोई लोकोक की है कोई कहावत मैं कभी पढ़ी थी के आया आया हाला ने हाडू धीमो घी ने लाडू आया देवर ने पेट उठे ताकी ने पेट ये तो मतलब सही है समझ में नहीं आया मैंने
0: ओ आज दिन बजे घर जा नहावल है दिल पहले लिख रट लो पर घर घर में हैं वो पहले कोई पूछताछ करो घर में करो
1: घर में करो हाँ
0: घर में कर जाओ

0: जो ठप पड़ जाए
1: उठ उत्तर पर उत्तर मिल गया
0: सही उत्तर मिला
1: राम राम
2: राम
1: राम राम राम राम
2: ये अलग अब
1: ठीक है हाल चाल तो भाई बताओ पड़े है अम्बा लाया है भाई ने खरबूजान तरबूजान क्या कई है जो को आज अब पया उपड़ी
2: थोड़ा फ्रिज में राशन खाई हो
1: ना हुआ भिजो ने एकदम है जो क्या नीम रेट मेल दे
0: मोढ़ोनी में कटे फिर से
2: शुद्ध हवा में बढ़िया जय जना रस्ता जी माना है बुलाया
1: हाँ ठंड बुलाया क्यों मारे खुटो उन्हों है बुलाया माना ना ना है कि कौन
2: है तो देखो जाना बाहर के खाना
1: हाँ नहीं नहीं थे आओ तो लेता ही जो
2: हाँ जरूर लाऊंगा
1: हाँ बुलाओ ना तो हम देखो घना भाई रहेगा आई गाज बस मारे खुबरी ही कोई बच्चे नहीं पाता है
2: ओकम ओकम
1: मैं
2: हाँ ना
1: हम एक तो वे बहुतो और एक वे बहुतो बहुतो और एक वे क्यों तो

0: शालीनता है जिसकी शान, सौम्यता है इसकी पहचान।
1: ये शहर है अमन का, यहाँ की फिजा है निराली।
0: FM सन सिटी।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम टैम ने नमस्कार। ये आकाशवाणी जोधपुर का FM सन सिटी चैनल है। FM बैंड 102.1 मेगा हर्ट्स पर। इस समय दोपहर के ठीक 12 बजने को है। कुछ ही पलों में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार रिले किए जाएंगे।
1: के साथ मैं कनकलता। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की दो दिन की बैठक नई दिल्ली में चल रही है। इसकी अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर कर रहे हैं। बैठक में ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्री तथा सदस्य और भागीदार देशों के शिष्टमंडल प्रमुख भी हिस्सा ले रहे हैं। भारत की अध्यक्षता में आयोजित इस वर्ष का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण। ये विषय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मानवता प्रथम और जन केंद्रित दृष्टिकोण से प्रेरित है। इस अवसर पर डॉ जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है।
2: हमारी चर्चाओं का उद्देश्य ऐसा सतत विकास सुनिश्चित करना होना चाहिए जो समानता के सिद्धांतों तथा साझी लेकिन अलग अलग जिम्मेदारियों की भावना पर आधारित हो। तकनीकी प्रगति वैश्विक परिदृश्य को बदल रही है। इसका उपयोग सुशासन और समावेशी विकास के लिए प्रभावी रूप से किया जा सकता है। हाल के संघर्षों ने संवाद और कूटनीति के महत्व को और स्पष्ट किया है। आतंकवाद के खिलाफ सहयोग मजबूत करने पर सभी देशों की साझा सहमति है।
1: डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि चल रहे संघर्ष, आर्थिक अनिश्चितताएं और व्यापार, प्रौद्योगिकी तथा जलवायु परिवर्तन से जुड़ी चुनौतियां वैश्विक परिदृश्य को बदल रही हैं और ऐसी उम्मीद बढ़ रही है कि ब्रिक्स इसमें सार्थक तथा स्थिरता लाने वाली भूमिका निभाएगा। बैठक के दौरान ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्री वैश्विक और आपसी हित से जुड़े क्षेत्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। वे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। कल दूसरे दिन ब्रिक्स संगठन के सदस्य और साझेदार देश ब्रिक्स A20 लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण विषय पर एक विशेष सत्र में हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज सुबह नई दिल्ली में इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने बताया कि बैठक

0: के दौरान उन्होंने व्यापक रणनीतिक भारत इंडोनेशिया साझेदारी की प्रगति और दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ आसियान के साथ सहयोग की समीक्षा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि श्री मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। केंद्रीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि कृषि, डिजिटल अवसंरचना, स्वास्थ्य देखभाल और स्वच्छ ऊर्जा से लेकर विनिर्माण तथा प्रौद्योगिकी भागीदारी के बाद अब भारत अफ्रीका सहयोग का अगला चरण उच्च मूल्य उत्पादों और एकीकृत आपूर्ति श्रृंखलाओं पर निर्मित होगा। कल नई दिल्ली में भारत अफ्रीका कारोबारी संवाद और प्रदर्शनी तथा भारत अफ्रीका शिखर सम्मेलन से पहले आयोजित एक कार्यक्रम में श्री गोयल ने यह बात कही। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ ने 2 दशक की अल्पावधि में देश के 140 करोड़ नागरिकों का विश्वास जीता है। श्री शाह ने गाजियाबाद में आज एनडीआरएफ के राष्ट्रपति ध्वज समारोह में कहा कि आपदा की स्थिति में एनडीआरएफ की मौजूदगी से लोग सुरक्षित महसूस करते हैं।
1: एनडीआरएफ को राष्ट्रपति निशान का सम्मान दिया गया, वो हम सब के लिए गौरव और प्रतिष्ठा की बात। ये सम्मान एनडीआरएफ के समस्त बल के सेवा, साहस, शौर्य और समर्पण के संचित गुणों का सम्मान है। 20 साल के कम अंतराल के अंदर आपदा बचाव के क्षेत्र में भारत को वैश्विक नक्शे पर रखने का काम एनडीएमए और एनडीआरएफ ने किया है।
0: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कल नई दिल्ली में कृषि मंत्री शिवराज चौहान से मुलाकात कर राज्य की विभिन्न कृषि चुनौतियों से उन्हें अवगत कराया तथा मूल्य वर्धित फसल खेती पर जोर दिया। श्री चौहान ने उन्हें आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार पंजाब के किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि कपास, दलहन, तिलहन और बागवानी अभियान के लिए केंद्र और पंजाब सरकार मिलकर काम करेंगे। आईपीएल क्रिकेट में आज पंजाब किंग्स का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। प्रतियोगिता में कल रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 6 विकेट से हरा दिया। विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आपने ट्यून इन कर रखा है आकाशवाणी जोधपुर का एफएम सन सिटी चैनल 102.1 MHz पर। दिन के 12:05 हुए हैं। अब विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम अनुप्रसारित किए जाएंगे।
3: महफिल में आइए याद करते हैं राजकुमार बड़जात्या जो कि निर्माता निर्देशक रहे, उन्हीं की फिल्मों में से चुनिंदा कुछ गीतों को सुनते हैं आज के कार्यक्रम यादों की महफिल में।

इसी लाइफ में इस फिल्म से हम सुन रहे थे उदित नारायण की आवाज में मनोज मुंतशिर के बोल और मीत रोजनजान के संगीत के साथ में। आइए सुनते हैं अगला गीत कार्यक्रम यादों की महफिल में, जो कि है हम साथ साथ हैं फिल्म से। हरिहरन, घनश्याम वासवानी, प्रीतम राव, संतोष तिवारी की आवाज में, जिसे रविंद्र वाल ने लिखा है।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है यादों की महफिल और आज यादों की महफिल में हम याद कर रहे हैं निर्माता निर्देशक राजकुमार भरजात्या को। तो आइए सुनते हैं उनके ही द्वारा रची गई फिल्मों में से फिल्मों के गीत। अगला गीत होगा चितचोर फिल्म से, यशुदास की आवाज में रविन्द्र जैन के बोल और रविन्द्र जैन के ही संगीत के साथ।

0: सौदागर फिल्म का यह गीत हम सुन रहे थे आशा भोसले की आवाज में, रविंद्र जैन के बोल और रविंद्र जैन के ही संगीत के साथ। आइए सुनते हैं कार्यक्रम में ये संदेश।
1: कुछ रेशमी ख्वाब, कुछ मखमली अंदाज।

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: उमस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है यादों की महफिल और आइए सुनते हैं बहुत सुंदर सा नगमा अगली गी फिल्म के साथ में, जिसे निर्माता निर्देशक राजकुमार बड़जात्या जी के द्वारा बनाया गया है। ये है प्रेम रतन धन पायो फिल्म से अन्वेषा, विनीत सिंह, हर्षदीप कौर, शबाब सबरी और साथियों की आवाज़ में। इरशाद कामिल के बोल हैं और हिमेश रेशमिया का संगीत है।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, यादों की महफिल में आइए सुनते हैं एक बहुत खूबसूरत सा गीत। हम आपके हैं कौन फिल्म से, लता मंगेशकर, बाला सुब्रमण्यम और साथियों की आवाज में रविंद्र वाल के बोल हैं और राम लक्ष्मण का संगीत।
1: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, let's start the fun.

0: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
1: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
0: सखी सहेली?
1: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
0: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
2: सखी सहेली।
3: जैसा कि आप जानते हैं, विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने, देवीदास लेन, बोरीवली पश्चिम, मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त, आप सभी खुद आए और अपने दोस्तों को लेकर आए।
4: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है यादों की महफिल। बड़ी खूबसूरती से हमने सजाया है इसे सुंदर गीतों के साथ में। राजकुमार बड़जात्या के द्वारा बनाई गई फिल्मों के गीतों को हम सुन रहे हैं। अगला गीत हम सुनेंगे पिया का घर फिल्म से किशोर कुमार की आवाज में, आनंद बख्शी के बोल और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत के साथ।

है ये जीवन है।

विवाह फिल्म का यह गीत उदित नारायण श्रेया घोषाल की आवाज में रविंद्र जैन के बोल और रविंद्र जैन के संगीत के साथ हम सुन रहे थे कार्यक्रम यादों की महफिल में। और इसी कार्यक्रम में हम सुनने वाले हैं एक और बहुत खूबसूरत सा नगमा जिसे गाया है शान ने और श्रेया घोषाल ने रविंद्र जैन के बोल और उनके ही संगीत के साथ, एक विवाह ऐसा भी इस फिल्म से।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम सुरीला सफर बस शुरू होगा थोड़ी ही देर के बाद।

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम सुरीला सफर में। मैं हूं आपके साथ विधि जैन और आज की इबारत मैं आप सबके साथ पढ़ना चाहती हूं क्योंकि ऐसा हो सकता है कि हमारे कुछ श्रोताओं ने इस इबारत को ना पढ़ा हो क्योंकि वो फेसबुक पर ना हो। तो चलिए चलते हैं उस इबारत की ओर कि हमने जो इबारत आपको भेजी है वो ऐसी है कि वो हमारी मोहब्बत के बारे में पूछ रहे थे और हमने कहा कि डॉन पकड़ में नहीं आता। तभी उसी ने मुस्कुराकर कहा, आपके पैर बहुत हसीन हैं। तो मुझे एहसास हुआ कि मोहब्बत में तारीफ भी एक कला होती है, लेकिन मोहब्बत की दुनिया इतनी सीधी कहाँ है। कभी तो ये चाकू सी है, हाथ कट जाता है, कभी दिल को भी चोट लगती है। कई बार लोग पूछते हैं कि कितने अपने मिले और कितने पराए, या कहूं कि जिंदगी की भीड़ में जब लोग पूछते हैं कितने आदमी थे, तब अपने हौसले गिनकर बता देती हूं। और कभी जीवन में लोग नहीं मिलते हैं और देते हैं तारीख पे तारीख, पर हम तो हर हाल में खुश हैं। मुस्कुराकर कहते हैं कि हम जहां खड़े हो जाते हैं भीड़ लग जाती है, जीतते जाते हैं पर डर लगता है मृत्यु से। तो मन कहता है, बाबू मशाई जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी तो रस्सी भी है। अपनों की याद में आंसू बहने नहीं देते क्योंकि कोई ये ना कह दे कि सुनो आई हेट टीयर्स, पर जीवन की दौड़ अभी बाकी है क्योंकि पिक्चर कहाँ खत्म हुई है अभी, तो ये जो पिक्चर है वो शुरू हो चुकी है। बहुत सारे संदेश हमारे पास आ चुके हैं और कई लोग संदेश भेज रहे हैं, उसकी कतार बड़ी है, बड़ी लंबी सी कतार हमारे बीच में है। तो हमारे जो श्रोताओं ने बहुत सारे गाने भी आपने चुने हैं और सच बताऊं तो कई गीत ऐसे हैं जो हमारी प्लेलिस्ट से जो हमने बनाई है आपके लिए उससे मिल रहे हैं। हमारे श्रोताओं ने लिखा है कि आज की इबारत में कई फिल्मों के डायलॉग शामिल हैं। अब ऐसे दृश्यों में जो कलाकार दिख रहे हैं उन पर गीत होंगे, या ये डायलॉग इबारत को पूरा करने के उद्देश्य से डाला गया है, या इन डायलॉग्स में जो शब्द हैं उनको आधार बनाकर गीतों को प्रस्तुत होगा। अब ये बात वो समझ नहीं पा रहे, उनका कहना है कि बाद में देखेंगे, कोई बात नहीं। पर हमारे श्रोता ने लिखा है कि आज कुछ नए तरीके से आपने विचार व्यक्त किए हैं, फिल्म के संवाद गीतों का सफर लगता है और साथ साथ चलेगा तो क्या होता है। देखिए, सच्ची मोहब्बत को व्यक्त करने की, बहुत अच्छी बात लिखी है कि सच्ची मोहब्बत को व्यक्त करने की आवश्यकता नहीं होती, पर वह तो अनुभव करना होता है। भोजन में नमक की तरह जो दिखाई नहीं देता पर होता है। कितनी बढ़िया गंभीर बात हमारे श्रोता ने लिखी है। और हमारे श्रोता ने एक और श्रोता ने एक बात लिखी है कि आज की इबारत केवल फिल्मी संवादों का संग्रह नहीं है बल्कि सिनेमा के चश्मे से जीवन को देखने का एक खूबसूरत नजरिया है। यह याद दिलाता है कि परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, इंसान को अपने हौसले बुलंद रखने चाहिए क्योंकि जीवन की कहानी का सुखांत होना अभी बाकी है। बिल्कुल सही हमारे श्रोता ने लिखा है, आज की इबारत में कई फिल्मों के डायलॉग शामिल किया गया है। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि जिन फिल्मों के डायलॉग शामिल किए गए हैं उन्हीं फिल्मों के गाने शायद बज सकते हैं। बिल्कुल सही पहचाना आपने, मैंने जिन फिल्मों के संवादों को पहचाना है उनके नाम है दो बदन, डॉन, पाकीज़ा, वक्त, शोले, दामनी, खाली अमर, प्रेम, आनंद, मेरे महबूब। हो सकता है और भी कुछ फिल्मों के डायलॉग हो, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। बिल्कुल सही, जितना आपने पहचाना उतना अच्छा है। कितनी बढ़िया बात है कि आप पहचानने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे श्रोता लिखते हैं, आज की इबारत पर यह शब्द हो सकते हैं, मोहब्बत, डॉन, हसीन, पैर, तारीफ, बहुत सारे

0: शब्दों का इन्होंने जिक्र किया है, वो लिखते हैं कि मोहब्बत की तारीफों का अजीब असर होता है, कभी मुस्कान दे जाती है, कभी दिल भी असर होता है, कुछ जज्बात आंखों तक आकर ठहर जाते हैं और कुछ आंसू बनकर बिना बहे ही दिल में उतर जाते हैं। जाने क्यों लोग मोहब्बत किया करते हैं, सही बात है, क्यों करते हैं पता नहीं, पर हमारे श्रोता लिखते हैं इबारत के अनुरूप संभावित गाने हैं मैं हूं डॉन, और उन्होंने कई सारे गानों के बारे में लिखा है, तो चलिए हम देखते हैं इनमें से क्या हो सकता है। हाँ, आपने एक बात तो बहुत अच्छी पकड़ी, हमारे एक श्रोता ने तो 15-20 गाने भेज दिए हैं चुनकर, कितनी बढ़िया बात है ना, कितनी मेहनत की होगी, उसके लिए आपको धन्यवाद है। हमारे श्रोता लिखते हैं, हम जहाँ से खड़े हो जाएं लाइन वहीं से शुरू होती है, डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन भी है, आज इबारत में मुझे डॉन फिल्म नजर आ रही है। अच्छा, आपकी पसंद भी आपने हमको बता दी, बहुत बढ़िया बात है। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि यह भी एक खूबसूरत इत्तेफाक है कि हमसे हमारे इश्क का अंदाज पूछ रहे हैं और हमने भी हंसकर कह दिया रिश्तों में तुम्हारे बाप लगते हैं, तभी पलट कर उन्होंने सादगी से कहा थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, प्यार से लगता है। उस पल समझ में आया मोहब्बत में तकरार भी एक अलग सुकून देती है, मगर इस दिल की दहलीज का कदम रखना इतना आसान नहीं है, यहां कभी जज्बात कांच की तरह चुभते हैं, कभी खामोशी भी जान ले लेती है। क्या खूबसूरत बातें आपने लिखी हैं, और जब इतना अच्छा लिखा है तो हम चलते हैं हमारे उसी इबारत की तरफ, और हमने सबसे पहले लिखा है कि वो हमारी मोहब्बत के बारे में पूछ रहे थे और हमने कह दिया डॉन पकड़ में नहीं आता, और इसी इबारत से अगर हम समझ लें तो डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। ये गीत यहाँ पर होने वाला है, लेकिन मैं आपसे एक बात जानना चाहती हूँ, ये तो मैं मेरी पसंद से आपको एक गीत सुनवा दूंगी और हो सकता है यही मांग आपकी भी हो, लेकिन एक बात बताइए कि ये जो फिल्मों के डायलॉग्स होते हैं इनमें से ऐसा कौन सा डायलॉग है जिसे बहुतायत में आप प्रयोग किया करते हैं, जल्दी से मुझे संदेश भेजिएगा, ऐसा कौन सा डायलॉग है जिसका उपयोग आप बहुत बार करते हैं और लोग उस बात पर आपके उस अंदाज पर खुश भी हो जाते हैं, तो जल्दी से ये बात हमें बताएं। और हमारे श्रोताओं ने इस बारे में लिखा है, एक एक अलग अलग बातें लिखी हुई हैं डायलॉग्स के बारे में लिखा है, तो चलिए हम ये गीत बढ़िया सा सुनते हैं, और अगर आपकी पसंद का है तो मैं ईश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि आपकी और हमारी पसंद मिलती है।
1: अरे तुम का बताई भैया हमरा हाल का है,
2: बताए दे,
1: निकले थे हम

0: कि हम कभी ही आ गए, कभी हुआ गए, कभी ही आ गए, कभी हुआ गए, कभी इधर भगे, कभी इधर भगे।
1: अरे तुम का बताई भैया, हमरा हाल का है।
2: बताए दे, बताए दे।
1: निकले थे।

रंग जमा हो चकाचक फिर लो पान चबा। आहा।

ये गीत जो हम सुन रहे थे वो था डॉन फिल्म से. इसके पहले भी हमने डॉन फिल्म की एक झलक सुनी. ऐसे कई गीत आए पान बनारस के ऊपर, जिनमें से सबसे बेहतरीन हम सबका पसंदीदा गीत है किशोर कुमार का गाया हुआ अनजान फिल्म अनजान के बड़े प्यारे से बोल हैं. कल्याण जी आनंद जी ने इसे संगीतबद्ध किया है. और हम बात कर रहे हैं सुरीला सफर कार्यक्रम में बड़े सुंदर से गीतों के बारे में और बड़े सुंदर से डायलॉग्स के बारे में. तो आपने हमें बहुत सारे डायलॉग्स भेजे हैं, कौन कौन से आपको पसंद है या क्या आप सुनना पसंद करते हैं तो या कहना पसंद करते हैं और कहते कहते लोगों को रिझा लेते हैं. तो हमारे एक श्रोता लिखते हैं, उन दिनों की याद आती है जब टेप रिकॉर्डर में मनपसंद फिल्मों के डायलॉग सुना करते थे और दोहराते थे. और हमारे श्रोता ने हमें बड़ी अच्छी सलाह लिखी है कि आपके पांव बहुत हसीन है, अरे दीवानो मुझे पहचानो, मैं हूं डॉन. जीवन जीने का भी बहुत हसीन बनाया जा सकता है, बस आपको आत्मविश्वास होना चाहिए और हम सफर का साथ हमेशा बहुत मायने रखता है. हमारे श्रोता लिखते हैं, आई हेट टियर पुष्पा, इन्हें यह लिखना था. और पिक्चर अभी बाकी है. मेरे दोस्त अपने फ्रेंड से मिलते थे, कुछ बात हो जाती थी तो हम बोलते थे पिक्चर अभी बाकी है, और हमारी फ्रेंड हमारा दिल दिखाई देते थे एंड कहते थे आई हेट टीयर्स. मतलब मैं जी, हम स्कूल में जो थे वो सारे डायलॉग्स बोला करते थे, मर जावा गुड़ खा के. हाँ, ये डायलॉग सभी लोग बोला करते हैं ना, मर जावा गुड़ खा के. गुड़ खा के कैसे मर सकते हैं, गुड़ खा के तो खुशियां होती हैं. ये बात भी, ये डायलॉग भी हमारे श्रोता बोला करते हैं. और हमारे श्रोता लिखते हैं कि फिल्म शक्ति का संवाद, इनकी बातों में आकर किसी ऐसे रास्ते पर मत चले जाना जहां से चाहो तो भी वापस ना आ सको. यह संवाद दिलीप कुमार ने अमिताभ को समझा कर कहा था. ये भी बात सही है. और हमारे एक और श्रोता ने पसंदीदा डायलॉग लिखा है, जिनके मकान शीशे के होते हैं के घर पर पत्थर नहीं फेंका करते. ऐसे कितने सारे डायलॉग्स हैं ना जो हमें पसंद हैं. अभी इन डायलॉग्स के बारे में हम और चर्चा करेंगे, पर सुनते हैं ये संदेश.

ये आकाशवाणी का जोधपुर केंद्र है। मीडियम वेव 564.97 मीटर अर्थात 531 किलोहर्ट्ज पर सूर्यनगरी चैनल और एफएम बैंड 102.1 मेगाहर्ट्ज पर एफएम सन सिटी चैनल। श्रोताओं, दिन के ठीक 1:15 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम नारी वाटिका।

0: आशा जी, आपको भी मेरा प्यार भरा नमस्कार सभी सखियों के साथ।
1: बिल्कुल
0: और आज का जो हमारा प्रोग्राम है उसमें हम आशा जी के साथ ही चलेंगे प्रकृति की मधुर छाओं में। तो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे गुजारिश करती हूँ कि आज का कार्यक्रम, आपके आसपास कोई कोई बड़ा सा पेड़ है यदि, तो उसकी घनी छाओं के नीचे बैठिए, उस छाओं में आप उस पेड़ के प्रेम को महसूस कीजिए और इस प्रोग्राम को सुनिए, है ना?
1: तो हंसा जी शुरू करते हैं आज के इस सुहाने सफर की खूबसूरत शुरुआत।

0: नारी वाटिका सुनने वाली सभी सखी सहेलियों को आपकी रेडियो सखी आशा और
1: हंसा विश्नोई का
0: हरा भरा घनी धूप में पेड़ों की ठंडी छांव के एहसास भरा नमस्कार। और आज के कार्यक्रम की परिकल्पना की है सफलता चारण ने।

0: आहा, ये सुहाना सफर, और ये सुहाना सफर सिर्फ हम नहीं बल्कि हमारे पुरखों से चला आ रहा है, क्योंकि प्रकृति जो है वो हमें सब कुछ देती है, हमारा उससे बड़ा अटूट रिश्ता होता है। और देखो ना, जैसे एक माँ हमें बिना कुछ मांगे अपना सब कुछ देती है, वैसे ये प्रकृति है, इसीलिए हम धरती माँ कहते हैं, प्रकृति को माँ कहते हैं। तो कोई स्वार्थ नहीं रहता है इसका हमारे लिए, और जब स्वार्थ नहीं रहता है तो कुछ वापस लेने का भाव भी नहीं रहता, तो हम इस प्रकृति से लेते ही लेते हैं, इसका दोहन ही दोहन करते हैं, हम इसको देते कुछ नहीं है। और इसीलिए आज ये स्थिति है कि हमारा पूरा जो विश्व है वो, हमारा देश जो है वो भीषण गर्मी को झेल रहा है।
1: और देखो, जहाँ हम कहते हैं ना कि हवा पानी है ना, ये हमारे जीवन

0: और धूप हमें सुकून देती है ना। लेकिन इन सब के बीच एक ऐसा अनमोल साथी है जो बिना कुछ मांगे हमें जीवन देता है, और वो है हमारे पेड़। मैं हंसा ही समझती हूँ कि ये जो हमारी मूलभूत आवश्यकता है ना, जो जरूरतें हैं हमारी, उनमें ये भी शामिल कर देना चाहिए कि पेड़ के बिना जीवन संभव ही नहीं है। क्योंकि ये जो पेड़ है हमें केवल लकड़ी, फल या ये सब देने के साधन नहीं है, बल्कि ये धरती की धड़कन है, धरती का श्रृंगार है। ये हमें सांसों के लिए ऑक्सीजन देते हैं, गर्मी में ठंडी छांव देते हैं, और कितने पक्षियों का घर है ये, और ये प्रकृति को सुंदरता से भर देते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल। और भला हम उन पेड़ों की अनदेखी कैसे कर सकते हैं जो कि हमारे लिए सब कुछ देते हैं, हमें सब कुछ देते हैं। तो आज हमारे सामने ये एक बहुत ही, कहना चाहिए ना कि एक महती आवश्यकता है इन पेड़ों को बचाने की। एक पेड़ 100 सुख देता है, धरती को नया रूप देता है। आओ मिलकर प्रण लेंगे, हर जीवन में एक पेड़ जरूर लगाएं।
0: और देखो, सब मिलकर अगर पेड़ लगाते हैं तो निश्चित तौर पर इसका सीधा फायदा मानव जाति को ही पहुंचता है ना। वृक्ष धरा के भूषण है, करते दूर प्रदूषण है, पत्थर खाकर भी फल देते
1: फल
0: हैं,
1: देते
0: है ना।
1: हैं।
0: हवा के विष को ये हर लेते हैं, प्राण वायु ये हमें देते हैं, फिर भी ये हमसे कुछ नहीं लेते। ये कितनी बड़ी बात है।
1: बिल्कुल बड़ी बात है। और फिलहाल एक प्यारा सा गीत की ओर चले।

0: पेड़ों के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले कई लोगों ने अनूठी मिसाल कायम की है आशा, और यदि हम उनकी कहानियां करें तो हमारा ये प्रोग्राम तो छोटा पड़ जाएगा, लेकिन हम कोशिश करते हैं अपने सखियों को बताने की कि उन्होंने किस तरह से निस्वार्थ सेवा की, कितने धैर्य के साथ प्रकृति के साथ अपने अटूट प्रेम को साबित किया। तो आज हम जहाँ दुनिया में जो लोग पेड़ काटते हैं, वहाँ एक बुजुर्ग औरत बिना किसी कैमरे के, बिना किसी लाइक के, उन्होंने धरती को फिर से सांसें दी हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ कर्नाटक की थिमक्का की, जिनकी अच्छा। उम्र 113 वर्ष है और उनके पास ना पैसा था ना शौहरत, और लेकिन जमीन से उनका जो रिश्ता था, उनका जो प्रेम था और उनकी जो आसमान तक जाने की जो सोच थी, उसने कमाल कर दिखाया। उन्होंने 80 साल तक दिन रात मिलकर 8,000 से ज्यादा पेड़ लगाए और वो उन्हें बच्चों की तरह पालती थी। अच्छा, इनको वृक्ष रानी कहा जाता है, और क्योंकि ये निसंतान थी तो इन्होंने अपना पूरा प्रेम जो है वो वात्सल्य वृक्षों पर लगाया, और इसीलिए इन्हें सरकार ने पद्मश्री से भी नवाजा।
1: और हम अपने राजस्थान को कैसे भूल सकते हैं। बिल्कुल, आप समझ रही गई होंगी कि मैं बात कर रही हूँ राजस्थान की अमृता देवी बिश्नोई की, जिन्होंने पेड़ों को बचाने के लिए अपना बलिदान दिया था। और ये हम सभी जानते हैं कि राजा के सैनिक आए थे पेड़ काटने के लिए, लेकिन अमृता देवी तब पेड़ों से लिपट गई थी और तब उन्होंने कहा था
0: सिर साटे रुक रहे तो भी सस्तो जान, मतलब सिर भी कट जाए तो भी पेड़ तो बचना चाहिए। कितनी गहरी सोच थी।
1: और ये देखो, ये जो हम उदाहरण देते हैं ना बार बार, जब भी हम वृक्षों की बात करते हैं, पर्यावरण की बात करते हैं, इसलिए देते हैं कि हमें सीखना है इनसे और अपनी धरा को बचाना है।
0: और इस कड़ी में सुंदरलाल बहुगुणा को कैसे भूल सकते हैं, चिपको आंदोलन जिन्होंने चलाया था उत्तराखंड के जंगल को बचाने के लिए, तो वहाँ की जो स्थानीय जाति थी उसको उन्होंने जागरूक किया और उसकी अगुवाई की। इन्हें भी पद्मश्री से सम्मानित किया गया और इनके बारे में भी कहते हैं कि इन्होंने सिर्फ यही काम नहीं किया, पेड़ों को ही बचाने का काम नहीं किया, बल्कि शराबबंदी के आंदोलन को भी इन्हें रोका चलाया, और नदियों में जंगलों में प्रकृति से प्रेम करने वाले जो बहुगुणा जी थे, उन्होंने बिजली की जरूरतों को पूरा करने के लिए भी कई छोटी परियोजनाओं को भी बनाया। तो इस तरह से हम और बातें सुनेंगे
1: और इन लोगों की बात हम करते हैं। तो एक और जो हमारे यहीं एक गांव है जिनका नाम आता है श्याम सुंदर पालीवाल, जिनकी बेटी का निधन हो गया था, इसके बाद उन्होंने अपनी बेटी की याद में इस परंपरा को जीवित रखा कि जब भी गांव में कोई बेटी जन्मेगी, है ना, तो वहां बेटी के जन्म पर 111 पौधे की इन्होंने बहुत ही सुंदर परंपरा की शुरुआत की, और आज दिन तक ये परंपरा कायम है। और रक्षाबंधन वाले दिन जो है, जब पर्यावरण महोत्सव वहाँ पे मनाया जाता है और ये संदेश भी दिया जाता है पर्यावरण का, और इस दिन वहाँ की जो पिपलांत्री गांव की, ये मैं बात कर रही हूँ राजसमंद का जो पिपलांत्री गांव है, वहाँ पे बेटियाँ पेड़ों को राखी बांधती है, क्योंकि पेड़ जो है भाई की तरह होते हैं, रक्षा करते हैं, जीवन दान देते हैं, तो ये संकल्प लेते हैं।
0: बहुत सुंदर।

0: जहाँ पेड़ लहराते हैं वहाँ खुशहाली मुस्कुराती है, जहाँ हरियाली होती है वहाँ जीवन खिलखिलाता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। और हम बात कर रहे हैं उन लोगों की जिन्होंने वृक्षों के लिए अपना बहुत कुछ समर्पित कर दिया। तो और उनका कहना है कि ये जो पेड़ हैं, जैसे राम सेतु निर्माण में नल, नील और हनुमान ने बहुत बड़ा काम किया था और साथ में एक गिलहरी का भी योगदान था। तो इन लोगों का ये कहना है कि जिस तरह से एक गिलहरी ने अपना छोटा सा योगदान दिया, वैसे हम इस धरती के लिए एक छोटा सा योगदान दे रहे हैं, जबकि ये देखा जाए तो प्रत्यक्ष रूप में कितना महान काम कर रहे हैं, लेकिन वो अपने आप को उस गिलहरी की तरह मानते हैं। तो अब बात करते हैं हम चंद्रभूषण तिवारी जी के, जिनको पेड़ वाले बाबा कहते हैं। ये यूपी के बहराइच के रहने वाले हैं और एक दशक में इन्होंने 1,00,000 पेड़ लगाने का संकल्प लिया। और वो मानते हैं कि पेड़ जो है वो बेटी के समान है। और इन्होंने अपना दूसरा जो करियर था, ये शिक्षक थे और उस समय इन्हें महसूस हुआ कि शिक्षा देनी है तो मुझे इन बच्चों को यही शिक्षा देनी है कि इस प्रकृति को बचाओ, इसका संरक्षण करो। इसके लिए सबसे आसान काम था पेड़ों को लगाना।
0: और जयपुर की ही बात करें तो जयपुर की दीप कंवर है जो पर्यावरण की सुरक्षा के लिए महिलाओं को जागरूक कर रही है और सड़क के किनारे डिवाइडर के करीब सैकड़ों पौधे लगा चुकी है, पेड़ लगा चुकी है। और साथ साथ ये शिक्षा भी देती है किस तरह से पेड़ लगाए जाते हैं, किस तरह से उसकी पालना हो, जानवरों से किस तरह से बचाना है। तो कई सारी ऐसी महिलाएं हैं, कई महिलाओं का नाम आ जाता है।

0: सबके सामने, और कई जो है चुपचाप ये ऐसे काम करती है कि नहीं, पेड़
1: दिखाई नहीं,
0: हाँ जो दिखाई नहीं देता, जो
1: दिखावा नहीं करती
0: हाँ
1: ना।
0: किसी भी प्रकार का दिखावा नहीं करती है।
1: तो अब इसी उसमें एक और नया नाम है और जिन्हें पद्मश्री भी मिला है, इनका नाम है राही बाई। अहमदनगर की रहने वाली राही बाई पोपरे ने दुनिया भर के लोगों को जैविक खेती के बारे में बताया और इन्हें सीड मदर कहा जाता है। अब आप सोचिए कि उन्होंने ये काम कैसे शुरू किया था सीड बनाने का, क्योंकि देखा जाए तो हम बहुत सारे हमारे ऐसी ऐसे बीज हैं जो विलुप्त हो रहे हैं, उन बीजों को बचाने के लिए इन्होंने ये काम किया। और इनके साथ ये एक घटना हुई थी कि इनका जो पोता था वो उन्होंने कुछ ऐसी सब्जी खाई जिससे कि वो बहुत बीमार पड़ गया। तो ये तब उन्हें लगा कि ये जैविक खेती को मुझे बढ़ावा देना चाहिए और उसके लिए सबसे जरूरी है कि मैं देसी बीजों का बचाव करूं। तो इन्होंने बैंक बना लिया अपना और 50 एकड़ जमीन पर ये 16 से 17 प्रकार की फसलें उगा रही हैं। 160 बीजों को इन्होंने सहेज कर रखा है, तो इसीलिए इन्हें सरकार ने पद्मश्री पुरस्कार दिया।
0: क्या बात है। एक और गांव है हंसा जी इस्माइलपुर, और ये झुंझुनू के आसपास पड़ता है, और यहाँ पे भी आप देखोगे ना जाकर तो चारों ओर हरियाली हरियाली है। और ये हरियाली का जो इस हरियाली का जो श्रेय जाता है वो जाता है बीरबल चौहान को, जो कि बिजली विभाग में कार्यरत थे और ये भी पर्यावरण प्रेमी हैं। पिछले 16 वर्षों से अपने गांव में पौधे लगा रहे हैं, इनकी देखभाल कर रहे हैं और वो अब तक हजारों हजारों पौधे लगा चुके हैं और साथ साथ वे इन पौधों को निःशुल्क बांटते भी हैं।
1: तो ये पृथ्वी के प्राण बचा रहे हैं, पृथ्वी का सौंदर्य बचा रहे हैं, हम इन्हें नमन करते हैं।

0: हमारे जितने भी पूर्वज थे उन्होंने भी और हमारे संतों ने भी प्रकृति पर बल दिया और वृक्षों के संरक्षण की बात कही थी। तो बुद्ध ने कहा था कि वृक्षों में भी जीवन है, और अब आप सोचिए यदि वो जीवित होकर हमसे बात करते तो किस तरह से करते।
1: और देखो जहाँ आप बात कर रहे हो पेड़ों की, तो ये जो विशाल दरख्त खड़े हैं गांवों के किनारे शहरों के किनारे सदियों से खड़े हैं, और इनकी जो जीवन यात्रा है इनका जो बचपन है, तो कई गिलहरियाँ कई चिड़ियाँ या किसान जो होते हैं वो बीज बो देते हैं, और जो गिलहरियाँ होती है ना वो तो खेलते खेलते और जो बीज है वो जमीन में गाड़ देती है ये सोच के कि बाद में खाएंगे, और बाद में खाना भूल जाती। इसी तरह से चिड़ियाएं भी, और बाद में ये जो बीज है हवा पानी जो बरसात का पानी होता है धूप पाकर ये फलीभूत होते हैं। तो जो इनका जन्म होता है पेड़ों का कुछ इसी तरह से होता है, नन्हे बीज जब धरती के अंदर हम बो देते हैं
0: और तेज जब वो बीज छोटा सा बीज बाहर निकलता है तो उसको सामना करना पड़ता है चिलचिलाती धूप का, तेज हवाओं का, जानवरों का जो उसके आसपास अपने खुरों से उसको हटाना चाहती हैं, और जैसे जैसे वो बड़ा होता है कितने सारे उसको संघर्ष सहन करना पड़ते हैं। कई बार तेज आंधियां चलती हैं जिसमें उसकी डालियां टूटती हैं, लेकिन वो हार नहीं मानता। वो समय के साथ साथ एक विशाल मजबूत पेड़ बनता है जिसकी शाखाएं दूर दूर तक जाती हैं, और ये जो फिर उस समय वो कई तरह के रिश्ते निभाता है, इंसानों से निभाता है, मौसम से निभाता है, अनगिनत ऋतुओं को देखता है, गर्मी में राहगीरों को अपनी छाया देता है सबसे बड़ा काम, और उसकी उन शाखाओं पर इन्हीं दिनों में फल तोड़ने के लिए बच्चे ऊपर चलते हैं, उसका झूला झूलते हैं, इतना अथाह प्रेम देता है वो इस धरती को इसकी संतति को। तो हमारा भी कर्तव्य है कि हम उसको भी ऐसा ही प्रेम दे।
1: और साथ में देखो ना पेड़ों के नीचे तो बैठकर कितनी हथाइयां की जाती है, कितनी समस्याएं सुलझा दी जाती
0: है, दर्द उगाए जाते हैं,
1: और आज भी गांवों में जो सरपंच लोग हैं गांवों की समस्याओं को दूर करते हैं पेड़ों के नीचे बैठकर करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि पेड़ एक पिता के समान होता है जो हम सबकी मानवता की पालना करता है, लेकिन पेड़ के दर्द को हम नहीं समझते हैं, पेड़ भी आपस में बतियाते हैं, और कभी कभी जो इसकी शाखाएं हवा के संग मदमस्ती से गूंजती है झूमती है, पक्षियों का बहुत ही मधुर जो कलरव होता है उसके आंगन को महकाता है जीवंत बना देता है, और राहगीर उसकी छांव में बहुत सुकून पाते हैं, है ना। लेकिन वृक्ष देखता है कि लोग आ रहे हैं दूर से हाथों में
0: कुल्हाड़ी
1: लेकर, तब वो एकदम से अंदर अंदर चकपका जाता होगा, है ना, कि मैं जो इनकी पालना कर रहा हूँ और वास्तव में मुझसे ही इस मानवता का जीवन है, और इस ये खुद के ही जीवन को खत्म करना चाहते हैं, जो कुल्हाड़े ला रहे हैं मेरे पर तो मारेंगे मारेंगे, लेकिन ये जो विनाशकारी समय आएगा ये पेड़ों के काटने से ही आएगा।
0: तो वही इतना ही कह पाता है कि मैं धरती की सांस हूँ, मुझे तुम क्यों काटते हो। और ये भी बात सही है कि दुनिया भर में पेड़ों की जो कटाई चल रही है उसमें से हर प्रजाति लुप्त होती जा रही है, हर वर्ष लुप्त होती जा रही है, और इससे हमारे पर्यावरण को अथाह खतरा है।
1: पेड़ नहीं रहेंगे तो जीवन संभव ही नहीं है।

0: पुलिस?
1: मिस सीमा
0: जी,
1: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए वरना घर आ जाएंगे।
0: क्यों? लेकिन मैं
1: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
0: डिजिटल अरेस्ट?
1: 1,00,000 दो बन जाओगे।
0: इतने पैसे?
1: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो वरना बेटा जेल जाएगा।
0: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
2: हेलो मम्मा।
3: RBI कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: हम बात कर रहे हैं पेड़ों की। अच्छा, ये पेड़ जहाँ बात करते हैं ना, तो ये विज्ञान ने भी ये बता दिया है, तो यूँ तो बोल नहीं सकते, पर जमीन के नीचे जो फंगस होती है इनके, उसका एक नेटवर्क होता है और उसके जरिए ये संवाद करते हैं, बातें करते हैं।
6: अच्छा।
5: हाँ, इसको कहते हैं वुड वाइट वेब, और ये एक दूसरे को अपने पोषक तत्व भी देते हैं। मतलब आप सोचिए, हम जो इतने कंजूस हो चले हैं इंसान, और इन पेड़ों को देखिए, आपस में एक दूसरे की मदद करते हैं और खतरे के समय एक दूसरे को सचेत भी करते हैं कि खतरा आने वाला है। इसके अलावा भी देखो, यदि देखा जाए तो बहुत अजीब अजीब किस्म के हमारे दुनिया में, इस विश्व में कई वृक्ष होते हैं। उसमें से
6: एक पेड़ ऐसा है जो बिल्कुल जंगल के जैसा है। ये पेड़ अमेरिका में पाया जाता है, जिसका नाम है पांडो, और हजारों हजारों इसके अंदर तनों का समूह होता है, और ये 80,000 साल से भी ज्यादा पुराना हो सकता है। तो है ना, रहस्यमय पेड़।
5: ऐसे ही एक इंद्रधनुषी पेड़ है जिसकी हम बात करें, तो ये भी है, रेनबो यूकेलिप्टस कहते हैं इसको, और ये जो इसकी जो छाल है वो 3-4 रंग अलग अलग बदलती है अपना, कभी बैंगनी दिखाई देती, कभी नारंगी, कभी मेहरून। तो ऐसा लगता है जैसे कोई किसी कलाकार ने कोई कलाकृति बनाई है, ऐसा महसूस होता है। और दुनिया के सबसे पुराने जीव की बात करें तो इन्हें ही माना गया है। कुछ पेड़ ऐसे हैं जो हजारों साल से जीवित हैं। कैलिफोर्निया में ब्रिसल कोन पाइन है, जिसको कहते हैं कि 5,000 साल पुराना है। अब आप सोचिए, और ये जो पेड़ हैं वो क्या नहीं करते। एक चलने वाले पेड़ भी होते हैं आशा।
6: अच्छा।
5: इक्वाडोर के जो वर्षा वन है उनमें एक वॉकिंग पाम नाम से एक पेड़ है, जो अपनी जड़ों को आगे बढ़ाता जाता है सूरज के, जैसे जैसे हम ये सूर्यमुखी पेड़ की बात नहीं करते, जिसका सूर्य के साथ साथ जिसका फूल है वो घूमता रहता है, बिल्कुल ये वैसे ही सूर्य के प्रकाश के साथ आगे चलता है, और ऐसा माना जाता है कि साल में 2-3 सेंटीमीटर ये आगे खसक जाता है।

0: सचियो हम बात कर रहे हैं नारी वाटिका प्रोग्राम में. मैं हूँ हंसा और मेरे साथ है
1: आशा.
0: आशा, तो आशा ये जो पेड़ है, अरे हर एक पेड़ की अपनी अपनी खासियत है ना. हमारे आसपास जितने भी पेड़ हैं, और हम राजस्थान में रहते हैं तो हमारा जो खेजड़ी पेड़ है उसकी तो बात ही निराली है. इसकी जो पत्तियां हैं ना, वो पशुओं के चारे के काम में आती हैं और औषधि के रूप में भी प्रयोग होती हैं. और सखियों, इसकी जो छाल है उसका काढ़ा बुखार में काम आता है, त्वचा के रोग में काम आता है. और इसकी सब्जियां तो हम सब खाते ही हैं. सांगरी कितनी ताकत देती है शरीर को. ये जो पेड़ है, जब हमारे देश में अकाल पड़ा था तो उस समय इसकी जो छाल होती थी, उस छाल को सुखाकर पीसा जाता था और उसका आटा बना के उसकी रोटियां बनाई जाती थी. तो देखिए, हम हमारा प्रकृति से कितना गहरा रिश्ता है.
1: और एक निधिवन का आपने नाम सुना होगा, है ना. निधिवन के रहस्यमयी और मुड़े हुए पेड़ों को भगवान कृष्ण की गोपियां माना जाता है. और ये जो श्री कृष्ण की कथाएं आती है उनसे जुड़ा है वृक्ष कदम. इसके अलावा परिजात और कृष्ण की कहानियों से ये वृक्ष सारे जुड़े हुए हैं. और कदम को हरी प्रिया भी बोला जाता है क्योंकि ये हरी का प्रिय है. और क्योंकि यहाँ पे कृष्ण वृंदावन में कदम के पेड़ के नीचे बैठकर बांसुरी बजाते थे, रासलीला करते थे, और गोपी कृष्ण लीलाओं से यह जो पेड़ है बहुत गहराई से जुड़ा जाता है. और हंसा जी, आपने कालिया नाग का प्रसंग तो सुना ही होगा, हम सभी जानते हैं ना. तो ये जो कृष्ण ने कालिया नाग से युद्ध करने के लिए जब यमुना में छलांग लगाई थी ना, तो इसी स्थान से, यानी कि गोकुल में एक प्राचीन कदम वृक्ष है जिसको लेकर मान्यता जो हम बता रहे हैं, इसी पेड़ से उन्होंने वहां पे छलांग लगाई थी.
0: मतलब हमारे धर्म से इसको जोड़ा गया है. भले हम तुलसी की पूजा करें, खेजड़ी की पूजा करें, या पीपल की करें, या बरगद की करें, तो हमारी संस्कृति में इसको, इनको बड़ा पवित्र माना गया है. और ये क्योंकि इसको धर्म से जोड़ा गया है, इसलिए हमने इनकी रक्षा भी की है. हमने इनको पूज्य माना है, इनकी रक्षा भी की है. और पीपल की तो बात ही क्या. पीपल का पेड़ बहुत ही पूजनीय माना जाता है, पवित्र माना जाता है. और बहुत ये सुबह और शाम, मतलब ये 24 घंटे ही हमें ऑक्सीजन देने वाला पेड़ है. इसके जब पत्ते हिलते हैं ना, तो ऐसे लगता है मधुर संगीत बज रहा हो.
1: एक इसके पीछे जुड़ी हंसा जी कहानी है. गौतम बुद्ध ने बिहार के बोधगया में पीपल के पेड़ के नीचे कठोर तपस्या की थी और उन्हें वही ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और वे बुद्ध कहलाए थे. और उस पेड़ को बाद में बोधि वृक्ष भी कहा जाने लगा. और बिल्कुल जैसा कि आपने कहा कि हिंदू धर्म में भी पीपल को देवताओं का वास माना जाता है और लोग इसकी पूजा भी करते हैं.

हंसा जी, पेड़ खुशहाली का प्रतीक है और बहुत सारे पेड़ हैं जिनके औषधीय गुण हैं, जो फल देते हैं, छाया देते हैं, और उनमें से एक है अशोक का पेड़ जो बहुत ही सुंदर लगता है और औषधीय गुण वाला पेड़ है बिल्कुल। इसके फूल जो होते हैं ना, वो नारंगी रंग के होते हैं, लाल रंग के होते हैं, और अशोक का अर्थ होता है शोक को दूर करने वाला, है ना, सारी चिंता फिकर को दूर करने वाला। और बिल्कुल हम सभी जानते हैं अशोक वृक्ष के पीछे की जो कहानी है रामायण के अंदर, जब सीता को रावण लंका ले गया था तब उन्हें अशोक वाटिका में रखा गया था, और वहाँ वो जो अशोक के पेड़ों के बीच बैठकर सीता जी भगवान राम को याद करती थी, इसलिए अशोक

0: को प्रेम का, धैर्य का और उम्मीद का प्रतीक माना जाता है। और अशोक वृक्ष के नीचे जब वो इस तरह की प्रार्थना करती थी तो वो भी अशोक हो जाया करती थी, यानी शोक चिंता से दूर हो जाया करती थी,
1: ऐसा माना जाता है। और कालिदास ने भी इस वृक्ष का वर्णन अपनी अपनी किताबों में किया है। ऐसे ही एक वृक्ष है बरगद का पेड़, बड़ा बड़ा बहुत विशाल, जिसकी जो जड़ें होती हैं वो नीचे लटकती रहती हैं और नीचे जाकर एक नए पेड़ में, एक नए तने में बदल जाती हैं, और इसे, इस पेड़ को शक्ति, लंबी उम्र और संरक्षण का प्रतीक माना जाता है। बरगद से जुड़ी कहानियां में कहते हैं कि पुराने समय में गांवों में बरगद, जैसे पीपल के नीचे भी बैठती थी ना पंचायत, वैसे बरगद के नीचे भी बैठती थी और उसकी समस्या, उसमें बैठ के जितनी भी समस्याएं होती थी उनका समाधान हो जाता था। तो भाई समस्याएं तो जब इकट्ठे बैठेंगे तो हो ही जाएगा, और फिर पेड़ों की छां उनको, उन कहना चाहिए कि मस्तिष्क को ठंडा रखती थी।
0: और ये जो पेड़ है ना बरगद का, ये पूजनीय माना जाता है। वट सावित्री व्रत जो किया जाता है यूपी साइड मोस्टली किया जाता है, तो वहां पे बरगद के पेड़ की पूजा की जाती है।
1: सत्यवान से जुड़ी कहानी,
0: सत्यवान से जुड़ी कहानी है, जिसमें सावित्री ने अपने पति के प्राण यमराज से वापस प्राप्त किए थे। तो ये इस तरह की कहानी, यानी कि हर वृक्ष की अपनी महत्ता है, हर वृक्ष के औषधीय गुण है और हर वृक्ष जो किसी न किसी रूप में धर्म से जुड़ा हुआ है।
1: बिल्कुल।

0: तो ये जो वृक्ष हैं ये हमारे लिए और भी बहुत इनकी महत्वता है, और क्योंकि हमारी संस्कृति में, हमारे धर्म में, हमारे अध्यात्म में इनको महत्व दिया गया है, तो उसका कारण यही है कि जब भी धर्म युद्ध होता था ना, तो उसके बाद में जब विजयी होते थे तो जंगल में एक चर्च बना दिया जाता था या मंदिर बना दिया जाता था,
1: अच्छा,
0: तो वो जो एरिया होता था, वो जो क्षेत्र होता था, उसको पवित्र वन कहा जाता था। तो ऐसे पवित्र वन दुनिया में कई जगह हैं, जैसे अभी हम निधि वन की बात कर रहे थे तो वो वैसे ही पवित्र वन है। इसी तरह यहाँ राजस्थान में जो खिजड़ी का जो एरिया होता है वो विष्णु संप्रदाय के लिए पवित्र वन है। ऐसे ही ग्रीस में एथेंस की दीवारों के बाहर जैतून के जो पेड़ों का जो जंगल होता था उसको पवित्र वन माना जाता था। और बाइबल में भी ये उल्लेख है, अदन का बाग, मतलब ये जो वृक्ष हैं इनको स्वर्ग की यात्रा से जोड़ा गया है। तो कहा जाए कि आध्यात्मिक या सांस्कृतिक और धार्मिक कारण से ये सुरक्षित रह गए। यहाँ पर जो भी जीव जंतु की हत्या होती थी उस पर प्रतिबंध लग गया। यहाँ के जो औषधि पौधे हैं, पक्षियों की दुर्लभ प्रजाति है, और जो लुप्त तो हो रही है ऐसी प्रजातियाँ आज बच गई हैं, इसीलिए हम इनको देवभूमि भी कहते हैं। ये देवभूमि कई जगह पाई जाती है विश्व में और हमारे देश में भी, जैसे केरल में इसको कावू, महाराष्ट्र में इसको वारंस, और कर्नाटक में इसको देवरा काडू कहते हैं। तो ये जो है पवित्र वन जो है, कहना चाहिए पवित्र प्रकृति का और मानव का एक अटूट बंधन है।
1: बिल्कुल बिल्कुल अटूट बंधन है। और यहाँ पे एक चीज़ आप भूल रहे हैं कि पेड़ों की जो तुलना है, प्रकृति की जो तुलना, महिलाओं की जो तुलना है वो अक्सर प्रकृति से की जाती है,
0: बिल्कुल।
1: और दोनों का बहुत ही गहरा संबंध है। सदियों से साहित्य और कला में इसको सहारा गया है। दोनों ही सौंदर्य का, कोमलता का, शक्ति का और सृजनता का प्रतीक है,
0: प्रतीक है,
1: महिला
0: बिल्कुल।
1: और जो पेड़ है। और महिलाओं की सुंदरता प्रकृति की तरह कोमल है, शांत है और मनमोहक होती है, और उनकी मुस्कान खिलते हुए फूलों से की जाती है। होठ जो है उनकी तुलना पंखुड़ियों से की जाती है, और उनका स्नेह जो होता है ना, घने पेड़ों की ठंडी छांव जैसा सुकून देता है। महिलाएं जो एक परिवार की पालना करती हैं, जैसे प्रकृति हरियाली से धरती को सजाती है, वैसे ही महिलाएं अपने प्रेम से, त्याग से, ममता से जीवन को सुंदर बनाती है। और
0: परिवार
1: जहाँ,
0: को सुंदर बनाती
1: हाँ,
0: हैं।
1: मतलब कि ये अद्भुत, एक हम जब तुलना करते हैं तो एक बेहतरीन
0: साम्यता
1: संयम, हाँ,
0: दिखाई
1: बहुत
0: देती
1: ही
0: है।
1: सामान्यता दिखाई जाती है, देती है। और महिलाओं की सुंदरता प्रकृति की सबसे अनमोल रचना होती है। लहराते पेड़ हैं, बहती नदियां हैं, या उनकी तुलना चांदनी रात से भी की जाती है ना? तो चलिए सुनते हैं ये सुंदर गीत जो तुलना कर रहा है। सुन

0: चलते चलते बस आपसे यही गुजारिश कि आप स्वस्थ रहें और हमारे इस दुनिया का तापमान कम हो, इसके लिए वृक्ष जरूर लगाएं।
1: तो अब हम आपको बता दें कि हमारे इस प्रोग्राम में सहयोग किया था HPTC से विक्रम सिंह भाटी व CL सोनी, कंट्रोल रूम से राय सिंह राव, और प्यारे प्यारे गीतों को पूरे प्रोग्राम को आप तक पहुंचाया कपिल ने। प्रोग्राम की परिकल्पना की थी सफलता चारण ने। तो आप फूलों की तरह हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, यही दुआ है हमारी। इसी दुआ के साथ अपनी रेडियो सखी आशा और
0: हंसा विश्नोई को दीजिए अनुमति। नमस्कार, नमस्कार।

0: अभी महिलाएं सुन रही थी अपना पसंदीदा कार्यक्रम नारी वाटिका। ये आकाशवाणी जोधपुर केंद्र है, मीडियम वेव 564.97 मीटर अर्थात 531 किलोहर्ट्ज़ पर सूर्यनगरी चैनल और एफएम बैंड 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर एफएम सनसिटी चैनल। श्रोताओं, दिन के 2:15 हुए हैं। अब आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में दोपहर समाचार रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत ने कहा, वैश्विक अनिश्चितता और आर्थिक चुनौतियों के बीच ब्रिक्स रचनात्मक भूमिका निभा सकता है। नई दिल्ली में 2 दिन के ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल अबुधाबी यात्रा के दौरान भारत और संयुक्त अरब अमीरात द्विपक्षीय संबंधों को एक नए स्तर पर ले जाने के लिए तैयार। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन केरलम के अगले मुख्यमंत्री होंगे। निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया SIR के तीसरे चरण की घोषणा की। इसे चरणबद्ध तरीके से 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में चलाया जाएगा। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, आपदा प्रबंधन में भारत एक वैश्विक नेता और अग्रणी देश के रूप में उभरा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पेइचिंग में महत्वपूर्ण वार्ता की। इसमें ईरान संघर्ष, वैश्विक ऊर्जा संकट, शुल्क और व्यापार तनाव प्रमुख मुद्दे। और थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु महिला सिंगल्स में और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी तथा चिराग शेट्टी की जोड़ी पुरुष डबल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंची।

0: अब समाचार विस्तार से। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की दो दिन की बैठक नई दिल्ली में चल रही है। इसकी अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर कर रहे हैं। बैठक में ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों के अलावा सदस्य और भागीदार देशों के शिष्टमंडल प्रमुख भी हिस्सा ले रहे हैं। भारत की अध्यक्षता में आयोजित इस वर्ष का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण। ये विषय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मानवता प्रथम और जन केंद्रित दृष्टिकोण से प्रेरित है। इस अवसर पर विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है।
1: हमारी चर्चाओं का उद्देश्य ऐसा सतत विकास सुनिश्चित करना होना चाहिए जो समानता के सिद्धांतों तथा साझी लेकिन अलग अलग जिम्मेदारियों की भावना पर आधारित हो। तकनीकी प्रगति वैश्विक परिदृश्य को बदल रही है। इसका उपयोग सुशासन और समावेशी विकास के लिए प्रभावी रूप से किया जा सकता है। हाल के संघर्षों ने संवाद और कूटनीति के महत्व को और स्पष्ट किया है। आतंकवाद के खिलाफ सहयोग मजबूत करने पर सभी देशों की साझा सहमति है।
0: डॉक्टर जयशंकर ने भागीदार देशों को उनकी उपस्थिति और सहयोग मजबूत करने की उनकी प्रतिबद्धता के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स चल रहे संघर्ष के दौरान सार्थक भूमिका निभा सकता है।
1: हम ऐसे समय में मिल रहे हैं जब दुनिया तेजी से बदल रही है। अंतर्राष्ट्रीय तनाव, संघर्ष, आर्थिक अनिश्चितता और व्यापार, तकनीक तथा जलवायु से जुड़ी चुनौतियां वैश्विक स्थिति को प्रभावित कर रही हैं। ऐसे समय में ब्रिक्स से सकारात्मक और स्थिर भूमिका निभाने की उम्मीद बढ़ी है। आज कई देश ऊर्जा, भोजन, उर्वरक, स्वास्थ्य सुरक्षा और वित्तीय सहायता जैसी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। ब्रिक्स उन्हें इन समस्याओं से बेहतर तरीके से निपटने में सहायता कर सकता है।
0: बैठक के दौरान ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्री वैश्विक और आपसी हित से जुड़े क्षेत्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। वे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे।
2: बैठक में ब्राजील के विदेश मंत्री माउरो वियेरा, रूस के विदेश मंत्री सरगई लावरोफ, ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराकची, इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो, मलेशिया के विदेश मंत्री दातो श्री उतामा मोहम्मद बिन हाजी हसन, संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मामलों के राज्य मंत्री खलीफा शाहीन अल मरार और दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्री रोनाल्ड लामोलो सहित अन्य लोग भाग ले रहे हैं। कल दूसरे दिन ब्रिक्स संगठन के सदस्य और साझेदार देश ब्रिक्स एट 20 लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण विषय पर एक विशेष सत्र में भाग लेंगे। इसके बाद वैश्विक शासन और बहुपक्षीय प्रणाली में सुधार पर चर्चा की जाएगी। आनंद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त अरब अमीरात जाएंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री अबू धाबी में यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता भारत और संयुक्त अरब अमीरात की मजबूत साझेदारी को एक और नए स्तर पर ले जाने के लिए चर्चा करेंगे। एक रिपोर्ट।
3: ऊर्जा क्षेत्र में महत्वपूर्ण साझेदारी के अंतर्गत ADNOC गैस और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड HPCL ने 10 वर्ष के लिए लगभग 3 अरब अमेरिकी डॉलर के अनुमानित मूल्य के LNG आपूर्ति समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसके साथ ही संयुक्त अरब अमीरात और भारत ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते CEPA के अंतर्गत वर्ष 2032 तक द्विपक्षीय व्यापार को $200 अरब तक पहुंचाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। UAE में भारत के राजदूत दीपक मित्तल ने आकाशवाणी से विशेष बातचीत में कहा कि भारत और संयुक्त अरब अमीरात के संबंध अब सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं है।
4: भारत और संयुक्त अरब अमीरात के संबंध अब केवल व्यापार और निवेश तक सीमित नहीं रहे हैं। अब हमारी साझेदारी तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सुरक्षा, संस्कृति और स्वास्थ्य जैसे कई नए क्षेत्रों तक विस्तार कर चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब पूरा क्षेत्र अभूतपूर्व परिस्थितियों से गुजर रहा है।
3: UAE भारत के लिए दूसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य बन चुका है, जहां भारत का निर्यात $37 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। कांग्रेस ने 10 दिन से चल रही अनिश्चितताओं को खत्म करते हुए आज VD सतीशन को केरलम का नया मुख्यमंत्री घोषित कर दिया। ये घोषणा कांग्रेस नेताओं अजय माकन, मुकुल वास

0: सिद्दिक और दीपा दास मुंशी ने नई दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान की। इस घोषणा के साथ ही कांग्रेस के नेतृत्व वाला यूडीएफ राज्य में सरकार बनाने की प्रक्रिया शुरू करेगा। यूडीएफ ने केरल विधानसभा चुनाव में 2/3 से अधिक बहुमत हासिल किया है। असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने मुख्यमंत्री डॉ. हिमंता बिस्व शर्मा की मंत्रिपरिषद के नवनियुक्त सदस्यों को विभाग आवंटित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। रामेश्वर तेली को विकास, श्रम कल्याण और चाय बागान, जनजाति तथा आदिवासी कल्याण विभाग दिए गए हैं। अतुल बोरा पंचायत और ग्रामीण विकास, असम समझौते का क्रियान्वयन, सीमा सुरक्षा और विकास तथा उत्पाद शुल्क विभाग संभालेंगे। चरण बोरो को परिवहन विभाग और बोडोलैंड कल्याण विभाग का मंत्री बनाया गया है। श्रीमती अजंता नियोग महिला और बाल विकास तथा पर्यटन विभाग संभालेंगी। निर्वाचन आयोग ने आज विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के तीसरे चरण की घोषणा की है, जिसे 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में चरणबद्ध तरीके से चलाया जाएगा। ये राज्य हैं आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, पंजाब, सिक्किम, त्रिपुरा, तेलंगाना और उत्तराखंड। केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव शामिल हैं। भारत ने कहा है कि कल ओमान के तट पर हुए भारतीय ध्वज वाले जहाज पर हुआ हमला अस्वीकार्य है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक बयान में वाणिज्यिक जहाजों और आम नागरिकों को लगातार निशाना बनाए जाने पर खेद व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि जहाज पर सवार भारतीय चालक दल के सभी सदस्य सुरक्षित हैं। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर भारत की ऐतिहासिक सफलता का उत्कृष्ट उदाहरण है। इसमें त्वरित और समन्वित कार्रवाई तथा स्वदेशी हथियारों और प्रणालियों का उपयोग किया गया। नई दिल्ली में कलम और कवच के तीसरे संस्करण के उद्घाटन सत्र में श्री सेठ ने कहा कि आधुनिक भारत नई चुनौतियों के समय में वैज्ञानिक अनुसंधानों को सैन्य शक्ति के साथ जोड़ रहा है। भारतीय सेना और नौसेना ने आज अंतर सेवा सहयोग को मजबूत करने और अधिक समन्वय को बढ़ावा देने के लिए ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि समझौता ज्ञापन का उद्देश्य अंतर सेवा सहयोग को संस्थागत रूप देना और परिचालन सामंजस्य को मजबूत बनाना है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF ने 2 दशक की अल्पावधि में देश के 140 करोड़ नागरिकों का विश्वास जीता है। श्री शाह ने गाजियाबाद में आज NDRF के राष्ट्रपति ध्वज समारोह में कहा कि आपदा की स्थिति में NDRF की मौजूदगी से लोग सुरक्षित महसूस करते हैं।
1: NDRF को राष्ट्रपति निशान का सम्मान दिया गया, वो हम सब के लिए गौरव और प्रतिष्ठा की बात। ये सम्मान NDRF के समस्त बल के सेवा, साहस, शौर्य और समर्पण के संचित गुणों का सम्मान है। 20 साल के कम अंतराल के अंदर आपदा बचाव के क्षेत्र में भारत को वैश्विक नक्शे पर रखने का काम NDMA और NDRF ने किया है।
0: प्रवर्तन निदेशालय विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम फेमा के प्रावधानों के अंतर्गत जायग्रेट टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड और अन्य से जुड़ी जांच के मामले में 14 व्यक्तियों और कंपनियों के परिसरों पर छापेमारी कर रहा है। एक बयान में निदेशालय ने कहा कि जायग्रेट टेक्नोलॉजीज कंपनी ऑनलाइन गेमिंग गतिविधियों के लिए भुगतान एग्रीगेटरों के जरिए लोगों से पैसा इकट्ठा कर रही थी। पंजाब पुलिस ने 5 मई को जालंधर में सीमा सुरक्षा बल मुख्यालय के मुख्य द्वार के पास हुए विस्फोट के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। सूत्रों ने बताया है कि आरोपी कथित तौर पर पाकिस्तान स्थित एक आतंकवादी के संपर्क में था। अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है। इस बीच उसी रात अमृतसर में एक सैन्य चौकी पर हुए एक अन्य विस्फोट की जाँच जारी है। मध्य प्रदेश के देवास जिले की पटाखा फैक्ट्री में भीषण विस्फोट से 2 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। देवास कलेक्टर ऋतुराज सिंह के मुताबिक हादसे में 2 मजदूरों की मौत हुई है। फैक्ट्री में काम करने वाले ज्यादातर मजदूर बिहार के अररिया जिले के बताए जा रहे हैं। संभागायुक्त आशीष सिंह और कलेक्टर ऋतुराज सिंह मौके पर पहुंच गए हैं और बचाव कार्य जारी है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने देवास पटाखा फैक्ट्री हादसे को हृदय विदारक बताया है। डॉ. यादव ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि और घायलों को निःशुल्क इलाज देने की घोषणा की है। लॉजिस्टिक्स इज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स लीड्स 2025 की रिपोर्ट में कल केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर

0: को श्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता के रूप में मान्यता दी गई। नई दिल्ली में केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने प्रदेश को ये मान्यता दी। वर्ष 2023 तक जम्मू कश्मीर आकांक्षी प्रदेश की श्रेणी में था। वर्ष 2024 में इसे तेजी से प्रगति करने वाले प्रदेश के रूप में मान्यता प्राप्त हुई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @ERNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने आज चीन की राजधानी पेइजिंग में आयोजित शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। ट्रंप ने इसे अब तक का सबसे बड़ा शिखर सम्मेलन कहा है। इसमें ईरान संघर्ष और द्विपक्षीय व्यापारिक तनाव सहित कई मुद्दों पर चर्चा हुई। एक रिपोर्ट।
1: पेइजिंग के ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल में आज श्री जिनफिंग के साथ बातचीत में ट्रंप ने कहा कि अमेरिका और चीन का भविष्य उज्जवल होगा। ट्रंप के साथ अमेरिका के शीर्ष व्यापारिक नेता भी आए हैं। इनमें एनवीडिया के जेनसन हुआंग, एप्पल के टिम कुक, टेस्ला और स्पेसएक्स के एलन मस्क और ब्लैक रॉक के लैरी फिंक के नाम शामिल हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि ये वर्ष चीन अमेरिका संबंधों के लिए ऐतिहासिक होगा। चीन और अमेरिका के बीच व्यापारिक तनावों के बारे में जिनफिंग ने कहा कि व्यापारिक संघर्ष में कोई भी विजेता नहीं होता। राष्ट्रपति ट्रंप की ये यात्रा पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष और उसके बाद ईंधन से जुड़ी वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में आए व्यवधानों के बीच हो रही है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: देश में थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति वार्षिक आधार पर अप्रैल में 42 महीने के उच्चतम स्तर 8.3% पर पहुंच गई। पिछले वर्ष मार्च में ये 3.88% थी। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के अनुसार मुद्रास्फीति में ये वृद्धि मुख्य रूप से खनिज तेल, कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस, मूल धातुओं, विनिर्मित उत्पादों और गैर खाद्य वस्तुओं के दाम बढ़ने के कारण हुई। थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु महिला सिंगल्स में और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी तथा चिराग शेट्टी की जोड़ी पुरुष डबल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। सिंधु ने आज प्री क्वार्टर फाइनल में डेनमार्क की अमाली शूज को केवल 28 मिनट में हराकर अगले दौर में प्रवेश किया। क्वार्टर फाइनल में सिंधु का सामना विश्व चैंपियन जापान की अकाने यामागुची से होगा। पुरुष डबल्स में सात्विक और चिराग शेट्टी ने प्री क्वार्टर फाइनल में मलेशिया के ब्रायन जेरेमी गुंटिंग और मोहम्मद हैकल की जोड़ी को हराया। आईपीएल क्रिकेट में आज पंजाब किंग्स का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने कहा वैश्विक अनिश्चितता और आर्थिक चुनौतियों के बीच ब्रिक्स रचनात्मक भूमिका निभा सकता है। नई दिल्ली में 2 दिन के ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल अबू धाबी यात्रा के दौरान भारत और संयुक्त अरब अमीरात द्विपक्षीय संबंधों को एक नए स्तर पर ले जाने के लिए तैयार। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन केरलम के अगले मुख्यमंत्री होंगे। निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के तीसरे चरण की घोषणा की। इसे चरणबद्ध तरीके से 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में चलाया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा आपदा प्रबंधन में भारत एक वैश्विक नेता और अग्रणी देश के रूप में उभरा है। और थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु महिला सिंगल्स में और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी तथा चिराग शेट्टी की जोड़ी पुरुष डबल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंची। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम सदाबहार नगमे में।

0: हम सुन रहे थे ये गीत 12 o'clock फिल्म से मोहम्मद रफी गीता दत्त की आवाजों में, मजरू सुल्तानपुरी के बोल और ओपी नैयर के संगीत के साथ. आइए सुनते हैं ये संदेश.
1: मिलती है धाराएं 3, विचार, स्वर और संगीत.
2: तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा.
1: बातें जो देती हैं हौसला, शब्द जो देते हैं सुकून.
2: ये ना सोचो इसमें अपनी हार है कि जीत है.
1: हालात से लहूलुहान दिल को मिलता है ठिकाना. विचार और संदेश थाम लेते हैं आपका हाथ.
2: देना साथ मेरा, ओ हम नवा.
1: वो है कार्यक्रम त्रिवेणी.
2: तुम आ गए हो, नूर आ गया.
1: सुबह 8:15 और दिन में 2:15 सिर्फ विविध भारती पर. आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी.
3: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली
1: पहनी. आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत.
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी.
1: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज. सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास. भूले बिसरे गीत
3: तुम्हारी याद सताते
1: हैं. हर रोज सुबह 7 सिर्फ विविध भारती पर.
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन. आइए सुनते हैं अगला गीत डिटेक्टिव फिल्म से, गीता दत्त हेमंत कुमार की आवाजों में, शैलेंद्र के बोल और मुकुल रॉय के संगीत के साथ.

हम सुन रहे थे ये गीत काला पानी फिल्म से मोहम्मद रफी की आवाज में मजरू सुल्तानपुरी के बोल और सचिन देव वर्मन के संगीत के साथ।

हम सुन रहे थे ये गीत आखिरी दाव फिल्म से आशा भोसले की आवाज में मजरूर सुल्तानपुरी के बोल और मदन मोहन के संगीत के साथ। आइए सुनते हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे का अगला नगमा जो कि है फिल्म अनाड़ी से। लता मंगेशकर मुकेश की आवाजें हैं, हसरत जयपुरी के हैं बोल और शंकर जयकिशन का है संगीत।

हम सुन रहे थे मधुमति फिल्म का यह गीत मुकेश की आवाज में शैलेंद्र के बोल और सलिल चौधरी के संगीत के साथ। आइए सुनते हैं सदाबहार नगमे का अंतिम गीत, और इस गीत के साथ आप मुझे आज्ञा दीजिए, आप सबका कल्याण हो ये प्रार्थना करती हूँ। और सुनिए ये गीत मालिक फिल्म से, सुरैया शमशाद बेगम और साथियों की आवाजें हैं, शकील बदायूनी के बोल हैं और गुलाम मोहम्मद का है संगीत।

0: सखी सहेली
1: सखी सहेली कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी साथियों को, सभी सखियों को, प्यारे प्यारे जितने साथी बैठे हैं सभी को नमस्कार। और आज मेरे साथ इस मंच पर हैं दीपा, आपको भी दीपा प्यार भरा नमस्कार।
2: चंचल, आपको और साथ में हमारी सारी सखियों, सहेलियों और हमारे श्रोता भाइयों को हमारा हेल्दी नमस्कार।
1: तो आपने पिछली बार भी हेल्दी नमस्कार किया, उसकी वजह बताई थी, और आज भी हेल्दी नमस्कार है, तो आज भी वजह बताइए
2: भाई। एक बार जब भी आते हैं ना, तो अपने श्रोताओं को याद दिला दो, हेल्थ का ध्यान रख रहे हो ना।
1: हाँ,
2: सेहत का ख्याल है या नहीं।
1: इसीलिए भाई दीपा जी जब भी आएंगी ना, वो स्वास्थ्य से भरा नमस्कार करेंगी,
2: और आपको ये बताना है कि आपने स्वास्थ्य का ख्याल रखा है या नहीं।
1: हाँ, तो भाई हमारे कौन से साथी अपने स्वास्थ्य का ख्याल रख रहे हैं, हमारी सहेलियां अपने परिवार वालों के स्वास्थ्य का ख्याल रख रही हैं।
2: जी बिल्कुल,
1: वो हमसे साझा कर सकती हैं, लेकिन विषय जिन पर हम बात करेंगे वो हम साझा कर लेते हैं।
2: स्वास्थ्य का ख्याल रखना देखो ना, इसलिए भी बहुत जरूरी है, इन दिनों बहुत गर्मी हो रही है, तो ये एक जायज सी बात है कि पसीना आता है, लेकिन कई लोगों के पसीने से दुर्गंध आती है।
1: हाँ,
2: है ना।
1: कुछ लोग इस बात का ख्याल रखते हैं कि जब हम किसी के पास बैठे हों तो दूर से भी उसे नाक भौं सिकोड़ने की जरूरत ना पड़े, या उसे भी अच्छा महसूस हो, तो अपने आप को साफ सुथरा और स्वच्छ हाइजीन के पर ध्यान रखते हुए वो जो रखते हैं, तो इस बात का सभी ख्याल रखें। और इसमें क्या उपयोगी टिप्स हो सकते हैं, थोड़ी हम मदद करेंगे, थोड़ी हमारे जो सुनने वाले हैं वो उपयोगी टिप्स लेकर बताएंगे।
2: जी बिल्कुल। और फिर मुझे तो देखो आज उसके बाद ना खरीदारी करने भी जाना है प्रोग्राम के बाद।
1: तो क्या खरीदने वाली हो और कैसे खरीदना है तुम्हें ये बताओ।
2: देखो, मैं सोच रही हूँ एक बहुत अच्छा सा ना फोन आया, स्मार्टफोन, और किश्तों पर भी मिल रहा है, तो सोचा कि चलो आज जाकर के देखते हैं कितना किश्त है, क्या है, हम भर सकते हैं या नहीं। तो बड़ा मन है कि फोन खरीद लें।
1: देखो
2: फोन वो स्मार्ट वॉच वाला, साधारण नहीं।
1: क्या होता है ना, आसानी से वो चीज हमारे हाथ में आ जाती है जब हम किश्तों पर लेते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि भाई जो चीज 15,000, 20,000, 50,000 तक की भी हो सकती है, उसे हम कुछ 2,000, 4,000, 5,000, 8,000 देकर भी उसे अपने हाथ में ले सकते हैं, यानी कि बहुत कम रकम में आसानी से वो चीज आ सकती है। लेकिन हर चीज के कुछ अगर फायदे हैं तो नुकसान भी।
2: बिल्कुल। तो हमारी सखियां कहीं इस तरह से ये फोन लेना या स्मार्ट वॉच लेना या कोई और चीज के लिए किश्तों के उस जो सुंदर से दुनिया है उसमें कितना जा चुकी है, या उनको लगता है कि हाँ कुछ हद तक सही है, कुछ हद तक गलत है, लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए,
1: और क्या इसके साथ जुड़े उनके अनुभव भी होंगे कि उन्होंने जब किश्तों पर कोई चीज ली तो उनके साथ में अच्छा क्या हुआ या उसका खामियाजा क्या उन्हें भुगतना पड़ा, तो अच्छे बुरे सभी तरह के अनुभव वो हमारे साथ साझा कर सकते हैं।
2: बिल्कुल। और अनुभव तो बहुत सारे तरीके के होते हैं ना। देखो दोस्ती में भी कितने अनुभव मिलते हैं, कहीं अच्छे दोस्त मिलते हैं, कहीं ऐसी दोस्ती होती है जो ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाती, कहीं बहुत लंबी दोस्ती होती है, और जो बचपन की दोस्ती भी रहती है, जहां पर हम KG1 KG2 के जो पढ़ते थे बिल्कुल छोटे, और आज तक दोस्ती, तो क्या ऐसी वाली दोस्ती भी आपके साथ है, या कहीं कुछ ऐसा आपका अनुभव रहा है कि कोई बहुत प्यारा दोस्त है और अभी उससे कहीं दूरी बन गई है, तो कुछ अगर आप बता सके तो कारण बताइएगा, तो कहीं हम शायद आपकी मदद कर सके दिल को हल्का करने में या अपने उस दोस्त के पास जाने में।
1: एक और दोस्त, यानी कि रेडियो को भी कई लोग अपना दोस्त बना लेते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं ना जो लोगों से दूरी बनाकर रखते हैं, तो वो लोग दोस्त बनाते हैं, कोई मोबाइल को अपना दोस्त बना लेता है, कोई किताबों को अपना दोस्त बना लेता है, कोई रेडियो को अपना दोस्त बना लेता है। वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो चित्रकारी को भी अपना दोस्त बना लेते हैं, बस अपने शौक में वो इस तरह डूब जाते हैं। मान लीजिए आपको अगर रंगों से प्यार है, चित्रों से प्यार है, तो चित्रकारी जैसे अगर और भी कला आपके भीतर है, चाहे वो गायन की हो, किसी वादन की हो, तो रंगों की जब मैंने बात की तो मुझे याद है कि आज जिस पद्मश्री महिला की हम बात कर रहे हैं, जो पद्मश्री से सम्मानित हो चुकी हैं, वो रंगों की दुनिया से ही तो जुड़ी हैं।
2: बिल्कुल सही कहा तुमने। और उनका सफर अगर हम उनके बारे में जानेंगे ना, जानना है या हमें क्या करना है, बहुत कुछ जानकारी तो है।
1: जानकारी बहुत सारी है, लेकिन मुझे लगता है कि भाई दोस्त जब हम रेडियो को बनाते हैं, गीत संगीत को बनाते हैं, तो पहले गाना सुनवाना बनता है।
2: अरे ये तो नियम भूल ही गई थी।

0: पता है, न्याय विभाग भारत सरकार ने गरीब और जरूरतमंदों को न्याय दिलाने की प्रक्रिया को किया और भी आसान।
1: हाँ बिल्कुल, टेलीलॉ और न्याय बंधु सेवाओं का हो गया है एकीकरण।
0: अब चाहे टेलीलॉ के माध्यम से मुफ्त कानूनी सलाह लेनी हो
1: या न्याय बंधु में पंजीकृत वकीलों से कोर्ट में निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए जुड़ना हो,
0: अब दोनों एक ही ऐप पर उपलब्ध। डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉगिन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी CSE सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: बहुत सुंदर गीत था और जिस तरह से इस गीत में खनक थी ना, वैसी ही कुछ खनक रंगों में होती है और रंग भी मन को मोह लेते हैं। और आज हम जिस महिला की बात कर रहे हैं जो चित्रकार हैं, जो अपने रंगों का जादू ना जब वो चलाती है ना रंगों की अपनी कलम, तो वो नजर आता है।
1: बिल्कुल सही कहा। और भूरी बाई, ये उनका सफर हमें यही बताता है चंचल कि कला छुपाए नहीं छुपती है, वो दुनिया तक एक दिन सबके सामने आ ही जाती है। इसलिए घर में कोई बच्चा हो या आप स्वयं हमारी सखी खास तौर पर, वो क्यों ना हो, किसी भी प्रकार की कला अगर आपके अंदर है तो उसे कहीं भी रोकिएगा नहीं, कभी दबाइएगा नहीं।
0: और ये जो अवसर है जब स्कूल के बाद बच्चों की छुट्टियां होती हैं, यही मौका उन्हें मिलता है कि उनके अंदर कोई कला है तो उसे आप

0: उभारें और उन्हें कोई ऐसी क्लासेस में एक्टिविटी के लिए भी आप भेज सकती हैं ताकि उन्हें खुद को जानने का अवसर मिलेगा इन चीजों से।
1: और बच्चों के साथ खुद भी क्यों नहीं, अगर आपको अब लगता है कि हाँ थोड़ा सा वक्त है
0: जी,
1: और अगर आपको मान लीजिए कि 40 पार या 45 की उम्र के पार आपको लगता है कि मैं कोई डांस क्लास सीखूं, लेकिन मन में एक पहला ख्याल क्या आता है, अरे अब कहां, तो ये ख्याल आने भी मत दीजिएगा। जरूर अपने पास की किसी कोई क्लास कहीं पे कुछ सिखाया जा रहा हो तो जाकर एक बार देखिएगा जरूर कि आप कर पा रहे हो या नहीं।
0: और 40-50 के पार तो मैं कहती हूँ बहुत ज्यादा अच्छा समय होता है, उस वक्त अधिकतर महिलाएं या पुरुष बच्चों की जिम्मेदारियों से काफी हद तक मुक्त हो चुके होते हैं, क्योंकि बच्चे पढ़ लिख कर अपने नौकरी के लिए या बड़ी किसी पढ़ाई के लिए वो विदेश चले गए होते हैं या कहीं और किसी अन्य शहर में चले गए हैं या अपने ही शहर में वो व्यवस्थित शादी

0: किसी अन्य शहर में चले गए हैं या अपने ही शहर में वो व्यवस्थित शादी ब्याह करके या नौकरी करके सेटल हो चुके होते हैं।
1: बिल्कुल सही।
0: तो आपको जब अपने लिए समय निकालने का अब वक्त आया है तो बिल्कुल पीछे ना हटें, अपने उस शौक को पूरी तरह से जी लीजिए।
1: बिल्कुल।
0: तो आज हम बात कर रहे हैं चित्रकार भूरी बाई के बारे में, जो कि मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में छोटा सा गाँव है पिटौर, वहां पर इनका जन्म हुआ 1968 में। और उनके माता पिता बहुत ही निम्न वर्गीय परिवार से आते थे और मेहनत मजदूरी का काम वो किया करते थे। पढ़ाई लिखाई भी उनकी हो नहीं पाई ज्यादा, क्योंकि उनका जो कह सकते हैं ना कि पृष्ठभूमि जो उनकी रही वो इस तरह की थी कि उन्हें पढ़ने लिखने का मौका ही नहीं मिल पाया। और जब छोटी सी थी वो तो चित्रकारी का बड़ा शौक था उन्हें, और मिट्टी और गेरू, जो आमतौर पर हम देखते हैं कि घरों में गेरू से कुछ रंगोलियां अल्पना बनाई जाती है, तो उन्हीं से बस उन्हें भी खेलने का शौक लगा। और खेलते खेलते रंगों से कभी हाथी कभी घोड़ा और कभी पेड़ों के जंगलों से जो चीजें मिल जाती थी उन्हें लाकर वो चित्रकारी का अपना शौक है उसे पूरा किया करती थी।
1: जी, अब क्योंकि बहुत छोटी सी उम्र थी उनकी तो पड़ोस के ही गांव में उनका ब्याह हो गया। पति पत्नी दोनों आसपास के गांव शहरों में मजदूरी करके अपना जीवन चला ही रहे थे बस इसी तरीके से। और भूरीबाई भील आदिवासी समुदाय की भित्ति चित्र परंपरा में बहुत प्रशिक्षित भी थी और घर की कच्ची दीवारों पर गेरू से या कभी कोई दूसरे प्राकृतिक रंग से चित्रकारी वो करती थी। और ये हुनर कहीं कुछ ऐसा रहा कि राजधानी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल तक ले आया। तो 1982-83 की बात थी, भोपाल में भारत भवन का निर्माण चल रहा था चंचल, तो प्रदेश के अलग अलग अंचलों से आदिवासी कलाकारों को बुलाकर यहाँ के निर्माण में मदद लिया जा रहा था उस वक्त। तो भूरीबाई के पति को भारत भवन में बगीचे की देखभाल का काम मिल गया तो उनके साथ वो भी भोपाल चली आई।
0: और बिल्कुल, क्योंकि उस कच्ची मिट्टी से गेरू से खेलने का शौक तो उनको था ही, इन प्राकृतिक रंगों की चित्रकारी से जो हुनर उनको मिला था तो बस जब उनके पिता आए तो वो भी चली आई। और उनके पिता जो कि बगीचे की देखभाल का काम किया करते थे
1: जी, उनके पति चले आए।
0: हाँ,
1: पति के साथ,
0: पति के साथ वो चली आई और उन्होंने भी भारत भवन में मजदूरी का काम करना वहां शुरू किया। और यहाँ उनकी मुलाकात हुई उनके जो गुरु थे जे स्वामीनाथन, उनसे हो गई। और उनकी जो संस्कृति थी, वहां के जो देवी देवता थे, उनको समझने के लिए भूरीबाई और उनके पति से उन्होंने बात की। इसी दौरान उन्हें यह भी पता लगा कि देवी देवताओं के चित्र घर की दीवारों पर बनाने की बहुत पुरानी परंपरा रही है देश में। तो जे स्वामीनाथन ने पहली बार भूरीबाई से देवी देवताओं के चित्र कागज पर बनाने को कहा, यानी कि दीवारों पर तो बनते ही थे लेकिन ये चित्र उन्होंने कागज पर किस तरह उकेरे जाएंगे ये उनको कहा।
1: तो वे तो उंगलियों से बनाती थी, अब उन्हें कैनवास पर बनाने के लिए जब कहा तो बड़ी समस्या उनके सामने आन पड़ी कि जीवन में कभी कलम को तो हाथ ही नहीं लगाया। घर पर उन्होंने लेकिन क्या था, थोड़ी प्रैक्टिस की और फिर पहुंची अपने कला गुरु के जे स्वामीनाथन के पास। भूरीबाई ने 5 दिनों में यह काम करके दिखाया जिसके लिए उन्हें उस वक्त 50 रुपए मिले। यहां जी
0: भाई, उस समय की जब आप बात कर रही हैं तो 50 रुपए मिलना अपने आप में बड़ी बात हुआ करती थी। और यहीं से जो उनकी कला की यात्रा है ये भी शुरू हो गई और ये ऐसी शुरू हुई कि फिर आगे चलकर विश्व स्तर तक पहुंची है। और भूरीबाई भी अपने बारे में बताती हैं कि उन्हें चित्रों में जो जनजाति की सांस्कृतिक धरोहर है, जंगल है, पशु पक्षी है और त्योहार, ये उनके मुख्य विषय थे जिनको वो चित्रकारी में उकेरा करती थी। और इन चित्रों को छोटे आयताकार वो बनाया करती थी जिनमें उंगलियों से बिंदी बिंदी लगाकर उसे वो बिल्कुल जीवंत बना दिया करती थी। हर कलाकार का चित्रकारी करने का जो एक अंदाज होता है तो वो उनका अंदाज था।
1: भूरीबाई कहती हैं कि उनको कला का पहला सम्मान 1986 में मिला और उसके बाद मध्य प्रदेश सरकार ने भी देवी अहिल्या सम्मान उन्हें दिया। 2018 में उनके चित्रों की पहली अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी भी लगी जो कि अमेरिका में लगी। बाद में उन्होंने दक्षिण अफ्रीका और जापान जैसे देशों में भी अपने चित्रों की प्रदर्शनी लगाई। हर जगह उनकी चित्रकारी को इतना पसंद किया गया कि उसके बाद मतलब उन्हें साल हर साल बुलाया ही जाता था कि आप आकर के एग्जीबिशन लगाइए।
0: बिल्कुल, हम अगर देखें कि उनकी क्या पृष्ठभूमि रही, किस तरह के परिवार से वो आती हैं, उन्हें पढ़ने लिखने को स्कूल जाने को नहीं मिला, किसी बड़े स्कूल कॉलेज की शिक्षा नहीं है उनके पास में, लेकिन जिस तरह के सम्मान उन्होंने पाए सिर्फ अपनी उस कला के जरिए, तो अगर आप शिद्दत से कोई भी काम करें तो वो छोटा बड़ा नहीं, वो आपको कहीं एक जगह ले जाकर वो सम्मान दिलवा सकता है।
1: बिल्कुल, वे कहती हैं कि अपने समुदाय में वो पहले पहली महिला हैं जिन्होंने कागज और कैनवास का इस्तेमाल किया है और पेंटिंग करने के लिए अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती हैं। एक मजदूर से लेकर विश्व स्तर तक अपने समुदाय के पेंटिंग को पहचान दिलाने वाली वे पहली महिला बनी जिसके लिए उन्हें 2021 में पद्मश्री पुरस्कार मिला।
0: और भूरी भाई का ये

0: करना है कि आप चाहे गांव में रहते हैं या शहर में रहते हैं, किसी भी महिला को अपने क्षेत्र में हुनर को आगे ले जाते हुए जीवन में आगे जरूर बढ़ना चाहिए। और हम भी यही शुभकामनाएं देते हैं अपनी सभी सखियों को और अपने सभी साथियों को कि आप उम्र को एक सिर्फ नंबर मान के चलिए और उम्र को किसी भी चीज में आड़े मत आने दीजिए। आप आगे बढ़िए, अपने शौक को पूरी तरह से जी लीजिए। और अभी गाना सुन ले।
1: चलिए।

0: पानी पता है कैसा होता है कि जिस रंग में मिल जाए वैसा ही बन जाता है.
1: बिल्कुल.
0: और दोस्ती भी ऐसी थी, अगर आपको दोस्त कोई बहुत अच्छा मिल जाए ना, आपके रंग में वो रंग जाए, तो बस ऐसा अगर दोस्त एक भी आपके पास है ना, तो वो 100,000 दोस्त के बराबर है.
1: बिल्कुल सही कहा. और देखिए, यही एक संदेश हमारी एक सखी ने लिखा है, दोस्ती से ही तो प्रेरणा लेकर सखी सहेली का नामांतरण हुआ होगा. हम सब आपस में अच्छे दोस्त हैं. सोचो अगर सखी सहेली ना होती तो हमारी दोपहर कितनी सुनी होती. भाई, सखी सहेली के रहते आपकी दोपहर कभी सुनी नहीं होगी.
0: और पता है दीपा, हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे रिश्तों से हम घिरे हुए होते हैं, जिनमें से अधिकतर या तो हम कहें सभी रिश्ते जन्म से संबंधित होते हैं.
1: जी.
0: और जन्म से जो जुड़े हुए रिश्ते हैं, इन्हें बदल पाना भी हमारे लिए संभव नहीं है. लेकिन इन जन्म से जुड़े रिश्तों के अलावा जो एक बहुत महत्वपूर्ण रिश्ता है, वो होता है दोस्ती का. और ये वो रिश्ता है जिसे हम अपनी सोच समझ के साथ में खुद चुनते हैं और खुद इस रिश्ते से जुड़ते हैं.
1: बिल्कुल सही
0: और
1: कहा.
0: जीवन के हर कदम पर अलग अलग लोग हमें मिलते हैं, कुछ से अच्छी जान पहचान हो जाती है, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिन्हें हम दोस्त कह पाते हैं.
1: बिल्कुल
0: और
1: सही.
0: मुश्किल समय में जो व्यक्ति हमारे लिए मदद के लिए सबसे पहले हाथ बढ़ाता है, वही सच्चा दोस्त होता है.
1: लेकिन चंचल, वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके जीवन में दोस्ती नाम का कोई रिश्ता नहीं होता. सोशल नेटवर्किंग के जमाने में भी बहुत ऐसे लोग हैं जिनके पास कोई दोस्त नहीं है. तो क्या हो ऐसा है कि उन लोगों को दोस्ती करने का सही तरीका मालूम नहीं है?
0: ऐसा तो नहीं हो सकता.
1: समय के साथ साथ दोस्ती के मायने भी बदल रहे हैं. आज जहां ज्यादातर लोग अपना मतलब और स्टेटस देखकर दोस्ती करते हैं, वहीं पुराने समय में दोस्ती का संबंध सिर्फ पहले कैसा होता था, बिल्कुल दिल से दोस्ती हुआ करती थी.
0: दिल से जुड़ जाते
1: और
0: थे.
1: अब जो थोड़ा सा एक मॉडर्न जमाना कह लो या आधुनिकता कह लो, स्वार्थ की चकाचौंध कह लीजिए, आज दोस्ती को एक माध्यम की तरह बना दिया गया है, जबकि ऐसा कतई होना नहीं चाहिए.
0: इसीलिए तो हमारे साथी लिख रहे हैं कि दोस्ती के बिना जीवन वास्तव में अधूरा और सूना सा लगता है, क्योंकि दोस्त ही हर खुशी और जश्न और गम को हल्का बनाते हैं. वे भरोसे, ईमानदारी और बिना शर्त के हमारे सपनों को सहारा देते हैं. एक सच्चा दोस्त जीवन में सुकून, मस्ती और निस्वार्थ साथ लेकर आता है. दोस्ती के बारे में कुछ मुख्य बातें हैं जो हमारे साथी ने हमें लिखकर भेजी हैं. खुशी का एहसास, दोस्तों के बिना जिंदगी बेरंग है, वो हर पल को खुशी से भर देते हैं. सच्चे दोस्त की पहचान होती है कि अपनी कमियों को स्वीकार करे और मुश्किल समय में हौसला बढ़ाए, भावनात्मक सहारा देते हैं. दोस्त सिर्फ हंसी मजाक नहीं करते, बल्कि रोते हुए को भी सहारा देते हैं, कड़वे सच बताने वाले भी होते हैं. और दोस्ती एक ऐसा बंधन है जिसे हम अपनी पसंद से चुनते हैं, उसमें स्वार्थ, अहम, इन चीजों के लिए कोई जगह ही नहीं
1: बिल्कुल
0: होती.
1: बिल्कुल सही कहा. और एक हमारे सखी कह रही हैं कि दोस्ती पर कोई बात की जाए जिसमें कृष्ण, सुदामा और कर्ण, दुर्योधन की मित्रता की चर्चा ना हो, ऐसा हो नहीं सकता. दोस्त एक दूसरे दोस्त के चेहरे का भाव समझकर उसके लिए अपना सर्वस्व दांव पर लगा देते हैं. और दोस्ती यही मांगती भी है, अपना स्वार्थ नहीं होता उसमें, भाव यह रहता है कि हमें ये वापस मिल जाएगा, लेकिन तू जो मतलब दोस्त है वो तू बस मेरे साथ रहे, बाकी सब कुछ हो जाएगा. आज के युग में बनावटी दोस्त तो मिल जाएंगे, लेकिन आपके पास भले अकुल संपत्ति हो, हिचकते नहीं है, कभी कम होगा और कभी मांगते रहेंगे, जिनसे आप वापस कुछ पाने की उम्मीद बिल्कुल ना करें. यानी कि वो बनावटी दोस्त के बारे में बता रहे हैं.
0: तो चलिए अब सिर्फ बातें नहीं करते हैं, कुछ सुन भी लेते हैं. अच्छा सा
1: चलिए,
2: बाकी रह गए दोस्ती यारी रद हो गई, प्यार में दुनियादारी कैसी मुफ्त की चीज नगद हो गई है, छीछी यार की ये पहचान, दोस्ती में कैसा एहसान जब दोस्ती होती है तो.

तरपत मछली कहते नल बिन तरपत पानी हो जल बिन तरपत मछली कहते नल बिन तरपत पानी हर खाल

मालूम है भारत के जो कहते वही होगा, ये पांचों की पंचायत जो सोचे सही होगा, हम मालूम है भारत के जो कहते वही होगा।

उंगली का जब तक जोड़ सलामत, सांस सलामत, छोटी और बड़ी है तो क्या, पांचों है तो हाथ सलामत, एक एक के है पांच मुकद्दर, तकलीफों से घबराना मत, साझे जोड़ जवानी बचपन पांच पांच।

बिल्कुल सही बात है कि दोस्ती में सिर्फ दोस्ती ही होती है, कोई एहसान नहीं होता। लेकिन इस वक्त समय हो चला है एक छोटे से अंतराल का।

0: विविध भारती पर इस समय चल रहा है कार्यक्रम सखी सहेली। मैं हूं आपके साथ आपकी सखी चंचल वर्मा
1: और दीपा माहेश्वरी।
0: तो भाई हम बात कर रहे थे दोस्ती की। देखो दीपा, हम दोनों भी बड़े अच्छे दोस्त हैं ना
1: और हमारी सखियां भी तो सारी दोस्त हैं। तभी तो ये लिख रही हैं कि दोस्ती बिना जग सूना होता है। जैसे सखी सहेली प्रोग्राम में सब सखियां दोस्त हैं। हर रोज एक घंटा हमें मिलता है, सखियों के सुख दुख की बातें करते हैं हम सब। सखियों को जीवन के अलग अलग विषयों पर मार्गदर्शन मिलता है और सखियां भी इस दोस्त से कमेंट करके बेझिझक बातें करती हैं। तो भाई यही तो होना चाहिए, कि क्योंकि हमारे पास जरिया यही है कि हम कमेंट करके एक दूसरे से अपने हर मन की हर बात का को हम साझा कर सकें।
0: बिल्कुल। और देखिए, अगले संदेश में भी बड़ी अच्छी बात है। हमारे जो साथी हैं वो लिखते हैं कि दोस्ती अमूल्य होती है, जिसे धन से खरीदा नहीं जा सकता। इसीलिए कहा जाता है कि दोस्ती के बिना जग सूना है। यदि जीवन में दोस्त ना हो तो दुनिया सूनी सूनी और बेरंग लगने लगती है। मित्र हमारे चेहरे पर मुस्कान ले आते हैं और उदासी को दूर करते हैं। ये जीवन का सबसे सुंदर और अनमोल रिश्ता है। ये एक ऐसा बंधन

0: है जहां बिना किसी स्वार्थ के ये दिलों को जोड़ता है। सच्चा मित्र हमारे सुख दुख का साथी होता है। जीवन में कठिनाइयां जब भी आती हैं तो दोस्त हमारा हौसला बनते हैं। दोस्ती में अपनापन, विश्वास और समझदारी होती है। एक अच्छा दोस्त हमें सही राह दिखाता है, गलतियों से बचने की सीख देता है। तो जहां इन्होंने लिखा ना कि दोस्ती अनोखा बंधन है, तो दोस्ती वो बंधन है जहां कोई बंधन नहीं होते,
1: सही बात है,
0: है
1: बिल्कुल
0: ना?
1: सही कहा आपने। और एक और हमारा एक संदेश आया हमारे, ये तो श्रोता भाई हैं, ये कहते हैं, जैसे मेरी जिंदगी में विविध भारती सखी सहेली एक सच्चे दोस्त के रूप में आया, वैसे ही महसूस होता है कि एक सच्चे और प्यारे दोस्त के बिना जग सुना है। कई बार जीवन में ऐसे पल आते हैं जब अपनी हमें हमारी भावनाओं को पूरी तरह समझ नहीं पाते, लेकिन एक सच्चा मित्र बिना कहे मन की बात समझ जाता है। सखी सहेली ने सिर्फ साथ नहीं दिया बल्कि हर दिन अपनापन, मुस्कान और भावनाओं का एक सुंदर रिश्ता दिया है। ये कहते हैं, सच कहूं तो जैसे दोस्ती बिना जग सूना लगता है, वैसे ही सखी सहेली के बिना जीवन का एक हिस्सा अधूरा लगता है। तो क्या बात है, हम अपने इस कार्यक्रम के जरिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं और ये साथ यूं ही चलता रहे, ये इसी बात की हम कामना भी करते हैं।
0: और भी बता दें कि जो आने वाला महीना है यानी जून, 2 जून को सखी सहेली की वर्षगांठ है,
1: वर्षगांठ
0: तो
1: है।
0: आप अभी से तैयारियां शुरू कर दीजिए अपनी सहेली के लिए, इस दोस्त के लिए।
1: बिल्कुल सही
0: तो
1: कहा।
0: अगला संदेश पढ़ते हैं। इसको हमारे श्रोता जो भी लिखने वाले हैं संदेश को, उन्होंने एक गीत की पंक्ति से शुरुआत की है कि दिए जलते हैं, फूल खिलते हैं, बड़ी मुश्किल से दुनिया में दोस्त मिलते हैं। दोस्ती के बिना जीवन वास्तव में अधूरा है और सूना है। दोस्त केवल साथ रहने वाले लोग नहीं होते, बल्कि वे खुशियों को दुगना करने वाले, दुखों को आधा करने वाले हिस्सेदार होते हैं। उनके बिना हंसी, यादें, मुश्किल समय में ढांढस बंधाने वाले ये लोग होते हैं। सुख दुख बांटने के लिए दोस्त सबसे बड़ा सहारा होते हैं। दोस्तों के साथ बिताया हर पल जिंदगी की असली कमाई है, और इसी दोस्ती के बिना जीवन में एक गहरा सुनापन आ सकता है। तो बिल्कुल आप दोस्त बनाइए। अगर आपको अकेले रहने की आदत है या आपको लोगों से मिलना जुलना कम पसंद है, तब तो सोशल मीडिया एक बहुत अच्छा जरिया है। लेकिन सोशल मीडिया पर अगर आप दोस्त बना रहे हैं तो लोगों पर आंख मूंद कर भरोसा मत
1: बिल्कुल
0: कीजिए, क्योंकि
1: बिल्कुल
0: वहां पर भी आपको धोखा देने वाले दोस्त मिल सकते
1: मिल ही
0: हैं।
1: सकते हैं। और एक हमारे साथी ने संदेश दिया है कि रेडियो तो हमारा बचपन से साथी रहा है। एक समय था, एक बार के लिए खाना भूल जाते थे पर सखी सहेली सुनना नहीं भूल पाते थे। पर आज व्यस्तता के चलते बस सखी सहेली सुन पाते हैं। परिवार की जिम्मेदारी के साथ साथ हम आपको सच्चा दोस्त मानते हैं, तो भाई हमारे लिए आप हमारे सच्चे दोस्त हैं, क्योंकि श्रोताओं के बगैर, हमारी सखी और सहेलियों के बगैर तो ये प्रोग्राम पूरा अधूरा है। इसका ये जो रिश्ता है, इसकी
0: जी
1: डोर अगर एक तरफ स्टूडियो है तो दूसरी तरफ आप सब हैं, आप ही सबसे इसकी सुंदरता है।
0: बिल्कुल। अगर सोचिए हम दोनों ही मिलकर सारी बातें करेंगे तो, और इनके कमेंट्स नहीं होंगे, तो प्रोग्राम कितना खाली खाली सा लगेगा ना।
1: बिल्कुल, इनके बिना तो सब वैसे ही सब कुछ सूना है।
0: हाँ, तो वही, चलिए सुनापन दूर करें, एक और संदेश पढ़ते हैं। दोस्ती की मिसाल देखना है तो हमारे विविध भारती के फेसबुक के मित्रों को देखिए, वहां हर रोज मिलते हैं और पर्सनल मुलाकात भी करते हैं।
1: क्या बात है भाई, ये तो बहुत ही सुंदर बात है।
0: तो अब दोस्ती की बातें बहुत हुई, क्यों ना एक दोस्ती से भरा गीत सुन ले।
1: चलिए।

0: जैसा कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त, आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
1: हम भी ये अनुरोध करते हैं कि अगर आप मुंबई में रहते हैं तो सृजन भारती के इस अगले अंक में आप जरूर हिस्सा बनिए इसका। और अब हम बात करते हैं हमारे अगले विषय पर जिस पर हमने बताया था कि भाई किश्तों में अगर आपको कोई सामान लेना है तो वो कितना सही है या कितना गलत है, क्योंकि किश्तों पर खरीदारी करना इनकी कितना आसान ईएमआईज पर किसी चीज को ले लेना जीवन शैली का एक अहम हिस्सा बन गया है और ये दो धारी तलवार की तरह होता है ना दीपा?
2: बिल्कुल सही कहा, अगर समझदारी से इस्तेमाल किया गया तो ठीक, न किया जाए तो ये कर्ज के जाल में भी आपको फंसा सकता है।
1: बिल्कुल, इसीलिए हमने कहा कि ये दो धारी तलवार है, अगर आसान है तो आपके लिए मुश्किल का सबब भी बन सकता है। और इस पर इतनी सारी बातें संदेश के रूप में हमें हमारे साथियों ने लिखकर भेजी हैं। तो इनका कहना है कि किश्तों पर खरीदारी कितनी सही है, भाई आजकल ईएमआई और यूपीआई का जमाना है और समूची दुनिया ही नहीं ये बल्कि हर कोई इसी तरह से खरीदारी करने में चाहता है, लेकिन कहीं से कोई भी एक भी गलत क्लिक हुआ तो फिर लेने के देने पड़ जाया करते हैं। इसीलिए इसके उपयोग के पक्ष में हम इसलिए भी नहीं हैं क्योंकि इससे पहले ऋण लेकर घी पीने की आदत बन जाती है और हम लोग उसके अधीन होकर अपने चैन सुकून को खोते रहते हैं और तनाव भरी जिंदगी जीते हैं, फलस्वरूप तनाव अलग से झेलते हैं। तो ये बात सही है, जब महीने का वो समय आता है किश्त चुकाने का तो वो एक तलवार की तरह आपके सर पर वो लटका रहता है कि किश्त देनी है किश्त देनी है, और उस चक्कर में कई बार आपका सुख चैन नींद खाना पीना सब कुछ हराम हो जाता है। इसीलिए कोई बहुत बड़ी चीज इसके लिए आपको बड़ी किश्त चुकानी पड़ रही है और आपको लगता है कि आपकी आमदनी से बाहर वो चीजें फिर जा रही हैं।
2: लेकिन चंचल ये बताओ, देखो महंगी वस्तुएं हैं जैसे कि घर हो गया, कार है या महंगे कोई इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, अगर उनको लेना हो तो एक साथ थोड़ी ले

0: सकते हैं, कितना आसान हो जाता है किश्तों में चीजों को लेना।
1: लेकिन आपको अपनी आमदनी को देखते हुए अपनी किस्त बनानी होगी ना। आपने कहा घर लेना है, तो घर इतनी बड़ी कहते हैं कि रकम वाली चीज होती है, जिसे एक मुश्त लेना बहुत सारे लोगों के लिए संभव नहीं है। तो आप ये देखिए कि आप जरूरी नहीं है आपको बहुत बड़ा बंगला, बहुत बड़ा घर लेना है। अपनी जरूरत के मुताबिक आप कितने सदस्य हैं घर में या आपकी आमदनी कितनी है, इसको देखते समझते हुए आप अपने बजट में घर लीजिए। और फिर जो किश्त बनानी है वो भी इतनी ही बनाइए। मान लीजिए अगर आप अभी आप एक किराए के घर में रहते हैं, तो जितना किराया अभी आप दे रहे हैं उतना देने की क्योंकि आपको बरसों से आदत है, तो उतनी किश्त आप आसानी से निकाल कर दे पाएंगे। लेकिन उससे दुगना रकम अगर आपके पास में आ गया देने के लिए, तो कहीं ना कहीं वो मुश्किल का सबब बन जाएगा।
0: ये बात तो सही है, लेकिन मुझे ये भी लगता है कि अगर कोई जरूरी चीज है, जैसे आजकल लैपटॉप है या ये कहें कि फ्रिज, ये तो बहुत ज्यादा जरूरी चीज है, तो इनको लेना कितना आसान हो जाता है। हम एक साथ नगद नहीं भी हो हमारे पास, अगर जैसे इन दिनों बहुत गर्मी चल रही है, अब हमें लगता है कि नहीं भाई फ्रिज हो जाए, एक छोटा ही ले लें, नगद नहीं है तो किस्त में तो हम ले ही पाते हैं ना।
1: मैंने फिर वही कहूंगी कि किश्त अगर आपको लेनी है, तो बहुत सारी किश्तें जब आपके समय समय पर जाती हैं ना, तो आप या तो उन्हें कहीं लिख कर रखें, अगर आप भूल जाते हैं उन किश्तों के बारे में लिखना। अब मान लीजिए हर हफ्ते आपकी कोई ना कोई किश्त भरने का समय है, आपने कार भी ले रखी है, आपने बड़ा टीवी भी लिया, लैपटॉप भी लिया और मोबाइल भी ले लिया कोई अच्छा महंगा वाला, तो किश्त अगर आप भूल गए, तो जो वसूली के लिए जब उनका जो रवैया होता है वसूली करने वाली कंपनियों का, वो आपके साथ बहुत सख्त हो सकता है। और फिर आपको ही बुरा लगेगा कि अरे ये चीज हमारी वापस से मांगी जा रही है, या इसके पीछे जो हमें जो भुगतान करना पड़ता है, जुर्माना भी हो सकता है, सजा भी हो सकती है। उन चीजों से अगर बचना है, तो या तो समय पर किश्त देनी है, उतनी आमदनी आपको रखनी, या तो फिर किश्तों से ही बचना है।
0: बिल्कुल, क्योंकि क्या होता ना, लगता क्या है, अरे सिर्फ 2,000 या 3,000 की तो किश्त है, तो वो हम वो जो सिर्फ जो 2,000 या 3,000 दिख रहा है ना महीने का, सिर्फ उतना ही दिखता है, इसके पीछे जुड़ने वाला ब्याज या कहीं कोई ऐसी छिपे हुए कोई शुल्क हो जाते हैं ना, जैसे 0% के नाम पर अब कई बार हो जाते हैं कि फाइल चार्ज हो जाता है, प्रोसेसिंग फीस बाद में लग जाती है, या इंश्योरेंस के नाम पर भी कई बार वो कुछ एक अमाउंट, कुछ अतिरिक्त पैसा उसमें और जोड़ दिया जाता है। बाद में हमें समझ में आता है कि नहीं भाई ये 2 या 3 हजार की नहीं, ये तो जुड़ जुड़ के 4 या 5 हजार तक पे चली
1: जाती है। वो जो 20,000 की चीज आपको खरीदनी थी, वो आपको 20 की जगह हो सकता है कि 30,000 या 35,000 तक की वो पड़ जाए।
0: बिल्कुल,
1: तो इसीलिए आप किश्तों में खरीदने का जो एक कहते ना कि वो लुभावना, जो एक प्रलोभन होता है, उससे बचने का प्रयास कीजिए। और इसके बारे में हमारे साथ ही लिखते हैं कि किश्तों में खरीदारी अच्छी है, चूंकि आपने आपके पास ज्यादा रकम चुकाने की स्थिति नहीं है, तो अक्सर लोग अब किश्तों में खरीदने को अच्छा महसूस करते हैं। हालांकि ये नकद खरीदने से महंगा पड़ता है, लेकिन इस चलन के लिए सबके पास फ्लैट, गाड़ियां, इलेक्ट्रॉनिक आइटम आसानी से उपलब्ध होते जा रहे हैं। मासिक भुगतान का ये आइडिया ज्यादा लोगों को पसंद आता है। हाँ, आप हर महीने ईएमआई दे सकते हैं, तो वही चीजें आप खरीदें, क्योंकि 2 या 3 किश्तों की लेट लतीफी फिर ब्याज बढ़ने की महंगी पड़ जाती है, और लोग अन्य कामों में उलझ जाते हैं। किश्त बाकी होने पर कंपनी वाले आते हैं और गाड़ी उठाकर ले जाते हैं, और पैसा भी डूब जाता है।
0: बिल्कुल, ये सही कहा। देखिए, इन्होंने तो हमें बताया कि किश्तों के फायदे क्या है, नुकसान भी क्या है, लेकिन हमारे एक और साथी वो कहते हैं भाई किश्तों से खरीदारी के कई नुकसान है। जैसे वो कहते हैं कि फिजूल खर्च को बढ़ावा मिल जाएगा, छिपे हुए शुल्क जैसे अभी हमने बात करी वो भी हो सकती है, जीएसटी कहां लग सकता है हमें पता ही नहीं चलता, फिर भविष्य की जो एक आय है उस पर भी बोझ आता है, यानी कि हर महीने की कमाई का एक हिस्सा पहले से ही आप ब्लॉक कर देते हैं, क्योंकि हमें पता है ना कि ये इतनी किश्त तो हमें जानी ही है। फिर कर्ज का जो एक जाल है, एक साथ कई सारे ईएमआई चालू हो जाएंगे, फिर देखिए आपको मानसिक तनाव बढ़ सकता है, डिफॉल्ट का भी खतरा हो जाता है कई बार कि किश्त बाउंस होने पर भारी पेनल्टी लगती है चंचल, और फिर क्रेडिट स्कोर भी खराब हो सकता है।
1: इसी तरह से हमारे एक साथी ने लिखा है कि किश्तों पर खरीदारी करना सही है, जब आपको बहुत ज्यादा वैसा लगता है कि सही नहीं है, क्योंकि इससे आपकी आदतें बिगड़ जाएंगी और आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि आप कितना खर्च कर रहे हैं। इसलिए किश्तों पर खरीदारी तभी करें जब क्रेडिट कार्ड से खरीदारी करनी हो, या कभी कभार ही आप ऐसा करें तो इससे आपको कोई टेंशन भी नहीं होगी, और मेरे हिसाब से तो ये खरीदारी ना ही करें तो अच्छा है, ऐसा हमारे जो साथी जिन्होंने संदेश लिखा है उनका कहना है।
0: अच्छा, एक हमारे साथी ने कहा है कि 10% का नियम आपको, अगर आप ईएमआई के पक्ष में हैं, तो 10% का नियम अपनाना चाहिए। वो क्या है कि आप सभी ईएमआई का कुल योग आपकी मासिक इनकम

0: के 10% से अधिक नहीं होना चाहिए. मतलब जितना आपका है इनकम आपकी, उसका 10% ही सिर्फ ईएमआई में जाना चाहिए. सामान सस्ता लगने के कारण कई बार क्या होता है कि हम गैर जरूरी चीजें भी खरीद लेते हैं. तो इस नियम को अगर आप पालन करते रहेंगे, ध्यान रखेंगे, तो शायद हम बेफिजूल की चीजों से खरीदने से बच सकते हैं.
1: बहुत सही बात कही, लेकिन हम गाना सुनने से बिल्कुल नहीं बचेंगे. सुनवा दें?
0: बिल्कुल सुनवाइए.

0: देखो भाई, ये जो गाने हैं ना, ये कई बार मन को बड़ी शीतलता देते हैं, लेकिन वातावरण में जब हम बाहर निकलते हैं देखते हैं गर्मी बहुत है.
1: सही
0: और
1: बात है.
0: ऐसी गर्मी जो है ना, इसमें पसीने छूट जाते हैं.
1: बात तो बिल्कुल सही कही कि अब कभी कभी ऐसा होता है, हम कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ही इस्तेमाल करते हैं तो ऐसा लगता है भाई कब अपने स्टॉप पर आएंगे और वहां उतरेंगे, क्योंकि इतनी ज्यादा दुर्गंध आने लगती है कि सामने वाला भी शर्मिंदा तो हो रहा होता है, लेकिन
0: जी
1: बाकी सब लोगों के लिए उतनी देर बैठना एक दुभर और कठिन काम हो जाता है.
0: बिल्कुल दीपा. और शरीर से निकलने वाली जो तीखी गंध है, ये शरीर की गंध है. आम भाषा में लोग पसीने की बदबू के रूप में इसे जानते हैं. और बहुत से लोग शरीर की दुर्गंध की समस्या से प्रभावित भी होते हैं. और लोग अधिकतर यही सोचते हैं कि शरीर से बदबू या दुर्गंध पसीना उत्पन्न होने के

0: कारण होती है, हालांकि इस बात में आधी सच्चाई तो है। और हमारे शरीर से बदबू आने का जो कारण है, शरीर की गंध पैदा करने वाले बैक्टीरिया है ना, उनकी मौजूदगी होती है।
1: बिल्कुल, और हमारे शरीर की त्वचा में रहने वाले जो बैक्टीरियाज हैं वो पसीने में जो प्रोटीन और फैट होता है ना उसे खाते हैं। शरीर के बाल वाले और नम हिस्से में लाखों जीव और बैक्टीरिया होते हैं जो पसीने के यौगिकों के बदबूदार को यौगिक उनको यौगिकों को बदबूदार गंध में बदल देते हैं।
0: जी
1: शरीर से दुर्गंध कई कारणों से भी आ सकती है, जैसे खराब खान पान, बढ़ती उम्र, अनुवांशिक कारण भी हो सकते हैं और खराब साफ सफाई, ये भी सब शामिल है। और शरीर की दुर्गंध के आसान उपाय और आसान घरेलू नुस्खों से हम इसे दूर भी कर सकते हैं।
0: तो उसके लिए सबसे अच्छा तो यही है कि जो सल्फर युक्त भोजन होता है वो आप थोड़ा सा कम करिए, क्योंकि उससे भी पसीने में दुर्गंध आती है। जैसे प्याज लहसुन ज्यादा सेवन अगर आप करते हैं, या मांसाहार का सेवन अगर ज्यादा करते हैं, तो उससे भी पसीने में दुर्गंध उत्पन्न होती है। इसके अलावा आप ये हो सकता है कि शरीर को हमेशा स्वच्छ रखिए, गर्मियों में नियमित रूप से 2 बार स्नान करिए, त्वचा पर पसीने को ज्यादा जमा ना होने दीजिए, और सूती कपड़े पहने, ढीले ढाले ढाले आरामदायक कपड़े पहने, शरीर के जो अंतरंग हिस्से हैं उनकी साफ सफाई अच्छे तरह से रखिए, कॉफी या चाय इनका सेवन थोड़ा कम करिए, धूम्रपान का सेवन कम करिए, क्योंकि ये भी शरीर की गंध को बढ़ाता है, और बिना धुले हुए कपड़े कभी ना पहने।
1: बिल्कुल, और यही सारी बातें हमारे एक श्रोता ने भी इसी तरह की बातें लिखी कि लिनन या सूती ढीले कपड़े पहने ताकि त्वचा में हवा आती जाती रहे। नायलॉन या पॉलिस्टर जैसे कपड़े पसीने को सोख नहीं पाते इसलिए बदबू बढ़ाते हैं। और एक बार कपड़े, जैसे अभी आपने बताया कि एक बार कपड़े जो पहन लिए वो बगैर धोए उसे दोबारा ना पहने, और सारी बातें उन्होंने यही बताई हैं कि प्यास से युक्त भोजन का इस्तेमाल कम करें और पर्याप्त मात्रा में पानी पीने से शरीर के टॉक्सिक बाहर जाते हैं, शरीर ठंडा रहता है।
0: इसके अलावा अगर हम आसान घरेलू उपायों की बात करें तो सफेद सिरका है, या टमाटर को मैश करके उसका रस निकाल लें, सफेद जिस सिरके के रस को आपको अपने जहां जो प्रभावी हिस्सा है, जहां दुर्गंध ज्यादा आती है पसीने में, वहां रगड़कर धो लेना है, टमाटर है। इसी तरह से फिटकरी का जो पानी है वो भी पसीने की दुर्गंध को दूर करता है। नीम के पत्ते हैं, उनसे आप स्नान कर सकते हैं, नीम के पत्तों को उबालकर, नींबू का रस निचोड़कर इसे भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर शलजम के जो टुकड़े हैं उनको कुचलकर उसके रस से भी दुर्गंध को दूर कर सकते हैं।
1: बिल्कुल, और एक श्रोता ने लिखा है कि टी ट्री ऑयल का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको पानी में कुछ बूंदे डाल के नहाने से शरीर की दुर्गंध दूर होती है। साथ में उन्होंने कहा है नींबू का रस भी आप नहाने के पानी में थोड़ा सा रस मिला दीजिए, और नींबू को आप रगड़ भी सकते हैं शरीर पे, आप अंडर आर्म्स में, ताकि जो जितने भी एसिडिक बैक्टीरिया मौजूद हैं वो सब खत्म हो जाएंगे।
0: नींबू को इस्तेमाल करने के बाद उसका बचा हुआ छिलका है उसका भी उपयोग किया जा सकता है। और अब चलते चलते एक गाना सुन लें।
1: चलिए।

0: कार्यक्रम का समय हो चला है पूरा, लेते हैं सखी सहेलियों से इजाजत। सभी को चंचल वर्मा
1: और दीपा माहेश्वरी का
0: नमस्कार।

0: श्रोताओं नमस्कार, आपके चहेते फोन इन प्रोग्राम हेलो फरमाइश के साथ हाजिर हूँ मैं शिफाली कपूर। साथियों, जिंदगी की भागदौड़ में कुछ पल ऐसे भी होने चाहिए जो सिर्फ हमारे दिल के लिए हों, और उन्हीं खूबसूरत पलों को सजाने के लिए हम लेकर आए हैं आपका पसंदीदा फोन इन प्रोग्राम हेलो फरमाइश, जहां फोन के जरिए आपसे होगी बातचीत और साथ होंगे आपके पसंदीदा गाने। साथियों, कुछ गीत मुस्कान बन जाते हैं, कुछ धुने यादों का कारवां ले आती हैं, और कुछ फरमाइशें दिल से सीधे दिल तक पहुंच जाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बातों और गीतों का सिलसिला। लेते हैं पहला कॉल। सुन रहे हैं ना, फोन की घंटी बज रही है, कहीं ये आपका ही कॉल तो नहीं? हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार।
0: नमस्ते जी। नमस्ते, कौन बोल रहा है?
1: मैं खुश नसीब हूँ, मुझको किसी का प्यार मिला।
0: हाँ, क्या बात है, अपना नाम तो बताएं।
1: प्यार का ही एक पर्यायवाची शब्द है प्रेम। मैं प्रेम कुमार गौतम बोल रहा हूँ।
0: अरे वाह, क्या बात है।
1: मेरा नाम ही है मोहब्बत, प्यार, प्रेम।
0: वैसे कहते हैं ना कि प्यार बांटते चलो, प्यार जितना बांटेंगे उतना ही बढ़ता है।

0: जी, तो मेरे आगे दो शब्द लगे हैं, तो प्रेम, दूसरा गौतम, और गौतम बुद्ध, दोनों ने ही प्रेम का संदेश दिया।
1: क्या बात है, तो आज आप क्या संदेश दे रहे हैं और किस शहर से बात कर रहे हैं, जरा तो ये भी बता दें।
0: कि मैं झांसी से बोल रहा हूँ।
1: अच्छा जी।
0: पूर्व लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी।
1: बिल्कुल।
0: और गर्व करते हैं।
1: बिल्कुल गर्व है।
0: आपको भी गर्व होगा।
1: बिल्कुल गर्व है जी, बिल्कुल गर्व है। अपने बारे में भी कुछ बताएं प्रेम जी, आप क्या करते हैं?
0: मैं शब्दों की साधना करता हूँ, मैं राइटर हूँ, लिखता हूँ।
1: क्या बात है।
0: कविता से मेरे आत्मिक जुड़ाव है, मैं मूल रूप से कविता का विद्यार्थी हूँ।
1: अच्छा, कैसी कविताएं लिखते हैं आप?
0: छंद में तो मैंने बहुत कम लिखा, लेकिन हम मुक्त छंद की कविताएं लिखते हैं। हम मानवतावादी कविताएं हैं, जो मुक्त छंद की हैं, हम उसको लिखते हैं।
1: अच्छा, तो चार लाइनें आप क्या हमारे श्रोताओं के लिए यहाँ पर सुना सकते हैं?
0: जी जी, जरूर सुनाऊंगा। कविता का शीर्षक है दो मिनट का मौन है। आओ मित्र, दो मिनट का मौन रखें। आओ मित्र, दो मिनट का मौन रखें। वो देखो कुएं के ठीक बगल से रखा गमला, वो देखो कुएं के ठीक बगल से रखा गमला, प्यास से दम तोड़ चुका है कल उसका नौजवान पौधा, प्यास से दम तोड़ चुका है कल उसका नौजवान पौधा। आओ मित्र, दो मिनट का मौन रखें।
1: क्या बात है, क्या बात है भाई, आपकी तो इस कविता ने निशब्द कर दिया। तारीफ में क्या बोलूं मैं, और बहुत खूब आपकी कलम यूं ही चलती रहे और दिन दूनी रात चौगनी आप तरक्की करें। प्रेम जी, तो बताएं आज के इस कार्यक्रम में आपको कौन सा गीत आपकी पसंद का सुनवा दिया जाए?
0: एक बहुत फिलोसफी का गीत है, तीसरी कसम का, और बहुत भोले भाले राज कपूर पर फिल्माया गया, मुकेश ने गाया, शैलेंद्र ने लिखा। सजन से झूठ मत बोलो खुदा के पास जाना, आप इजाजत दे तो मैं गुनगुनाऊं।
1: चलिए गुनगुना दीजिए जरा।
0: सजन से झूठ मत बोलो खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। सजन से झूठ मत बोलो खुदा के पास जाना।

0: हेलो फरमाइश
1: जी, अस्सलाम वालेकुम।
0: हाँ जी नमस्कार, कौन बोल रहे हैं, अपना नाम तो बताएं।
1: जी मैं तकिया मरिया हूँ, जिला जौनपुर उत्तर प्रदेश से। मैम मैं जमील अहमद शाह बोल रहा हूँ।
0: जमील भाई नमस्कार।
1: जी जी नमस्कार मैम, नमस्कार। और मैम क्या हाल चाल है?
0: बस सब मेहरबानी है ऊपर वाले की, और आप सभी की शुभकामनाएं हैं, वो विविध भारती परिवार के साथ तो हमेशा है ही, तो हम लोग भी बिल्कुल अच्छे हैं।
1: बहुत आज खुशकिस्मती है मेरी कि आज मुझसे शिफाली कपूर जी से मेरी बात हो रही है।
0: जमील भाई खुशकिस्मती तो हमारी है जो आप सभी श्रोताओं से बात करने का मौका मिला हमें। जी
1: 2019 में मेरा कॉल लगा था, अब जाके मेरा कॉल लगा है मैम।
0: अरे वाह, बड़ा लंबा अरसा हो गया। अच्छा ये बताएं जमील भाई कि इतना लंबा अरसा 2019 से आज है 2026, तो इतना जो दरमियान जो वक्त रहा, तो उसमें आपने ट्राई किया होगा फोन बीच में, अभी जब शुरू हुआ है ये हेलो फरमाइश, तो निराश तो नहीं हुए ना?
1: निराशा हुआ है मैम, बहुत अच्छा। दिल से मैं ट्राई कर रहा था, आज जाके कामयाबी मिली है तो बहुत खुशी मिल रही है मैम।
0: आपकी खुशी हम महसूस कर सकते हैं, क्योंकि हम खुद को आपकी जगह रखकर महसूस कर सकती हूँ भाई कि कितनी खुशी होती है। तो बताएं जरा जौनपुर के हालचाल बताएं, अपने हालचाल बताएं।
1: जी जौनपुर का हाल तो मैम बहुत गर्मी पड़ने लगी है मैम, और लगभग इस वक्त 37 डिग्री हम लोगों के यहाँ टेम्परेचर है मैम।
0: मुंबई भी बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है यहाँ पर भी।
1: जी जी, और गाने पे आ जाते हैं मैम।
0: आ जाइए गाने पे, बिल्कुल अपनी पसंद बताएं।
1: टीम का नाम है महबूब की मेहदी और आवाज मोहम्मद रफी साहब की, और इसको मैम थोड़ा सा गुनगुना देना चाहता हूँ।
0: बिल्कुल गुनगुनाइए।
1: ये जो चिलमन है दुश्मन है हमारी, ओ ये जो चिलमन है दुश्मन।

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार मैम।
0: नमस्ते जी, नमस्ते। विविध भारती के कार्यक्रम हेलो फरमाइश में किसने फोन किया, कहाँ से फोन किया?
1: जी नमस्कार मैम, मैं नॉर्थ ईस्ट साउथ त्रिपुरा से फोन किया है। मैं विश्वजीत पाल बोल रहा हूँ।
0: विश्वजीत जी, अपने बारे में तो कुछ बताइए।
1: मैं ब्लाइंड हूँ तो इसीलिए रेडियो कार्यक्रम सुनता हूँ, बहुत अच्छा लगता है।
0: कौन सा कार्यक्रम सबसे ज्यादा पसंद है विश्वजीत जी?
1: हेलो फरमाइश, छाया गीत और बहुत ही प्रोग्राम आपका है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है।
0: तो आप ये बताइए कि आप मोबाइल ऐप पे सुनते हैं या ट्रांजिस्टर रखा हुआ है आपने?
1: नहीं नहीं, ट्रांजिस्टर रखा हुआ है तो ट्रांजिस्टर में बहुत ही अच्छा से सुन लेता हूँ, आवाज का बहुत अच्छा लगता है।
0: अच्छा ये बताएं कि आप करते क्या हैं?
1: मैं ब्लाइंड आदमी हूँ, खेती बाड़ी में काम करता हूँ। मेरा घर के आसपास से थोड़ा सा खेती बाड़ी में काम कर लेता हूँ।
0: अच्छा अच्छा।
1: मेरा माँ है, पापा है तो उसके साथ जाता हूँ खेत में, तो थोड़ा सा देखभाल करती है तो इसीलिए थोड़ा सा खेती बाड़ी में कुछ कुछ काम मैंने कर लेता हूँ।
0: और गीत संगीत से लगाव है आपका?
1: हाँ, तो गीत तो जब भी कार्यक्रम सुनता हूँ तो बहुत अच्छा लगता है। हमारा इधर मौसम बहुत बारिश हो रही है, ज्यादा तो गर्मी थी तो इसीलिए बारिश हुआ है तो बहुत अच्छा है। मैं एक बात बताना चाहूँगा, तो हमारा इधर एक मंदिर है, विख्यात तो मंदिर है, माँ त्रिपुरेश्वरी मंदिर।
0: अच्छा।
1: तो यह से बहुत ही लोग आती है वो घूमने के लिए, बाहर से डिगी है और डिगी के आसपास से बहुत ही सुनसान है, बहुत अच्छा लगती है वो डिगी के बारे में।
0: तो वहाँ पर आने का कोई खास मौसम होता है या किसी खास महीने में आया जाता है घूमने के लिए, या बारह महीने में किसी भी समय आ सकते हैं?
1: किसी भी समय में आप, कोई दिक्कत नहीं है, तो हमारा इधर तो हर मौसम में बहुत अच्छा है।
0: अच्छा ये बताएं कि आज आपने हेलो फरमाइश कार्यक्रम में फोन किया है तो कोई गाना भी तो चुना होगा अपनी पसंद का?
1: जी जी, मेरे को गाना सुना दीजिए, साजन चले ससुराल मूवी से, तुम तो धोखेबाज हो वादा करके वादा निभाना चाहती है। हमारे इधर बांग्ला चलते है, बंगाली भाषा
0: जी,
1: तो बंगाली लोग रहती है, तो कार्यक्रम हिंदी में होती है तो बहुत अच्छा, लोग जानती है, हिंदी भाषा सीख जाती है
0: जी,
1: तो बहुत अच्छा लगती है आपका कार्यक्रम।
0: और विश्वजीत जी, आपने जितने मेहनत से हिंदी बोली है बहुत अच्छा लगा। और आपने जो ये बात कही कि आप विविध भारती सुनते हैं, हिंदी में कार्यक्रम आते हैं, उसके माध्यम से आप हिंदी सीख लेते हैं, तो ये जानकर भी बहुत अच्छा लगा। और पूरी करते हैं आपकी पसंद, सुनिए ये गीत।

0: हेलो फरमाइश
1: बहन जी, नमस्कार।
0: नमस्ते जी, आप बताएं कौन बोल रहे हैं, कहां से बोल रहे हैं
1: जी? मैं सुरेश कुमार सैनी, ग्राम पोस्ट अजनर, जिला महोबा, उत्तर प्रदेश, बुंदेलखंड से बात कर रहा हूं। बहन जी
0: बताएं जरा अपने बारे में।
1: एकदम अच्छे हैं और हम खेती करते हैं और साथ में फूल वाला काम डेकोरेशन का।
0: अच्छा, और वैसे खेत में आजकल क्या लगा हुआ है?
1: इस समय खेत में कुछ नहीं है, खेत तो खाली है। इस समय बस जुताई हो चुकी है, अब बारिश हो जाए और उसके बाद फिर मूंगफली की बुवाई होगी।
0: अरे वाह, अभी तो चटक गर्मी होगी।
1: जी जी,
0: तो खेत वेत में जाते हैं अभी कि नहीं जाते हैं?
1: जी जाते हैं, अभी क्या है ना, कुछ कटहल के और आम के पेड़ लगे हुए हैं।
0: अच्छा,
1: तो जाते रहते हैं, उसमें फल भी लगे हुए हैं।
0: कौन से फल लगाए हैं?
1: अभी आम है और कटहल है।
0: आम कौन सा है, आम की कौन सी जात?
1: दशहरी है, दशहरी।
0: क्या बात है भाई, अपने उत्तर प्रदेश की तरफ का जो दशहरी होता है उसका तो स्वाद ही अलग होता है।
1: बिल्कुल, सबसे नंबर एक का स्वाद होता है उसके।
0: और बताएं आपके जो शहर है वहाँ के क्या हालचाल है और क्या चीज प्रसिद्ध है? अगर हम आते हैं महोबा तो वहाँ पे क्या देखने को मिलेगा?
1: हमारे यहाँ तो देखने के लिए जैसे काफी मंदिर भी है, जैसे झांसी हमारे पास है, झांसी रानी लक्ष्मीबाई का किला है और महोबा भी किला बने हुए हैं राजाओं के, और हमारे बुंदेलखंड में जो चरखारी है वहाँ पे कई तालाब है और एक दूसरे से सभी तालाब ज्वाइंट है।
0: अच्छा,
1: वो भी बहुत जी देखने लायक है।
0: क्या बात है, तो यानी हमें एक बार महोबा आना ही पड़ेगा।
1: जी बिल्कुल आना पड़ेगा आपको।
0: लेकिन ऐसे सीजन में आना पड़ेगा जब हमें दशहरी आम मिले।
1: अभी 15-20 दिन बाद बस पकने ही वाले हैं।
0: अरे वाह, क्या बात है, खूब आनंद लीजिए भाई, तो बहुत ही अच्छा फल है और इस दो आमों का राजा कहलाता है ये। बहरहाल चलिए, ये बता दीजिए कि आज आपका फोन लगा हेलो फरमाइश में, तो कौन सी पसंद है आपकी, गाना बताएं?
1: जी मुझे सुनना है, फिल्म का नाम है संगीत और गीत के बोल है सुनो हसीना काजल वाली।
0: तो चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गाना। अरे

0: हेलो फरमाइश।
1: शेफाली कपूर जी को मेरा प्यार भरा नमस्कार आदाब। मैं रेडियो दोस्त परवेज अहमद बनारस से आपसे मुखातिब हूँ मैम।
0: भाई बहुत बहुत नमस्कार और स्वागत।
1: और मैं 2003 से रेडियो विविध भारती का सुनने वाला हूँ। मैं घाट कोपर में रहता था तब से सुनता हूँ, लेकिन अभी आज मेरी बात हो रही, मैं बनारस से बात कर रहा हूँ आपसे।
0: तो ये बताएं कि मुंबई के घाट कोपर से बनारस कैसे पहुँच गए?
1: जी मैं वहाँ 5 साल हेयर कटिंग किया हूँ मैम, उसके बाद मैं फिर बनारस शिफ्ट हो गया हूँ। बनारस में ही यहाँ एक दुर्गा कुंड एरिया है, अच्छी घाट के बगल में, वहीं मैं रहता हूँ मैम।
0: अच्छा, तो वहाँ क्या करते हैं?
1: यही अपना ही बिजनेस है, हेयर कटिंग का ही काम करता हूँ मैम।
0: अरे वाह क्या बात है भाई, अपना सैलून है परवेज भाई का वाराणसी में?
1: जी जी 20 साल से ऊपर हो गया होगा, मेरी फोन आज लगी है।
0: क्या बात है भाई, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका, क्योंकि ये आप सभी का अपना कार्यक्रम है हेलो फरमाइश।
1: रेडियो सुन सुन के मैं जो इतना जो भी बचपन से फिर रहा हूँ और बहुत अच्छा लगता है आप लोग की आवाज।
0: जो इस समय आपकी आवाज है और आपके अंदाज है ना, वो बता रहे हैं कि आप खुशी से लबरेज हैं इस समय विविध भारती के साथ ऐसे ही जुड़े रहें। और जरा ये बताएं कि बनारस की गलियों में वो जो आलू की सब्जी और कचौड़ी मिलती है उसका आनंद ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं?
1: जी जी मैम, फेमस है उस गली का नाम है कचौड़ी गली मैम, बहुत फेमस है वो रहता है। उस गली की खूबसूरती है कि अगर आप गली के अंदर जाएंगे इतनी अच्छी खुशबू आती, हींग की खुशबू आती है, घी या देसी घी की खुशबू आती है कि एकदम खाने का मन तो हो ही जाता कोई भी रहे, यहाँ तक विदेशी पर्यटक भी तो स्वाद चखते हैं मैम। और एक नया घाट बना है हमारे यहाँ नमो घाट मैम, वो बहुत फेमस घाट हुआ है।
0: गंगा आरती तो बहुत ही बढ़िया होता है।
1: गंगा आरती मैम आप दशा समीप घाट पे देखिएगा, बहुत खूबसूरती होता है। और हमारे अस्सी घाट पे जहाँ हम रहते हैं वहाँ भी अब गंगा आरती होने लगी है मैम, बहुत ही अच्छी होती है।
0: जी जी, और उसका जो अक्स गंगा जी में पड़ता है वो तो अद्भुत होता है। चले परवेज भाई, आपकी इस खुशी को हम दुगना कर देते हैं। अब बताएं आप कि आपकी पसंद का गाना कौन सा है?
1: जी मैम, फिल्म रहेगी लव इज शिमला मैम, गाने का बोल है अलीफ जवर आल अली जवर आल अली जवर ए अलीफ तो, ये मोहम्मद रफी जी की मीठी आवाज में है मैम गाना ये।
0: अच्छा, सुने अपनी पसंद का ये गाना।
2: अलीफ जबरा अलीफ जरे अलीफ पेशो अजीब।

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार शिफाली दीदी।
0: नमस्ते जी, नमस्ते। कौन बात कर रहा है हमसे?
1: जी मैं श्रीनगर से बात कर रहा हूँ, साहिल डार।
0: ओ साहिल भाई, क्या हालचाल हैं?
1: ठीक हो आप? सुनाइए दीदी, आप ठीक हो?
0: बिल्कुल ठीक हैं। आप सबकी शुभकामनाएं साथ में हैं। और अपने बारे में बताएं साहिल भाई।
1: जी मैं कश्मीर आर्ट है ना, उसी के साथ करता हूँ दीदी।
0: शॉल वगैरह बनाते हैं?
1: जी बिल्कुल बिल्कुल।
0: अच्छा, तो ये सारा हाथ का काम होता होगा, हाथ से ही करते होंगे आप?
1: जी बिल्कुल।
0: तो आपकी अपनी शॉप है या आप कहीं जाते हैं या घर से करते हैं ये काम, कैसे करते हैं?
1: मैं घर से ही करता हूँ दीदी ये काम, बनाते हैं तो फिर उसको खुद ही बेचते हैं।
0: अच्छा, कब से कर रहे हैं ये काम?
1: जी बिल्कुल, लगभग 2012 से।
0: तो काफी लंबे समय से जुड़े होंगे आप विविध भारती के साथ भी?
1: जी विविध भारती के साथ तो मैं जुड़ा हूँ, और आपको मैं मुबारकबाद भी देता हूँ कि आपने 2 महीने से प्रोग्राम शुरू किया है मन चाहे गीत।
0: जी जी जी जी,
1: और आपने कुछ प्रोग्रामों में चेंजेस भी लाए, तो बहुत अच्छी लग रही है हमें वो आपकी चेंजेस।
0: अच्छा, तो आपको ये जो बदलाव हुए हैं ये पसंद आ रहे हैं?
1: जी बिल्कुल।
0: और वैसे क्या आप हमारे सभी कार्यक्रम सुनते हैं या कुछ खास ऐसे कार्यक्रम हैं जिन्हें आप बड़ी दिलचस्पी के साथ सुनते हैं?
1: प्रोग्राम तो मैं सभी सुनता हूँ दीदी, आज के फनकार आता है, सुरीला सफर आता है, और छाया गीत, ये अच्छे अच्छे प्रोग्राम जो आपके हमें मिलते हैं पिटारा, वो हमें सभी सुनने को मिलते हैं।
0: विविध भारती से जो कार्यक्रम प्रसारित होते हैं उसमें आपको सबसे ज्यादा पसंद कौन सा है?
1: प्रोग्राम तो सभी अच्छे हैं।
0: और अब ये बताएं जरा कि आप श्रीनगर के इस समय हाल कैसे हैं, मौसम कैसा है?
1: तो इस वक्त मौसम बहुत ही अच्छा है, गर्मियां शुरू हो चुकी है, तो फिलहाल जो कुछ दिनों पहले यहाँ का जो तापमान था वो 31 भी हो गया।
0: अच्छा, तो आज साहिल भाई कौन सा गाना सुनवा दिया जाए आपको?
1: फिल्म का नाम है डोली, उसी का एक नगमा है आशा जी की आवाज में, आज मैं देखूं जिधर जिधर ना जाने क्यों उधर उधर।
0: भाई साहिल भाई, ये तो आपने मेरी पसंद चुरा ली। तो चलिए अपनी इस प्यारी सी बातचीत को यहीं रोक देते हैं और अब सुनते हैं आपकी पसंद का, और हमारे तमाम श्रोता होंगे उनको भी ये गाना पसंद होगा, तो हम सब सुनते हैं ये गाना।

0: हेलो फरमाइश
1: जी नमस्ते।
0: हाँ जी नमस्ते, आप कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं, जरा बताएं तो।
1: मैं ग्राम बछोड़ा तहसील नागदा जिला उज्जैन से प्रेम सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ।
0: प्रेम भाई क्या हाल चाल है?
1: मैं बहुत ही अच्छा हूँ। मैं सबसे बड़ा फैन आकाशवाणी विविध भारती का हूँ और उसमें से सबसे अच्छे मुझे आपके कार्यक्रम लगते हैं। हेलो सहेली में आप आते हो, सखी सहेली में आप आते हो, हेलो फरमाइश में आप आते हो, तो चार चांद लग जाते हैं।
0: चलिए भाई, आपको विविध भारती के कार्यक्रम अच्छे लगते हैं, आप विविध भारती से जुड़े हैं, ये बहुत अच्छी बात है।
1: मेरी आपसे बात हो रही है ना, तो यूँ समझिए कि मेरी धड़कन एकदम से तेज हो चुकी है।
0: भाई ऐसा क्यों?
1: मुझे बहुत खुशी हो रही है क्योंकि विविध भारती से कॉल लगना है ना, ऐसा होता है कि आपको मतलब सारी खुशियाँ मिल गई एक साथ में।
0: हम तो अपने सभी श्रोताओं के लिए हमेशा यही कामना करते हैं कि वो हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें, जिंदगी में तरक्की करते रहें। तो अब अपने बारे में बताएं प्रेम भाई, क्या करते हैं वहाँ पे?
1: मैं खेती किसानी का काम करता हूँ और मोबाइल ऐप से आकाशवाणी विविध भारती और जितने भी प्रोग्राम आते हैं ना उनको सुनता हूँ मोबाइल ऐप से। और अगर हम कहीं बाहर भी जाए ना फिर भी हमें मोबाइल ऐप से आपके कार्यक्रम आसानी से सुनने को मिल जाते हैं। मैं बताऊँ आपको, विविध भारती के जो कार्यक्रम आते हैं ना उसमें से मुझे हेलो फरमाइश और हेलो सहेली, इसके अलावा पिटारा के तहत में जो आता है तेले सेहतनामा आता था, अभी सेली लाइट के सितारे शुरू किए हैं, और इस तरह के जो कार्यक्रम आते हैं ना बड़े अच्छे लगते हैं। और जब रात में हवा मेल आता है ना 8 बजे, उसका तो हम सबसे बड़े फ्रेंड हैं।
0: अरे वाह क्या बात है भाई, क्या बात है। आपने तो सभी कार्यक्रमों के नाम ले दिए क्योंकि सभी कार्यक्रम आपको पसंद हैं, यानी आप तो सुबह से शाम सुनते ही सुनते हैं विविध भारती। जरा ये बताइए कि इस समय जो आप हमें कॉल कर रहे हैं खेत से कर रहे हैं क्या?
1: इस समय तो हम घर पे ही हैं, अभी गर्मी का टाइम है ना, तो खेत में अभी काम कुछ भी नहीं बचा है, बस फसल निकाल के घर ले आए हैं। खेत को कुछ समय के लिए खाली छोड़ दिया है, तब बरसात

0: हो गया तो सोयाबीन की फसल लगाई जाएगी जुलाई के यहाँ पे।
1: अच्छा तो जरा ये बताएंगे आज कौन सा गाना सुनेंगे?
0: फिल्म का नाम है अर्पण और गाने के बोले लिखने वाले ने लिख डाला मिलन के साथ जुदाई। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर की आवाज में ये गाना काफी अच्छा लगता है।
1: जी गाना है ही अच्छा, इसका गीत संगीत दोनों बहुत अच्छा है। सुनिए अब अपनी पसंद का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: मैं बडनेरा जिला अमरावती विदर्भ महाराष्ट्र से हिम्मत राज श्रृंगारे बात कर रहा दीदी, आपका पुराना श्रोता।
0: हिम्मत भाई नमस्कार।
1: नमस्कार दीदी, कैसे हैं आप?
0: बिल्कुल अच्छे हैं। आप अपने बताएं, क्या हालचाल है आपके?
1: मैं अच्छा दीदी।
0: क्या चल रहा है आजकल?
1: आजकल कुछ नहीं दीदी, काम पर था, काम पर से अभी फोन लगाया मैंने।
0: अच्छा, तो आप बताएं वहाँ पर क्या काम करते हैं अमरावती में?
1: मैं मजदूरी का काम करता हूँ दीदी।
0: अच्छा, तो इस समय छुट्टी लेकर आए हैं फोन लगाने के लिए?
1: हाँ दीदी।
0: चलिए बहुत अच्छी बात है, आपने छुट्टी ली तो वो छुट्टी जो है हो गया कि आपका काम बन गया उस छुट्टी में।
1: आपकी आवाज सुनता हूँ तो बहुत अच्छा लगता है कि हमारे श्रीपाल दीदी हमारे आमने सामने बैठी है रेडियो के।
0: देखिए रेडियो ऐसा माध्यम है हिम्मत भाई कि ऐसा लगता है कि हम सब आमने सामने बैठे हैं, बातचीत कर रहे हैं। और बताएं अमरावती के क्या हालचाल है? खूब गर्मी पड़ रही है
1: अमरावती विदर्भ में, बहुत गर्मी दीदी, इधर पारा बहुत गर्म है दीदी, 70 डिग्री सेल्सियस है, किसी 47 है।
0: तो ये बताइए कि गर्मी से बचाव के लिए क्या कर रहे हैं?
1: मैं तो दीदी छतरी लेके जाता हूँ साइड पर, कान को बांधता हूँ कपड़े और ठंडा पानी पीता हूँ और समय पर भोजन करता हूँ दीदी, और शाम में 5 बजे घर पे आता हूँ।
0: आप जरा बताएं आज कौन सा गाना सुनवा दें आपको?
1: पूरी जब जब जुल्फे तेरी और आशा भोसले यानी मोहम्मद रफी साहब की आवाज में गाना है दीदी।
0: तो चलिए अब पहुंच रहा है अमरावती में आपकी पसंद का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: आंखों में रहने वालों को याद नहीं करते, दिल में रहने वालों की बात नहीं करते, आप तो हमारी रूह में बसे हैं इसलिए मुलाकात की फरियाद नहीं करते।
0: अरे वाह भाई वाह, ये कौन शायर आए हैं भाई, जरा बताएं अपना नाम तो बताएं।
1: उदयपुर राजस्थान जिलों की नगरी से दिलीप पाहुजा बात कर रहा हूँ मैडम।
0: दिलीप पाहुजा जी ने उदयपुर से झीलों की नगरी से हमें फोन किया है। गर्मी के क्या हाल चाल है उदयपुर में?
1: गर्मी तो 40-42 के आसपास चल रही है।
0: ऐसे में आपका कामकाज कैसा चल रहा है?
1: अभी थोड़ा ठंडा है।
0: गर्मी के मौसम में कामकाज बहुत इफेक्ट करता होगा क्योंकि इतनी तेज गर्मी पड़ती है कि लोग घर से बाहर नहीं निकलते हैं।
1: जी बिल्कुल।
0: तो आपका किस चीज का काम है?
1: टेलरिंग व्यवसाय है मतलब, सिलाई का।
0: अपनी शॉप है?
1: जमा कोट वगैरह। जी भैया की शॉप है।
0: अरे वाह क्या बात है। आप जेंट्स टेलर है और या लेडीज टेलर है या दोनों? लेडीज जेंट्स।
1: जेंट्स।
0: अच्छा,
1: जेंट्स ओनली।
0: तो गर्मी का मौसम है तो कामकाज पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है आपका? आपको जल्दी जल्दी देना पड़ता होगा तो उसके लिए कारीगर ज्यादा लगाने पड़ते होंगे।
1: कारीगर तो ज्यादा ही है मैडम, मालिक की कृपा से, और उनको टाइम पे भी मिल जाते हैं कपड़े।
0: क्या बात
1: लेकिन
0: है।
1: इस बार थोड़ी सी शादियां कम है।
0: अच्छा,
1: इस हिसाब से थोड़ा फर्क है।
0: अच्छा,
1: पर्यटकों की तो भारी धूम मची हुई है अभिषान के अंदर।
0: हम इसी पॉइंट पर आने वाले थे, वही बात आपने छेड़ दी कि भाई उदयपुर और राजस्थान में पर्यटकों के क्या हाल चाल है, भाई इतनी गर्मी में भी पर्यटक हैं या नहीं है?
1: जी बिल्कुल है मैडम, 12 ही महीने उदयपुर के अंदर पर्यटक मिलेंगे ही मिलेंगे।
0: जी जी जी,
1: चाहे गर्मी कितनी भी हो।
0: तो ये बताएं कि उदयपुर में और चीजें ऐसी क्या हैं जो देखी जा सकती हैं झीलों के अलावा?
1: झीलों के अलावा तो एक मानसून पैलेस है और वो भी अच्छा है। थोड़ा सा ही आगे कुंभलगढ़ है और 40-45 किलोमीटर की दूरी पर नासिकद्वारा श्रीनाथ जी का बहुत शानदार मंदिर है।
0: जी जी,
1: उसके बीच में एकलिंगपुरा जी का, एकलिंगपुर मतलब एकलिंगगढ़ के नाम से महादेव जी का मंदिर है, और अभी पिछले 3-4

0: परसों में नया एक वैष्णो देवी माता का मंदिर है उदयपुर में ही, हमारे सिंधी समाज के द्वारा ही बनाया गया है, निर्मित किया गया है।
1: अच्छा,
0: सेम टू सेम जैसा वैष्णो देवी में बना हुआ है, ज्योत भी वहीं वैष्णो देवी माता जी से ही आई थी और लंगर 12 ही महीने चालू रहता है।
1: अच्छा, अब ये बताएं कि हमें इंतजार है इस बात का कि आप बताएं अपने पसंद का फिल्मी गाना आज के कार्यक्रम के लिए।
0: एक रफी साहब का गाना याद आ रहा है मुझे, हवस मूवी से, तेरी गलियों में न रखेंगे कदम।

0: हेलो फरमाइश
1: शेफाली बहन को नमस्कार।
0: बहुत बहुत नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत। और
1: आज हमारे मन में इच्छा थी कि शेफाली बहन से बात करेंगे, तो आज पूरी हो गई।
0: क्या बात है, तो हम जाने कौन भाई बात कर रहे हैं, कहाँ से?
1: जी मैं आपका बड़ा भाई उदयलाल टेलर उदयपुर से बात कर रहा हूँ।
0: अरे वाह, जरा हालचाल तो बताएं अपने।
1: हालचाल हमारा मस्त है, गर्मी 44 डिग्री चल रही है और राजस्थान में गर्मी बहुत ही होती है।
0: जी राजस्थान की गर्मी तो फेमस है। उदय भाई वहाँ पर क्या काम काज है?
1: हमारा टेलरिंग का काम है, जेंट्स कपड़ों की सिलाई करते हैं।
0: क्या बात है भाई।
1: मैं 55 साल से आकाशवाणी से जुड़ा हूँ और अभी मेरी उम्र है 74 साल।
0: क्या बात है, 55 साल से आप विविध भारती के साथ जुड़े हुए हैं।
1: जी
0: आपने इन 55 सालों में बहुत बदलाव देखे हैं विविध भारती में।
1: मैंने सबसे पहले तो वाल वाले रेडियो सुने थे, उसके बाद

0: बाद में चार चार सेल वाले ट्रांजिस्टर आए थे, फिर दो सेल वाले आए थे
1: जी,
0: और अभी तो मोबाइल ऐप पर सुन रहे हैं।
1: सबसे
0: परिवर्तन हुआ है।
1: अच्छा ये बताएं कि सबसे ज्यादा आनंद कहाँ सुनने में, कैसे सुनने में आया? मोबाइल पर अब आप ज्यादा अपने को सहज महसूस कर पाते हैं या पहले जमाने में जैसे आप सुनते थे उसमें अपने को सहज महसूस करते थे?
0: नहीं, रेडियो पर जो आनंद आता था वो मोबाइल में नहीं आता है।
1: ये बात बिल्कुल आपने सही कही है।
0: समय होता उसके पांच मिनट पहले से हम वो ट्यून कोशिश करते।
1: सही कह रहे हैं,
0: ट्यून बड़ी अच्छी लगती थी।
1: जी जी जी, तो अभी भी रेडियो अपने पास रखा है या नहीं रखा है?
0: नहीं रखा है, लेकिन थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, बंद है।
1: हाँ, तो ये पुरानी यादें हैं जो हमेशा साथ रहती हैं।
0: जी जी।
1: तो अब ये बताएं, दिल खुश करने वाला वो कौन सा गाना है जो आपने हेलो फरमाइश के लिए आज पसंद किया है?
0: फिल्म वो कौन थी का काल जी गाना है, लता जी की आवाज में, राजा मेहंदी अली खान साहब
1: जी
0: के शब्द है
1: जी,
0: और मदन मोहन जी की मधुर धुन है
1: जी,
0: लग जा गले
1: जी,
0: हसी रात फिर हो न हो।
1: काल जयी गाना है, इसकी तो कोई बराबरी ही नहीं। अद्भुत गायकी, अद्भुत संगीत और कमाल के बोल हैं इसके। अब सुनिए अपनी पसंद का ये गाना।

तो साथियों, घड़ी की सुइयों ने कर दिया इशारा कि आज के लिए बस इतना ही। आपकी बातचीत और आपकी फरमाइशें हमें ये एहसास दिलाती हैं कि हम सिर्फ गाने नहीं सुन रहे हैं, दिलों को जोड़ रहे हैं। साथियों, जिंदगी चाहे जितनी तेज क्यों न हो जाए, एक अच्छा गीत हमें हमेशा कुछ पल ठहरना सिखा देता है। बहरहाल, आपको बता दें कि फोन पर हमारी अगली मुलाकात होगी अगले सप्ताह सोमवार को सुबह 11 बजे से विविध भारती के स्टूडियो नंबर 1 से। हम रिकॉर्ड करेंगे फोन पर आपसे की गई बातचीत। तो हमारे टेलीफोन नंबर्स

0: फटाफट नोट कर लीजिए, हमारे नंबर्स हैं 4002466 2, नंबर एक बार फिर से 4002466 2, मुंबई का एसटीडी कोड है 022022। चलिए अब हमारा दूसरा नंबर नोट कर लीजिए 2867028828 2867028888। और हाँ, उन श्रोताओं से विनम्र निवेदन, जिन श्रोताओं के कॉल आज के कार्यक्रम में शामिल हुए, वे कृपया 2 माह के बाद ही हमें कॉल करें, ताकि अन्य श्रोताओं को भी उनके इस पसंदीदा कार्यक्रम से जुड़ने का अवसर मिल सके। चलते चलते आपको ये भी बता दें, आज के कार्यक्रम में रिकॉर्डिंग इंजीनियर HR पाटले, संपादन सहयोग सुशीला वेंगुरलेकर का, विविध भारती की ओर से इस सुंदर सजीले कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी। साथियों, रिश्ते सिर्फ मुलाकातों से नहीं, एहसासों से भी बनते हैं। तो हम फिर मिलेंगे इसी स्नेह और अपनेपन के साथ। शिफाली कपूर को दीजिए इजाजत। आप मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए, सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।
1: हेलो फरमाइश।

ये आकाशवाणी जोधपुर का एफएम सन सिटी चैनल है। एफएम बैंड 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस समय शाम के ठीक 5 बजे हैं। आइए सुनते हैं युवा श्रोताओं का कार्यक्रम यू वाणी।

0: हाँ जी, शाम की हल्की सी हवा है, दिल में कुछ पुराने एहसास और आपके पसंदीदा गानों का खूबसूरत सा कारवा। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम यमानी ओनली ऑन 102.1 FM पर। इस आवाज का नाम राहुल और आज मेरे साथ
1: हाँ जी, मैं हूँ आप लोगों का रेडियो दोस्त नितेश। और अगले कुछ एक घंटे तक हम लेकर आए हैं आपसे प्यारी सी दोस्ती, यादें, मोटिवेशन, क्रिकेट और म्यूजिक से भरी एक शानदार सी शाम।
0: आज का थर्सडे स्पेशल बहुत खास होने वाला है, क्योंकि आज का युवाणी प्रोग्राम में तो दोस्तों की इंस्पायरिंग कहानी, आईपीएल की मजेदार सी चर्चा, सीबीएसई रिजल्ट टॉक और एक बेहद शानदार गवर्नमेंट वैकेंसी अपडेट आपके दिल के करीब बहुत सारे गाने भी आने वाले हैं।
1: बिल्कुल सही कहा राहुल, और उन्हीं गानों के पिटारों में से आपके लिए है आज की शाम का ये पहला म्यूजिकल ट्रैक।

0: दोस्तों, कभी कभी जिंदगी में कुछ लोग ऐसे मिलते हैं जो सिर्फ दोस्त नहीं होते बल्कि हमारी हिम्मत बन जाते हैं।
1: और आज की कहानी उन दो दोस्तों की है जिनके पास पैसे कम थे लेकिन सपने बहुत बड़े।
0: एक छोटे से शहर में रहते थे अर्जुन और समीर, दोनों बचपन के दोस्त, स्कूल साथ, क्रिकेट भी साथ और सपने भी साथ। लेकिन जिंदगी उतनी आसान नहीं थी। अर्जुन के पिता छोटी सी चाय की दुकान चलाते थे और समीर के पापा ऑटो चलाते थे। घर वालों को एक ही उम्मीद थी कि बस बेटा किसी तरह से नौकरी लग जाए।
1: लेकिन अर्जुन और समीर का सपना अलग था। उन्हें कुछ बड़ा करना था, कुछ ऐसा जिससे एक दिन पूरा शहर उन पर गर्व करे। दिन में कॉलेज और रात को दोनों एक छोटे से कमरे में बैठकर अपने सपनों पर काम करते थे। कभी ऑनलाइन स्ट्रीमिंग से सीखना, कभी फ्री वाईफाई पढ़कर ऑनलाइन क्लासेस देखना। कई बार तो मोबाइल रिचार्ज के पैसे भी नहीं होते थे, लेकिन हिम्मत वो कभी कम नहीं हुई।
0: एक दिन समीर ने थक कर कहा, यार शायद ये सब हमारे बस का नहीं है। अर्जुन मुस्कुराया और बोला, अगर गरीब होना हमारी कमजोरी होता ना तो मेहनत करने वाले लोग कभी जीतते नहीं। हम धीरे चल रहे हैं लेकिन रुक नहीं रहे।
1: उस रात दोनों ने एक प्रॉमिस किया, चाहे कुछ भी हो जाए एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। फिर शुरू हुआ असली स्ट्रगल। लोग हंसते थे, रिश्तेदार ताने देते थे, मोबाइल चलाने से जिंदगी नहीं।

0: बनती। सपनों से पेट नहीं भरता, लेकिन दोनों ने सुनना बंद कर दिया क्योंकि उन्हें अपनी मेहनत की आवाज पर भरोसा था।
1: 3 साल बाद उसी छोटे से कमरे में शुरू किया गया था उनका काम, आज एक सक्सेसफुल स्टार्टअप बन चुका था। जिस शहर में लोग उन्हें ताने देते थे, आज वही लोग उनकी सक्सेस स्टोरी सुनाते थे। और सबसे खूबसूरत बात, सफल होने के बाद भी दोनों ने अपने पुराने कमरे की चाबी अभी तक संभाल कर रखी थी ताकि कभी घमंड आए तो वो स्ट्रगल याद आ जाए।
0: दोस्तों, सपने बड़े होने चाहिए, लेकिन उनसे भी बड़ा होना चाहिए पूरा करने का जज्बा। और अगर सफर में एक सच्चा दोस्त साथ होना तो मुश्किल रास्ते भी आसान लगने लगते हैं।
1: तो आज अगर आपका कोई दोस्त किसी सपने के लिए मेहनत कर रहा है तो उसका मजाक मत उड़ाइए, क्योंकि कल वही दोस्त आपकी इंस्पिरेशन बन सकता है। जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं युवाणी थर्सडे स्पेशल प्रोग्राम। मैं हूँ आरजे राहुल और आज मेरे साथ
0: मैं आरजे नितेश। जहाँ कहानियाँ सिर्फ मोटिवेट नहीं करती, जिंदगी बदलने का हौसला भी देती, बिल्कुल इस अगले म्यूजिकल ट्रैक की तरह।
1: फिलहाल आप और मिलकर पढ़ेंगे आगे और सुनेंगे ये मजेदार सी कहानी।

0: जाते हैं, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए एक सच्चा दोस्त है ना, वो बहुत जरूरी होता है। और इस गाने से पहले जो कहानी हमने एंजॉय की थी, वो कहानी थी अर्जुन और समीर की, दो छोटे शहर के दोस्तों की, जिनके पास पैसे कम थे लेकिन हौसले भाई वो बहुत बड़े थे। और आप थर्सडे स्पेशल युवानी कहानी एपिसोड आप इंजॉय कर रहे हैं ओनली ऑन एफएम 102.1 पे नितेश और राहुल के साथ।
1: जी हाँ बिल्कुल, इस आवाज़ का नाम राहुल। और अगर आपकी लाइफ में भी कोई समीर या फिर अर्जुन है और उसको किसी काम में आपकी हेल्प चाहिए तो आप कभी पीछे मत हटिएगा। फिलहाल युवानी प्रोग्राम चल रहा है, अगर आप गाड़ी में ट्रेवल कर रहे हैं तो सीट बेल्ट का इस्तेमाल जरूर कीजिएगा, और जब कभी भी बाइक पर सवार हो तो हेलमेट का इस्तेमाल करना ना भूलिएगा। प्रोग्राम युवानी में आज की शाम बहुत सारी बातें भी और बाकी है, और जैसे कि नितेश भैया, आईपीएल चल रहा है, ये भारत का एक त्यौहार चल रहा है, इंडियन प्रीमियर लीग, और उसकी बात ना हो तो कैसे पॉसिबल होगा। फिलहाल आप और हम मिलकर बढ़ेंगे आगे और इस गाने की बात करेंगे, आईपीएल की बातें।

0: हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है इस ब्रेक के बाद ओनली ऑन युवानी एफएम 102.1 पे, जहां सॉन्ग्स भी हिट होते हैं और क्रिकेट टॉक्स भी फुल एंटरटेनमेंट वाली होती है। और मैं हूं आपका रेडियो दोस्त नितेश, और मेरे साथ
1: जी बिल्कुल इस आवाज का नाम राहुल। और अब बात कर लेते हैं आईपीएल की दुनिया की। जो फिर से कल का मैच ने जो बवाल मचाया ना, वो बहुत ही कमाल का था।
0: बिल्कुल सही कहा राहुल। और कल का मुकाबला था आरसीबी वर्सेस केकेआर, और ऑनेस्टली ये मैच नहीं विराट कोहली का कोई पर्सनल कॉन्सर्ट लग रहा था।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, विराट कोहली ने जो धुआंधार बल्लेबाजी करी है ना, उनका मतलब अनबीटन 105 रन स्कोरबोर्ड पर लगाना बॉलर्स को ऐसा घुमा है जैसे लग रहा था कि भाई स्पॉटिफाई की कोई प्लेलिस्ट शफल कर रही हो वहां पे।
0: आरसीबी ने 193 रन का टारगेट चेज किया, और वो भी फुल स्वैग के साथ।
1: और विराट कोहली अब जो है वो T20 क्रिकेट में 14,000 रन पूरे करने वाले फास्टेस्ट इंडियन बैटर बन चुके हैं।
0: और राहुल, अगर आईपीएल का एक कॉलेज होता ना, तो विराट कोहली भी टॉपर होते। जो असाइनमेंट भी टाइम पे सबमिट करा रहे, अटेंडेंस भी फुल है, और फेयरवेल में तो भाई असली हीरो है ये।
1: और बाकी बॉलर्स की हालत तो ऐसी थी कि सर रीटेस्ट मिल सकता है क्या? फिलहाल के लिए आप और मिलकर बढ़ेंगे आगे। और पॉइंट टेबल्स पर क्या कुछ खास आईपीएल का असर पड़ रहा है, कौन टीम टॉपर बनी हुई है और किन का जो चांस अब बिल्कुल भी नहीं है, उसकी बात करेंगे लेकिन इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद।

0: इश्क इश्क इश्क सलाम इश्क, वेलकम बैक एक बार फिर से। इस वक्त प्रोग्राम युवाणी को एंजॉय कर रहे हैं आप इस वक्त, और फिलहाल बात आईपीएल की चल रही है। और अब बात करते हैं पॉइंट टेबल्स की। तो आरसीबी इस समय जो है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु टेबल टॉपर बनी हुई है विद 16 पॉइंट्स के साथ।
1: बिल्कुल। और राहुल, जीटी यानी गुजरात टाइटंस भी बराबरी पर है, और एसआरएच सनराइज हैदराबाद तीसरे नंबर पर, और प्लेऑफ रेस अब भी फुल थ्रिलर मूवी बन चुका है
0: जी
1: भाई।
0: हाँ बिल्कुल। और नीचे वाले टीम्स का हाल तो ऐसा है ना कि जैसे एग्जाम में लास्ट बेंचर बोल रहे हो, अभी कमबैक बाकी है मेरे दोस्त।
1: और अब बात है आज के मुकाबले की। दोस्तों, हर मैच प्लेऑफ टिकट जैसा इंपॉर्टेंट हो चुका है।
0: एक गलत मूव और सीधा कैलकुलेटर निकल आता है, अगर ये टीम जीती वो टीम हारी, नेट रन रेट बढ़ा और फिर क्वालिफाई।
1: और ऑनेस्टली राहुल, आईपीएल का असली मजा अब शुरू हुआ है, और हर ओवर टेंशन है, हर सिक्स सेलिब्रेशन है, और हर विकेट मीम मटेरियल है।
0: हॉस्टल में दोस्तों के साथ मैच देखना, मैगी प्लस कोल्ड ड्रिंक प्लस फ्री एक्सपर्ट एडवाइस, यही तो आईपीएल की वाइब है मेरे भाई।
1: और वो एक दोस्त जरूर होता है जो टॉस के बाद बोल देता है, भाई मैच तो है ना यही खत्म हो गया है।
0: बिल्कुल वही कहता है कि टॉस के बाद तो भैया मैच यहीं खत्म हो गया, और सब अपनी अपनी जो है वो एक्सपर्ट्स राय बताना, हर वक्त हर समय अपनी अपनी बताना वो जब शुरू कर देते हैं। फिलहाल आज का मुकाबला बड़ा ही खास होने वाला है पंजाब किंग्स और मुंबई इंडियंस के साथ, और मुंबई इंडियंस की जो हालत है वो फिलहाल थोड़ी खस्ता है, अब उनका कमबैक होना थोड़ा मुश्किल है। वो बिल्कुल उस कॉलेज की लास्ट बैंक बेंचर वाली टीम है, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता है, इस बार तो बाहर हो चुकी है, लेकिन पंजाब किंग्स के जो है पूरे पूरे चांस हैं कि उनका मैच कैसा क्या होने वाला है देखते हैं। फिलहाल बढ़ेंगे आगे, सुनेंगे मजेदार से गाने जैसे कि ये रहा।

0: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
1: शिक्षा की जीवन में भी जरूरत है, समाज जीवन में भी जरूरत है, इसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए।
0: NCPCR आयोजित कर रहा है परीक्षा पर्व, जिसके लाइव सेशन के दौरान आप परीक्षा से संबंधित प्रश्न एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।
2: हेलो
3: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
2: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
4: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
2: सर इतने कहाँ से?
4: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
2: 2 लाख
5: क्या हुआ पापा?
2: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
4: अरे
2: काट दिया।
5: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
2: फ्रॉड?
5: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
2: तो पैसे गवाओगे।
6: RBI कहता है
7: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: देता हूँ। इस प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद आप सबका फिर से स्वागत है आपके फेवरेट कार्यक्रम युवानी ओनली ऑन एफएम 102.1 पे, जिसे आप एंजॉय कर रहे हैं नितेश और राहुल के साथ। राहुल, थर्सडे स्पेशल कहानी एपिसोड चल रहा है और एक कहानी हमने ऑलरेडी बता दी, और जो अगली कहानी है वो रियल कहानी है, और प्रोग्राम में हम आगे बढ़ेंगे और आपको लेके चलेंगे भेंट वार्ता की और CBSE 12th 2026 परीक्षा में 97% अंक प्राप्त भूमज चौधरी से राहुल की फोन आउट बातचीत।
1: वेल, जब किसी चीज के लिए हम जब मेहनत बड़े शिद्दत से करते हैं तो रिजल्ट भी हमें उतना ही बेहतर मिलता है। जैसा कि हम सभी को पता है, 12th CBSE का रिजल्ट कल की शाम घोषित हो चुका है। वहीं हमारे साथ इस एग्जाम में 97% प्राप्त करने वाले भूमिज चौधरी हमारे साथ अब जुड़ चुके हैं। सबसे पहले तो भूमिज, आपको बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं।

0: चाहूंगा मैं श्रोताओं को आप सबसे पहले अपने बारे में कुछ बताइए।
1: जी नमस्कार और आपका धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए। मैं भूमित चौधरी कक्षा 12वीं विज्ञान वर्ग का छात्र हूँ और मैंने अपनी स्कूलिंग जोधपुर से ही की है। मैंने CBSE बोर्ड परीक्षा में 97% अंक प्राप्त किए, जिसमें मैंने मैथमेटिक्स में 100 में से 100 अंक प्राप्त किए व कंप्यूटर साइंस में 99 अंक प्राप्त किए।
0: भूमिज, मैं जानना चाहूंगा आपने जो है वो मैथमेटिक्स यानी साइंस स्ट्रीम को चुनना ही क्यों समझा सही, ये कब डिसाइड हुआ, इसके पीछे का क्या कारण है?
1: इसके पीछे का यही कारण है क्योंकि 10th बोर्ड के बाद मेरा जो इंटरेस्ट था वो मैथ्स और कंप्यूटर में ज्यादा था, इसलिए सबके सहयोग से और मेरी खुद की पसंद से मैंने PCM स्ट्रीम चुनी।
0: तो जब आप अपनी पढ़ाई करते थे शुरू से लेकर अंत तक, जब आपने 12th क्लास में एंट्री की, प्रवेश किया, उस वक्त आपका डेली रूटीन किस तरह से रहता था? आप किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देते थे? क्या आपका बेसिक रूटीन रहता था? क्या बताना चाहेंगे इस बारे में आप हमें?
1: मैं अपनी स्कूल रेगुलरली अटेंड करता था, प्रतिदिन मैं स्कूल जाता था। उसके पश्चात दिन में प्रतिदिन 5 घंटे सेल्फ स्टडी, हर सब्जेक्ट को थोड़ा थोड़ा टाइम देकर सबको एकदम अच्छे से पढ़ना, रिवाइज करना, वो सब करता था।
0: भूमित, जब भी हम किसी चीज की तैयारी करते हैं, कोई परीक्षा की तैयारी या किसी भी चीज की तैयारी करते हैं, तो सपोर्ट सिस्टम हमारे साथ होना बहुत जरूरी होता है। स्पेशली पेरेंट्स का सपोर्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जब परीक्षा की बात आती है, इतने बड़े एग्जाम की बात आती है, तो शिक्षकों का सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आपकी जर्नी में, 12th क्लास की वाली जर्नी में, बोर्ड एग्जाम्स में, इस एग्जाम में किन किन लोगों का मुख्य तौर से सपोर्ट रहा?
1: जी मैं मानता हूँ कि सपोर्ट होना बहुत जरूरी है और मैं अपने स्कूल के सभी शिक्षकों का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमेशा मेरे पीछे अपना सपोर्ट रखा, मुझ पर विश्वास रखा कि मैं अच्छी सफलता प्राप्त कर सकता हूँ। मैं अपने माता पिता व पूरे परिवार को भी धन्यवाद करता हूँ क्योंकि उन्होंने कभी भी मेरे को नेगेटिव फील होने नहीं दिया, हमेशा मुझे पॉजिटिविटी से देखा और कहा कि आप बहुत ऊंची सफलता हासिल कर सकते हैं।
0: भूमित, जब भी हम किसी परीक्षा की तैयारी करते हैं, तो ऐसे में आजकल हम देख रहे हैं कि भाई सोशल मीडिया जो है वो बड़ी तेजी से फैल रहा है, हर बच्चे के पास फोन है, हर बच्चा सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है। कुछ लोगों के लिए सही है, इसे जानकारियां भी मिलती हैं कई सारी, लेकिन कई बार ये सोशल मीडिया हमारे जो है वो उस पढ़ाई की जर्नी में वहां बीच में आता है, वहां आड़े आता है। तो उसे आपने किस तरह से देखा? आपके लाइफ में सोशल मीडिया का प्रभाव किस तरह से था, इस बारे में क्या बताना चाहेंगे?
1: जी सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है आजकल बच्चों की पढ़ाई में, किंतु मैंने सोशल मीडिया का पॉजिटिव यूज किया। मैंने सिर्फ पढ़ाई की चीजें और जानकारी की चीजों के लिए उसे यूज किया और मैं अपनी मम्मी और पापा के नियंत्रण में ही मोबाइल का यूज करता था ताकि मैं बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट ना हूँ।
0: मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपने जब पढ़ाई शुरू करी और अंत तक एग्जाम टाइम तक जब पढ़ रहे थे, तो आपको ऐसी बीच बीच में ऐसा होता है हमारे साथ, हमें लगता है कि यार ये चीज़ मैंने गलत कर ली है, इसको मुझे सुधार देना चाहिए, तो आप उन बच्चों के बारे में क्या बताना चाहेंगे जो लोग अब 12th में आए हैं, वो ये गलती ना करें जो आपको लगता है कि यार मैंने ये गलती करी? अब जो आने वाले बच्चे हैं वो इस तरह की गलती नहीं करेंगे, तो उनके लिए वो अच्छा साबित होगा, वो थोड़ा फायदेमंद साबित होगा इस एग्जाम के लिए।
1: जी बीच में मुझे भी कहीं कहीं लगा कि मैं कुछ गलती कर रहा हूँ, स्पेशली फिजिक्स में थोड़ी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस पर मेरी पकड़ कम हो रही थी, तो मैंने मेरे टीचर के और माता पिता के सपोर्ट से उसको आइडेंटिफाई किया और उस पर वर्क करने की कोशिश की। तो मैं सभी बच्चों को यही एडवाइस दूंगा कि आप अपने शिक्षकों की और माता पिता की और अपनी खुद की गलतियों को आइडेंटिफाई करें और उनको खुद सॉल्व करने की कोशिश करें ताकि आप उससे बेनिफिट उठा सकें।
0: इस एग्जाम में या फिर किसी भी एग्जाम की हम बात करते हैं, तो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस होते हैं, प्रीवियस ईयर एग्जाम के जो क्वेश्चंस होते हैं, उनको सॉल्व करना बड़ा जरूरी होता है, वो बड़े फायदेमंद साबित होते हैं। तो उस बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? क्या आपने भी जो है वो पिछले साल के एग्जाम के सवालों को सॉल्व किया, आपको उसका फायदा मिला?
1: जी बिल्कुल, मैंने एग्जाम से लगभग 1-2 महीने पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने स्टार्ट कर दिए थे और सभी सब्जेक्ट में किए थे, स्पेशली मैथ्स और फिजिक्स केमिस्ट्री में मैंने 5 से 10 साल के पेपर सॉल्व किए, जिसका मुझे फायदा हुआ। और जो पिछले साल के क्वेश्चंस थे वो कुछ तो एज इट इज इस साल के बेर में मुझे दिखे।
0: क्या बात है, मतलब जो भी बच्चा तैयारी कर रहा है उसको भी आप ये बताना चाहेंगे कि भाई आप जो है वो एग्जाम से 1 या 1.5 महीना पहले प्रीवियस ईयर के जो पेपर है वो सॉल्व करेंगे तो आपको जरूर उस चीज का फायदा मिलेगा।

0: चलो मैं आपसे अब जानना चाहूंगा कि आपकी जो फेवरेट सब्जेक्ट्स हैं, आपको लगता है कि यार ये सब्जेक्ट्स तो मेरा फेवरेट है, इसमें तो मैंने महारत हासिल कर रखी है, इसको मुझे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कुछ सब्जेक्ट्स हमारे पास ऐसे भी होते हैं जहाँ हमारी पकड़ जो है वो कम होती है। अभी आपने उसके बारे में थोड़ी देर पहले बताया, तो जिन सब्जेक्ट्स पर आपकी पकड़ कम होती है वो कोई भी हो सकता है, तो उस पर वापस पकड़ बनाने के लिए, उसे स्ट्रांग करने के लिए एक स्टूडेंट क्या क्या चीज़ें कर सकता है?
1: जी, जिस सब्जेक्ट में हमारी पकड़ कम होती है, तो सबसे पहले हम जो स्कूल में एग्जाम देते हैं उससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारी कहाँ गलती हो रही है, और उस गलती को पकड़कर हम अपने शिक्षक की सहायता से उस गलती को सॉल्व कर सकते हैं।
0: आपके आगे के क्या प्लान्स हैं? आगे किस चीज़ की तैयारी आप करना चाहते हैं, क्या बताना चाहेंगे? आगे के क्या गोल्स हैं आपके?
1: जी, मैं IIT JEE की प्रिपरेशन कर रहा हूँ अभी।
0: चलिए आगे बढ़ेंगे, और अब मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो बच्चे अब जो 12th में आए हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, CBSE 12th बोर्ड में प्रवेश कर चुके हैं, उनके लिए कोई खास बातें बताना चाहेंगे आप?
1: उनके लिए मैं बस यही बताना चाहूंगा कि उनको अपने जो CBSE का करिकुलम है उसके बेसिस पे उसको सबसे पहले पूरा करें, और उसके बाद कॉम्पिटेंसी बेस्ड जो आजकल क्वेश्चन पूछ रहे हैं उन पे उनको फोकस करना चाहिए, और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से।
0: और जब हम परीक्षा की तैयारी करते हैं तो जाहिर सी बात है कि स्ट्रेस प्रेशर ये हमारे पास अपने आप आ जाता है ना चाहते हुए भी, लेकिन इसको दूर करने के लिए भी कई सारे ऑप्शंस हैं हमारे पास। हम गेम्स खेल सकते हैं, हम एंटरटेनमेंट के लिए और भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो आपके पास जब ऐसा कुछ होता था आपके साथ, तो आप क्या चीज़ें कराते थे उस वक्त?
1: जी, जब भी कभी मुझे ऐसा लगता था मैं स्ट्रेस में हूँ, तो मैं या तो अपने परिवार से बात कर लेता था या अपने भाई के साथ खेल लेता था, जिससे ताकि मैं स्ट्रेस कम हो सके।
0: ओके, थैंक यू सो मच भूमिज हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और आपने इतनी सही और सटीक जानकारी हमारे श्रोताओं तक पहुंचाई, स्पेशली जो लोग स्कूल में हैं, 12th की तैयारी कर रहे हैं परीक्षा की, अब उन्होंने प्रवेश कर लिया है, उनके लिए ये बातचीत जो है बड़ी खास रही होगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
2: श्रोतों, अभी आपने सुनी भेंट वार्ता। CBSE 12th 2026 परीक्षा में 97% अंक प्राप्त भूमज चौधरी से राहुल की फोन आउट बातचीत। इसकी प्रस्तुति और संयोजन रहे राजेश लामरूट। हाल फिलहाल बढ़ेंगे अगले म्यूजिकल ट्रैक की ओर। कही जाएगा मत युवानी का सफर अभी बाकी, ऑनली ऑन 102.1 FM पे नितेश और राहुल के साथ, और CBSE की जर्नी वाला टॉपिक अभी जारी रहेगा। फिलहाल इंजॉय कीजिए ये म्यूजिकल ट्रैक।

0: श्रोता, आपने एंजॉय किया फिल्म यमला पगला दीवाना का गीत नजर बट्टू और सचेत टंटन की दिलकश आवाज में। और वाकई जो सुबेजी का रिजल्ट आया है और जिन्होंने टॉप स्कोर किया ना, उन पे तो भाई किसी की नजर नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि वो डिजर्व करते हैं भाई। उन्होंने पूरे साल मेहनत की है और क्या ही नंबर लेके आए। तो चलिए एक नजर और स्कोरर की तरफ डालते हैं।
1: जी हाँ, बिल्कुल। आज पूरे देश में एक ही चीज सबसे ज्यादा जो है वो सर्च करी जा रही है कि भैया सीबीएसई का रिजल्ट आ गया, सीबीएसई का रिजल्ट आ गया।
0: बिल्कुल सही कहा राहुल। और ऑनेस्टली रिजल्ट वाले दिन की फीलिंग्स है ना, उसकी तो बात ही कुछ अलग है। और किसी के घर मिठाई, किसी के घर कैलकुलेटर, और कुछ स्टूडेंट्स अभी भी बोल रहे हैं यार सर्वर डाउन था, मार्क्स तो अच्छे ही आए होंगे।
1: लेकिन दोस्तों, आज हम बात सिर्फ मार्क्स की नहीं करेंगे, बल्कि उस मेहनत की करेंगे जो हर स्टूडेंट ने पूरे साल करी है।
0: और इसी बीच एक खबर काफी वायरल हो रही है। सीबीएसई 12th की टॉपर भव्या राजन, जिन्होंने 500 में से 499 मार्क्स स्कोर किए।
1: क्या बात है, मतलब एक नंबर कहाँ चला गया भाई, ये जानने के लिए तो मेरा जो इंटरनेट है ना, वो सीएडी मोड पे चला गया अब।
0: लेकिन मजाक से हटकर ये अचीवमेंट सच में बहुत इंस्पायरिंग है। और उन्होंने लगातार मेहनत की है, फोकस रखा है, डिसिप्लिन रखा है, और आज पूरे देश उनके नाम से जान रहा है।
1: क्या बात है। और दोस्तों, हर टॉपर की कहानी के पीछे ना उनका टैलेंट नहीं, बल्कि उनकी स्लीपलेस नाइट, प्रेशर, सेक्रीफाइसेस और कंसिस्टेंसी भी भरपूर होती है। जी हाँ, बिल्कुल। और इस बीच बहुत सारी बातें चलेंगी। और बात करें,
0: अब जरूरी बात उन स्टूडेंट्स के लिए जिनके मार्क्स शायद उम्मीद से कम आए हैं। तो दोस्तों, एक मार्कशीट आपकी पूरी जिंदगी डिसाइड नहीं करती है।
1: सही बात है, क्योंकि लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज मार्क्स नहीं, उनकी स्किल्स होती है, उनका कॉन्फिडेंस होता है, उनकी मेहनत होती है।
0: बिल्कुल सही कहा। और ऑनेस्टली राहुल, इंडिया में हाफ इंजीनियर्स है ना वो फोटोग्राफर बन चुके हैं, और जो हाफ कॉमर्स वाले हैं ना वो भाई इन्फ्लुएंसर बन चुके हैं।
1: तो प्रेशर मत लो यार, अपना पैशन ढूंढो और खुद को दूसरों से कंपेयर करना तो बंद ही कर दो। वैसे रिजल्ट आते जाते रहेंगे और दोस्त आपसे पूछते रहेंगे कि भैया क्या कुछ क्या बातें होने वाली है, लेकिन आपको जो है वो अपना हमेशा पैशन ढूंढना है और उसके अकॉर्डिंग चलना है। फिलहाल के लिए आप और मिलकर बढ़ेंगे, आगे सुनेंगे मजेदार से गाने, और प्लेलिस्ट में नेक्स्ट सॉन्ग आपके लिए, ये देखो भाई ये रहा।

0: श्रोताओं, इस प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद आप सबका फिर से स्वागत है आपके फेवरेट प्रोग्राम युवानी, जिसे आप एंजॉय कर रहे हैं ऑन एफएम 102.1 पे। और अब एक नजर डालते हैं वैकेंसी की और स्टूडेंट्स और गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स के लिए एक इम्पोर्टेंट अपडेट।
1: जी बिल्कुल, एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने स्टेनोग्राफर रिक्वायरमेंट 2026 का जो है नोटिफिकेशन जारी कर दिया है साहब।
0: इस भर्ती के तहत ग्रेड सी और ग्रेड डी के कुल 731 पोस्ट पर जो है ये भर्ती निकाली गई है।
1: अगर आपने 12th पास कर ली है और स्टेनोग्राफर स्किल आप अपने आप में रखते हैं तो ये आपके लिए एक शानदार अपॉर्चुनिटी हो सकती है साहब।
0: बिल्कुल, और राहुल एज लिमिट की बात करें ना तो ग्रेड सी के लिए एज है 18 से 30 साल रखी गई है,
1: और ग्रेड डी की बात करें तो 18-27 साल तक के जितने भी युवा हैं वो इस भर्ती के लिए अप्लाई कर पाएंगे।
0: और वही एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो कैंडिडेट को किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या यूनिवर्सिटी से 12th पास होना जरूरी है।
1: साथ ही स्टेनोग्राफर जो कि स्किल आपकी वो मैंडेटरी रहेगी, जिसका टेस्ट स्किल टेस्ट के दौरान लिया जाएगा।
0: और ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो लास्ट डेट है वो 15 मई है। अगर आपने अप्लाई करना चाहते हैं तो लास्ट मोमेंट का वेट मत करो।
1: एप्लीकेशन और डिटेल्स नोटिफिकेशन आप ऑफिशियल वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं जो कि है
0: राहुल, इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है ssc.gov.in।
1: और अपने सपनों की प्रिपरेशन आज से ही शुरू कर दीजिए साहब। अगर इस भर्ती के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो अब इसके लिए जो है वो तारीख अब बिल्कुल कम ही बची है,
0: क्योंकि मेहनत और कंसिस्टेंसी ही सक्सेस की रियल शॉर्टकट है।
1: ऑल द बेस्ट योर आर फ्यूचर्स। और फिलहाल आप और मिलकर बढ़ेंगे आगे, सुनेंगे मजेदार से गाने और प्रोग्राम युवानी में। थोड़ा समय अभी और बाकी है।

0: दोस्तों जब दिल से लिरिक्स कनेक्ट करती है ना, तो ये गाने सिर्फ सुने नहीं जाते, महसूस किए जाते हैं, जैसा कि आप हाल फिलहाल ये बर्बाद म्यूजिकल ट्रैक आप इंजॉय कर रहे हो। दोस्तों हर शाम की तरह आज की वाणी भी यादों, गाने और इमोशन से भरी रही। उम्मीद है आज की कहानी, आज की बातें और आज के गाने आपके दिल तक जरूर पहुंचे होंगे। मिलेंगे फिर एक नई शाम, नई वाइब और नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, सपने देखते रहिए और अपने दोस्तों का साथ कभी मत छोड़िए, जैसा कि हम दो दोस्त आपके साथ थे। मैं आपका रेडियो दोस्त नितेश और मेरे साथ,
1: जी हाँ बिल्कुल, इस आवाज का नाम राहुल। और आज आपने और हमने मिलकर बहुत सारी बातें करी। CBSE 12th बोर्ड का रिजल्ट आया, उसके बारे में चर्चा हुई, बहुत सारे गाने सुने और इस बीच कई सारी जो है स्पेशल टॉक हमने बात करी। और हम मिलेंगे आपको फिर एक नई शाम, नई बात और एक नए जोश के साथ। आज के कार्यक्रम की प्रस्तुति और संयोजन रहा राजेश लामरोड का। कंसोल पे हमारे साथ मुस्कान। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी, ये आकाशवाणी जोधपुर का FM सन सिटी चैनल है। कुछ ही देर में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आकर्षिता सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग ले रहे विदेश मंत्रियों से मुलाकात की। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्षी, दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्री रोनाल्ड लामोला और ब्राजील के विदेश मंत्री माउरो वियरा सहित अन्य विदेश मंत्रियों ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इससे पहले अपने शुरुआती संबोधन में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है। बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री पारस्परिक हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। कल दूसरे दिन ब्रिक्स सदस्य और भागीदार देश ब्रिक्स एट 20 लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण विषय पर एक सत्र में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात जाएंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री अबू धाबी में यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता भारत और संयुक्त अरब अमीरात की मजबूत साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। सरकार ने कहा है कि देश में कच्चे तेल, LPG और प्राकृतिक गैस की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाए गए हैं। नई दिल्ली में पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि घरेलू LPG आपूर्ति सुचारू रूप से जारी है।
2: भारत सरकार ने कई इफेक्टिव स्टेप्स लिए हैं जिसके चलते हमारे पास पेट्रोल, डीजल, LPG और नेचुरल गैस के पर्याप्त स्टॉक्स अवेलेबल है। हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही हैं और LPG प्रोडक्शन भी इंक्रीज किया जा चुका है। हमारे किसी भी रिटेल आउटलेट पर और LPG डिस्ट्रीब्यूटरशिप पर कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है। सब जगह पर नॉर्मल ऑपरेशन चल रहे हैं।
1: निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान के तीसरे चरण की घोषणा कर दी है। तीसरे चरण का अभियान 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में संचालित किया जाएगा। इस चरण में आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, पंजाब, सिक्किम, त्रिपुरा, तेलंगाना और उत्तराखंड राज्य शामिल हैं। इस चरण के अंतर्गत केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव शामिल हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने आज पेचिंग में वार्ता की। व्यापार और प्रौद्योगिकी और क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर तनाव के बावजूद दोनों नेताओं ने टकराव के बजाय सहयोग पर बल दिया। व्हाइट हाउस के अनुसार दोनों नेताओं ने इस बात पर सहमति व्यक्त की कि ऊर्जा का निरंतर प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए हॉर्मुज जलडमरू मध्य खुला रहना चाहिए।

0: बैठक के बाद सभा को संबोधित करते हुए चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा कि चीन और अमेरिका को प्रतिद्वंदी नहीं बल्कि साझेदार होना चाहिए। ब्रिटेन ने कहा है कि संयुक्त अरब अमीरात के पूर्वी तट पर एक जहाज को जब्त कर लिया गया है। रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण होर्मुज जल डमरू मध्य के पास फुजैराह बंदरगाह के करीब इस जहाज पर अनाधिकृत कर्मियों ने कब्जा कर लिया है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देशवासियों से की गई 7 अपीलों के मद्देनजर कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय सहित अपने संबंधित मंत्रालयों और विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के बाद उन्होंने कहा कि मंत्रालय स्तर पर एक वर्ष तक सोने की खरीद न करने का निर्णय लिया गया है। श्री सिंह ने कहा कि कृषि मंत्रालय ने किसानों को उर्वरकों के संतुलित उपयोग के बारे में जागरूक करने के लिए गांवों में एक अभियान शुरू किया है। प्रधानमंत्री की अपील के अनुरूप दिल्ली सरकार कल से मेरा भारत मेरा योगदान अभियान शुरू करेगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इसके अंतर्गत आवश्यक सेवाओं को छोड़कर दिल्ली सरकार के सभी कार्यालय सप्ताह में 2 दिन घर से काम करेंगे। थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु महिला सिंगल्स में और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी तथा चिराग शेट्टी की जोड़ी पुरुष डबल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। और आईपीएल क्रिकेट में आज पंजाब किंग्स का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी जोधपुर का एफएम सन सिटी चैनल है। एफएम बैंड 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस समय शाम के 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम गुड इवनिंग जोधपुर।

धुंधली सी शाम है, यादों का एक गांव है, पांव के नीचे वही पुरानी पीपल की छांव है। भागकर थम गए थे हम इस शहर की दौड़ में, मगर दिल तो आज भी वहां बचपन का पड़ाव है। गुड इवनिंग जोधपुर, मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो बड़ी मोनिका, और आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो गुड इवनिंग जोधपुर, सिर्फ और सिर्फ 102.1 एफएम सन सिटी पर। दोस्तों, शाम के 6:00 बीत चुके हैं और शाम की इस सुहानी सी शाम में हम आपको सुनवाने वाले हैं बहुत ही सुंदर सुंदर गाने। तो आज प्रोग्राम का पहला गाना आपको सुनवाते हैं सनम पुरी और शिप्रा गोयल की आवाज में। कुमार है लिरिकिस्ट और विशाल शेखर है कंपोजर। तो सुनिए ये गाना फ्रॉम मूवी हंसी तो फंसी।

दोस्तों, अपनी जो घर की खिड़की है उसके बाहर देखिए, आसमान का जो रंग है वो उस केसर या मिठाई जैसा हो गया है जो हम बचपन में जिद करके मांगा करते थे। क्या आप भी इस वक्त अपने घरों की ओर जा रहे हैं या फिर गाड़ी के शीशे पर सिर टिकाकर बस बाहर की भाग दौड़ भरी वाली जिंदगी को देख रहे हैं? आज की शाम मैं आपको उस भाग दौड़ भरी वाली जिंदगी में थोड़ा सा पॉज दूंगी और सुनवाऊंगी ऐसे गाने जो आपके दिल को सुकून देंगे। तो प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और आपको सुनवाते हैं ये अगला ट्रैक फ्रॉम मूवी किक।

0: पथरी प्रोस्टेट से पाना हो छुटकारा तो विनायका हॉस्पिटल ही अपनाना, जहां सुप्रसिद्ध यूरोलॉजिस्ट एवं गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर प्रदीप शर्मा द्वारा इसका निदान पाया जा सकता है।
1: RGHS वचिरंजीवी योजना के अंतर्गत निःशुल्क ऑपरेशन। पथरी मतलब विनायका हॉस्पिटल, गीता भवन रोड, जोधपुर।

दोस्तों, आज जब मैं स्टूडियो आ रही थी तो मैंने रास्ते में कुछ बच्चों को हाइड एंड सीक यानी छुपन छुपाई खेलते हुए देखा। एक पल के लिए तो लगा कि गाड़ी रोकूं और उनसे कहूं, अरे भाई मुझे भी छुपा लो, मुझे भी इस बड़ी सी दुनिया की जिम्मेदारियों से थोड़ी देर के लिए कहीं छुप जाना है। याद है आपको, जब शाम के 6 बजते थे तो मम्मी की आवाज बालकनी से गूंजती थी, पढ़ने बैठ जाओ, और हमारा जवाब होता था, बस 5 मिनट और मम्मी। वो 5 मिनट आज के 5 घंटों से भी ज्यादा कीमती है ना? आज के दौर में हमारे पास प्ले स्टेशन है, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स है, पर क्या वो कंचे और पिट्टू वाली थकान है? आज हम बिस्तर पर थक कर लेटते तो हैं, पर नींद आंखों में कम और दिमाग में ज्यादा होती है।

दोस्तों, शहरों में शाम अक्सर ट्रैफिक सिग्नल और हॉर्न के बीच गुजर जाती है, लेकिन इसी शोर में एक सुकून भी है। वो जो नुक्कड़ पर चाय वाला है ना, उसकी केतली की आवाज़, वो जो ऑफिस के बाहर मूंगफली भूनने वाला है उसकी खुशबू, ये सब हमारी शहरी शाम के एक अभिन्न हिस्से की तरह है। आज घर जाते वक्त अपनी कार का शीशा थोड़ा नीचे गिराएगा और महंगे परफ्यूम की जगह जरा इस शहर की मिट्टी और हवा की गंध को महसूस कीजिएगा। शायद आपको वो सुकून मिल जाए जिसे आप हफ्तों से ढूंढ रहे हैं।

0: दुनिया रा सारा सुख एक तरफ, हर माँ बड़न रो सुख एक तरफ।
1: निसंतान दंपतियाँ रे जीवन में खुशियाँ री उम्मीद। विनायका हॉस्पिटल एंड IVF सेंटर, गीता भवन रोड, जोधपुर।
2: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
3: परीक्षा एक ऐसा अवसर है और परीक्षा के लिए हेल्दी कंपटीशन की भावना हमारी तैयारी को और बेहतरीन बनाती है।
2: NCPCR आयोजित कर रहा है परीक्षा पर्व, जिसके लाइव सेशन के दौरान आप परीक्षा से संबंधित प्रश्न एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।

वेलकम बैक। कमर्शियल ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है प्रोग्राम गुड इवनिंग जोधपुर में। मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो बड़ी मोनिका, ओनली ऑन 102.1 एफएम सन सिटी पर, जहां मैं आपको सुनवा रही हूं प्यारे प्यारे गाने। तो प्रोग्राम का अगला सॉन्ग हम सुनवाते हैं आपको क्रुक फिल्म से।

कि म्यूजिकल ट्रैक आप एंजॉय कर रहे हैं फ्रॉम मूवी बोल बच्चन, हिमेश रेशमिया और श्रेया घोषाल की आवाज, शबीर अहमद की बोल और कंपोज्ड बाय हिमेश रेशमिया।

दोस्तों, अभी अभी मेरे जहन में एक बात आई कि हम सब खुद को महकाने की कितनी कोशिश करते हैं, है ना? कोई पेरिस का परफ्यूम लगाता है तो कोई अरबी उद, पर सच बताऊं, महंगे इत्रों की खुशबू तो बस चंद लम्हों की मेहमान है। असली सुकून तो उस मिट्टी में है जो बारिश की बूंदें नहीं, शाम की ओस मांगती है। जी बिल्कुल दोस्तों, इन लाइन का बहुत ही गहरा मतलब है। जानते हैं क्या है इत्र? यानी परफ्यूम जो होता है वो बाहर से आता है, वो एक मोखट्टा है, एक दिखावा है जो कुछ घंटों में उड़ जाएगा। लेकिन वो मिट्टी जो दिन भर की तपिश झेलने के बाद शाम की ठंडी ओस से मिलती है, उसकी जो खुशबू होती है वो

रियली बहुत ही ज़्यादा अलग और बहुत ही बेहतरीन होती है, वो ज़मीनी होती है। लेकिन जब शाम को घर लौटते हैं और वो जो हल्की सी ठंडक हमें छूती है, हम अपने परिवार के साथ बैठते हैं, वो सुकून उस ओस की तरह है जो हम अंदर तक तरबदर कर देता है। आज जब आप घर पहुंचे तो उस दिखावे वाले परफ्यूम को उतार कर फेंकिएगा और अपनी असली वजूद की मिट्टी को महसूस जरूर कीजिएगा। देखिएगा कितना सुकून आपको मिलता है उस प्यारी सी खुशबू से जो आपको अपनों के पास मिलेगी।

दोस्तों, खिड़की से झांकती उस आखिरी किरण को देखो। वो कह रही है कि कल फिर एक नया सवेरा होगा। अभी ठहर जाओ इस मखमली रोशनी के साथ, क्योंकि फिर चांदनी रातों का पसेरा होगा।

दोस्तों, जाने का मन तो नहीं है, पर घड़ी की सुइयां बड़ी बेईमान होती है, रुकती ही नहीं। जाने से पहले बस इतना ही कहूंगी कि कल फिर महकेगी ये शाम कुछ नए किस्सों के साथ। थकना मना है मुसाफिर, अभी लंबी है जिंदगी की ये रात। तो दोस्तों, हंसते रहने रहने की तुम्हारी मुस्कान किसी की उम्मीद है। आज की ये शाम बस आने वाले कल की रसीद है। तो दोस्तों, जल्द

ही फिर से मिलने के वादे के साथ मैं लेती हूँ आपसे विदा. अपना ख्याल रखिएगा, अपनों को प्यार दीजिएगा और खुशियाँ बांटते रहिएगा. मैं थी आपके साथ आपकी अपनी रेडियो बड़ी मोनिका, प्रोग्राम गुड इवनिंग जोधपुर के साथ. चलिए मैं चलती हूँ, और पर आप कहीं मत जाइएगा. स्टे ट्यून विद FM सन सिटी. शुभ रात्रि, शब खैर दोस्तों. और मैं आपको छोड़ चलती हूँ इस प्यारे से म्यूजिकल ट्रैक के साथ.

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गुड इवनिंग जोधपुर। ये आकाशवाणी जोधपुर का FM सन सिटी चैनल है। FM बैंड 102.1 MHz पर। इस समय शाम के 7 बजे हैं। आइए अब आपको ले चलते हैं विविध भारती की राष्ट्रीय सेवा प्रसारण, जहां से आप सुनेंगे कार्यक्रम जय माला।

फौजी साथियों के इस कार्यक्रम जयमाला में आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आज पूजा नरानिया। जय हिंद साथियों। आइए सबसे पहले आपको सुनवाते हैं ये देशभक्ति गीत।

0: ये देशभक्ति गीत पूरब और पश्चिम फिल्म से आपने सुना। महेंद्र कपूर और साथियों के स्वरों में इंदिवर के बोल थे कल्याण जी आनंद जी का संगीत। लीजिए अब आपको सुनवाते हैं भारतीय सेना गीत। गायक कलाकार गीतकार और संगीतकार कैलाश खैर हैं।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

0: सेना।
1: भारतीय सेना गीत अभी आपने सुना। गायक कलाकार गीतकार और संगीतकार कैलाश खैर थे। आइए अब आपको सुनवा रहे हैं सदा सुहागन फिल्म से।

0: सदा सुहागन इस फिल्म से अभी आपने कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में ये गीत सुना और अब सुनिए एक संदेश।
1: जैसे कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त, आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
0: विविध भारती पर इस वक्त आप सुन रहे हैं फौजी साथियों का कार्यक्रम जय माला। आइए अब आपको सुनवाते हैं प्यासा सावन इस फिल्म से संतोष आनंद का लिखा गीत, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की बनाई धुन पर आवाज लता मंगेशकर की।

नसीब अपना अपना इस फिल्म से आशा भोसले और मोहम्मद अजीज की आवाजों में सुनिए अगला गीत। एसएच बिहारी के बोल, धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन, अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम

0: दुनिया बड़ा होने से डरता है।
1: एक शानदार शख्सियत।
0: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
1: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी।
0: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, उस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने चढ़ से इन चीजों को संवारने और साकार करने का अवसर दिया।
1: कुछ बेमिसाल किस्से।
0: मैंने पढ़ा जाने की उड़ान बाकी, इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीजी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए। ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
1: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 20 मई शाम 4 बजे और 21 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: जाने कितनी

अंतराल के बाद कार्यक्रम जयमाला में आप सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है। आइए अब आपको सुनवाते हैं अगला गीत। इस गीत के बोलों को लिखा है इंदिवर ने और बप्पी लहरी का संगीत है आशा भोसले और मोहम्मद अजीज की आवाजों में। फिल्म का नाम मुद्दत।

आशा भोसले और मोहम्मद अजीज की आवाजों में अभी आपने ये गीत सुना मुद्दत फिल्म से। अब आपको सुनवाते हैं सबसे बड़ा रुपया, इस फिल्म से लता मंगेशकर और किशोर कुमार की युगल आवाजों में। मजरू सुल्तानपुरी का लिखा, बसु मनोहरी का संगीतबद्ध किया गीत।

सबसे बड़ा रुपया इस फिल्म का गीत वादा करो साथ, वादा करो जानम, ये आपने सुना लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में। अब आपको सुनवा रहे हैं इस कार्यक्रम की आखिरी प्रस्तुति फिल्म आनंद से। गायिका लता मंगेशकर है, गुलजार के लिखे बोल, धुन बनाई है सलिल चौधरी ने।

गीत जिसे लता मंगेशकर ने गाया, गुलजार की भूल थी सलिल चौधरी का संगीत, और इसी गीत के साथ कार्यक्रम जयमाला अब यहीं संपन्न होता है। जय हिंद साथी।

आप सुन रहे हैं भारत का नंबर वन मनोरंजन चैनल विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। हमारे अगले कार्यक्रम की कीजिए प्रतीक्षा।

0: हैं विविध भारती के संग। इनसे मिलिए,
1: इनसे मिलिए। इस कार्यक्रम में आज सुनिए गिटारिस्ट अनिकेत गुंडेवार से बातचीत। आपसे बातचीत कर रहे हैं जयंत पात्रिकर। आज सुनते हैं दूसरी कड़ी।
2: दोस्तों, इनसे मिलिए कार्यक्रम में हमारे साथ हैं उभरते गिटार वादक अनिकेत गुंडेवार, जो गिटार पर शास्त्रीय संगीत बजाते हैं। अनिकेत जी, जानना चाहेंगे सबसे पहला मंच पर जाने का मौका कब मिला आपको?
3: मंच पर जाने का क्लासिकल म्यूजिक बजाने के लिए, आई थिंक गुरु जी के, मतलब जहां मैं जाता हूँ सीखने के लिए, वो वही पर गुरु पूर्णिमा के अच्छा। के टाइम पे जब स्टेज पे पहली बार मौका मिला था, तभी वही एक था,
2: गुरुकुल के वार्षिकोत्सव।
3: हाँ,
2: इसके अलावा किसी ने आप प्रस्तुतिकरण के लिए बुलाया हो या किसी ग्रुप के साथ, किसी बैंड के साथ जुड़ने का मौका मिला हो?
3: आई थिंक जो एकदम पहले का जो प्रोमिनेंट मुझको एक परफॉर्मेंस जो याद है वो था पिंपरी चिंचवाड़ में एक स्वरजंकार म्यूजिक फेस्टिवल का ही एक था, उसमें एज एक फ्यूजन ग्रुप के पार्ट में मैं गया था।
2: अच्छा।
3: तो उस टाइम आई थिंक सितार प्लेयर थे स्टेज पे, वायलिन थे
2: जी,
3: तबला प्लेयर्स थे, ड्रमर, और फिर मैं एक उसमें से एक म्यूजिशियन था। तो वो क्लासिकल के कॉन्टेक्स्ट में वो एक्चुअली मेरे लिए काफी बड़ी बात थी, क्योंकि मैं बहुत बहुत पहले पहले था, मतलब मैं जस्ट 4-5 साल ही हुए थे और मैं स्टेज पे था, बहुत नर्वस था।
2: हाँ।
3: और बाकी सब काफी एक्सपीरियंस।
2: वहाँ क्या बजाने के लिए मिला आपको, मतलब क्या बजाने के लिए कहा गया आपसे?
3: वहाँ पर वही है कि क्लासिकल म्यूजिक में काफी इम्प्रोम्प्टू चीजें काफी होती है स्टेज
2: जी, जी।
3: तो वो सीखने को काफी मिला। तो हम एक राग में कुछ फ्यूजन कॉम्पोजिशन थी, आई थिंक किरवानी राग था, और उसमें सब बजा रहे थे और बीच बीच में मुझे मेरे तरफ इशारा कर देते थे कि अच्छा अभी आप कुछ बजाइए, और फिर और वो एक बहुत अलग एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि सब एक्सपीरियंस म्यूजिशियंस होते हैं और उन्हें पता है क्या चल रहा है, बट आप फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे होते हो कि पहली बार ऐसा कुछ कर रहे हो। तो
2: जी जी, आपने कुछ अपने दोस्तों के साथ मिलकर भी एक बनाया है बैंड?
3: हाँ, तो वो एक कलाइडोस्कोप नाम का एक प्रोजेक्ट हमने शुरू किया है
2: जी।
3: और ये एक्चुअली काफी नया एक्सपीरियंस है मेरे लिए, क्योंकि इतने सालों से मैं एज अ सोलो इंस्ट्रूमेंटलिस्ट या ही ज्यादा परफॉर्म करता आया हूँ, और क्लासिकल म्यूजिक में जो अकंपनी का जो पार्ट होता है, जो हार्मोनियम प्लेयर करते हैं या जो सारंगी वादक करते हैं वोकलिस्ट के साथ
2: जी,
3: उस तरह से मैंने कभी सोचा नहीं है ये इंस्ट्रूमेंट पर अकंपनीमेंट करने के लिए।
2: अच्छा।
3: इंस्ट्रूमेंटलिस्ट का जो थॉट प्रोसेस होता है परफॉर्मेंस का और वोकलिस्ट का होता है वो काफी अलग होता है।
2: अच्छा।
3: और जिस तरह से वोकलिस्ट, क्योंकि उनके पास शब्द होते हैं, तो जब वो शब्दों को यूज करके जो सोच निकलती है उनमें से, वो एक सीखने को काफी मिलता है कि अच्छा इस तरह से भी सोच सकते हैं ये सेम आलाप को, अगर मैं इंस्ट्रूमेंटल पे ऐसे कर रहा हूँ, एक वोकलिस्ट किसी और तरीके से जो सोच रहा है
2: जी जी,
3: तो उससे काफी सीखने को मिलता है जब ऐसी
2: यही अपनी सोच रखने का मौका आपको मिलता है जब आप अकेले बजा रहे हैं और कुछ।
3: हाँ, अकेले बजा रहा हो तो मेरी ही सोच होती है
2: बराबर,
3: जब अकंपनी कर रहा होता हो तो वो सोच एक्चुअली सिंगर की होती है, और आपका काम होता है कि वो सोच को कैसे आप एक तो उनकी शैडो बन के कैसे रह सकते हो वो, और प्लस उसको ब्यूटीफाई कैसे कर सकते हो वो मोमेंट, ये जो दो चीजें होती है कि कहाँ बजाना है कहाँ नहीं बजाना है,
2: बिल्कुल
3: ये सब चीजें जो नेचुरली आप सीखने लगते हो जब आप वोकलिस्ट के साथ अकंपनी करने की कोशिश करते हो
2: जी। शास्त्रीय संगीत सीखने की ये जो प्रोसेस है, ये जो प्रक्रिया है, इसमें हम किन कलाकारों को सुनते हैं, किन की रिकॉर्डिंग सुनते हैं, इसका भी बहुत बड़ा हाथ है और बहुत इंस्पायरिंग होती है ये रिकॉर्डिंग्स।
3: यस यस यस।
2: आप किसका नाम लेना चाहेंगे जहां तक गिटार की बात है?
3: अच्छा, जहां तक गिटार की बात है तो दो ऐसे जायंट्स हुए हैं हमारे इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में जो गिटार पे, मतलब एक तो पंडित ब्रिजभूषण काबरा जी,
2: बिल्कुल,
3: जो स्लाइड गिटार, हवाईयन गिटार जो उन्होंने बजाई, और फिर उसी को लेके जो आगे लेके गए वही सोच को पंडित विश्वमोहन भट्ट जी है।
2: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत तो बड़े नाम है,
3: बहुत बड़े नाम है।
2: हाँ। और इनका योगदान बहुत विशाल है,
3: बहुत बहुत बहुत, और दोनों के स्टाइल्स भी इतने अलग है कि वो जब आप सुनते हो दोनों का म्यूजिक, एकदम कुछ अलग ही चीज मतलब सुनने को मिलती है
2: जी। कभी ऐसा नहीं लगा कि

0: एक मैकेनिकल इंजीनियर के रूप में करियर शायद कुछ और होता और जीवन कुछ किसी और तरह का होता?
1: ऐसा नहीं लगा मुझे एक्चुअली,
0: क्योंकि पढ़ाई लिखाई एक अलग क्षेत्र में आपने की है और अब आप पूरी तरह से कलाकार के रूप में अपना करियर बना रहे हैं।
1: नहीं, क्योंकि एक चीज ऐसी थी कि कभी ऐसा नहीं लगा कि अच्छा, अगर मतलब वो मोटिवेशन मटेरियलिस्टिक कभी नहीं था कि अच्छा इसमें पैसा ज्यादा है इसलिए मैं ये कर रहा हूँ।
0: हाँ,
1: वो एक्चुअली वो म्यूजिक अच्छा लग रहा है इसलिए मैं म्यूजिक कर रहा हूँ।
0: क्या बात है?
1: ये जो सोच थी वो पहले से ही थी मुझ में, तो फिर
0: क्या बात है? ये एक तरह की फलसफाना सोच है, फिलोसॉफिकल सोचने का जो तरीका है, बहुत अच्छे। क्या लगता है आपको और क्या होना चाहिए आपकी जिंदगी में? कलाकार के रूप में आपकी अपेक्षाएं क्या है?
1: मुझे जितना हो सके ऑडियंस के सामने परफॉर्म करने के लिए मिलना चाहिए, उतना ही है। बाकी तो वैसे तो जो सीखने में जो मजा आता है वो तो आता ही है रोज, वो कंटिन्यूस एक प्रोसेस चल रहा होता है जब आपकी थॉट इम्प्रूव होते रहती है। जो रियाज में से एक तो मैकेनिकल रियाज होता है, बट एक पॉइंट के बाद वो थॉट के लेवल पे आ जाता है कि अच्छा आप एक ही चीज को कितने तरह से बजा सकते हो या एक ही चीज को कैसे अलग तरीके से, और उसमें मजा आने लगता है। मतलब वो एक सेल्फ फुलफिलिंग चीज हो जाती है कि आप रियाज कर रहे हो और आपको वो रियाज में से इतना सब मिल रहा है कि आप एक्चुअली बहुत कुछ ऐसे चीजों के पीछे भागना कम हो जाता है एक पॉइंट के बाद।
0: ऑडियंस भी बहुत बदल गई है। एक जमाना था जब लाइव शोज लोग देखने जाते थे और कुछ होता नहीं था, रेडियो पे सुनते थे क्लासिकल म्यूजिक, बाद में दूरदर्शन आया, उसके बाद सैटेलाइट चैनल्स आए, बहुत सारे ऑप्शंस थे लोगों के पास देखने के लिए। अब तो इंटरनेट के जरिए जब चाहे जो चाहे हम देख सुन सकते हैं। तो आपको क्या फर्क मालूम पड़ता है अब और ऐसी बदली हुई ऑडियंस और खासतौर से यंग जनरेशन, उनके लिए आप क्या करना चाहेंगे मंच पर?
1: क्या करना चाहूंगा?
0: क्योंकि उनकी सोच की उन्हें जो अच्छा लगता है उनकी पसंद नापसंद को देखते हुए।
1: तो अभी एक्चुअली हो कैसे गए और इससे एक्चुअली हम एज एन आर्टिस्ट भी काफी गुजरते हैं, क्योंकि हम लोग जब एज अ रेफरेंस मटेरियल सुन रहे होते हैं म्यूजिक, तो हम लोग उस्ताद आमिर खान जी का सुन रहे होते हैं, उस्ताद पंडित भीमसेन जोशी, और वो टाइम का जो म्यूजिक था जब बहुत ज्यादा ठहराव था, एक राग डेढ़ घंटा दो घंटा गाते थे वो लोग।
0: जी जी जी।
1: और ये तो सिर्फ रिकॉर्डिंग्स हैं, मतलब ऐसा तो सुना है कि तीन चार घंटा भी गाते थे तब।
0: बिल्कुल बिल्कुल, एक ही राग तीन तीन चार चार घंटे चलता था।
1: ये चीज हमने नहीं देखी है, हमारी जनरेशन ने कभी देखी नहीं, हमने सिर्फ रिकॉर्डिंग्स में जितना सुना है उतना। और होता कैसा है, जब आप ये सुन रहे होते हो तो आपका म्यूजिक भी वैसा होने लगता है कि आपको भी स्लो आलाप करना पसंद आने लगता है। और
0: अच्छा।
1: लेकिन जब आप पहली बार ऑडियंस के सामने जाते हो तो वो नहीं चल सकता है, क्योंकि आपका स्लॉट ही 45 मिनट्स का होता है या 30 मिनट्स का होता है, और उसमें आप आधा घंटा आलाप तो कर नहीं सकते। ये जो सोच है ना, ये एक्चुअली हमारे गुरुजी ने काफी इसके बारे में गाइड किया है, क्योंकि और मैंने ये चीज बहुत नोटिस की है क्लासिकल म्यूजिक में स्पेशली, जितने एक्सपीरियंस आर्टिस्ट होते हैं उतने ज्यादा ओपन माइंडेड होते हैं, उनको एग्जैक्टली पता होता है कि अच्छा अभी ये सिचुएशन में ऐसे करना है। आपका एक प्रैक्टिस रूम में जो होता है वो एक अलग है, जब आप ऑडियंस के सामने जाते हो तो अलग होता है। ऑडियंस के हिसाब से थोड़ा चेंज करना ही पड़ता है, मतलब तो थोड़ा फास्ट पेस होता है, तो अभी अगर मेरे पास आधे घंटे का स्लॉट है तो मैं आलाप बहुत नहीं कर सकता हूँ, और ऑडियंस भी उतना आलाप एक्सेप्ट भी नहीं करेगी, एक टाइम के बाद फोकस शिफ्ट होने लगता है। तो फिर उस तरह से जिस ऑडियंस के सामने आप हो उसके हिसाब से थोड़ा थोड़ा
0: अपने प्रेजेंटेशन को डिजाइन करना पड़ता है,
1: प्रेजेंटेशन को थोड़ा मॉडिफाई भी करना पड़ता है। बहुत बार स्टेज पे आपको दिख रहा होता है कि अच्छा अभी ऑडियंस नहीं पकड़ में नहीं, अभी थोड़ा ड्रिफ्ट हो रही है उनके थॉट, तो फिर आपको थोड़ा ट्राई करके देखना पड़ता है अच्छा अभी ये अच्छा लग रहा है तो फिर इस तरह से बजाते हैं।
0: कभी ऐसा हुआ होगा कि आप मंच पर है, आपने शुरू किया क्लासिकल म्यूजिक मगर सामने ऑडियंस शायद कुछ और सुनना चाहती है?
1: नहीं, लेकिन अभी अब मंच पर जब बुलाया जाता है तो क्लासिकल म्यूजिक के लिए बुलाया जाता है, तो तब एक बात होती है कि आप प्रेजेंटेशन थोड़ा मॉडिफाई करो ताकि आप ऑडियंस को कैप्चर कर पाओ एज एन आर्टिस्ट। और एक बात होती है कि आप परफॉर्मेंस ही चेंज करो, अभी अगर आप म्यूजिक ही चेंज कर दोगे फिर उसका कोई पॉइंट नहीं होता है, तो आप जितना प्योर रख सकते हो क्लासिकल म्यूजिक कॉन्सर्ट में क्लासिकल म्यूजिक प्योर होना ही चाहिए।
0: बिल्कुल, वो तो बात है,
1: और उसी के अंदर काफी स्कोप है आपको डिजाइन करने का, क्योंकि क्लासिकल म्यूजिक शुरू बहुत स्लो टेम्पो से होता है और जा भी बहुत फास्ट टेम्पो तक, तो वो रेंज बहुत है, तो आप उसी में काफी कुछ कर सकते हो। आपको ऐसा जरूरी नहीं है कि आप कुछ और ही बजाने लगो ताकि आप ऑडियंस को कैप्चर करो।
0: और आपके अब तक 15-16 सालों से आप सीख रहे हैं, बहुत से राग अब तक आपके रियाज में आ चुके होंगे,
1: राइट?
0: कौन सा राग आपको फेवरेट लगता है अपना?
1: ये बहुत डिफिकल्ट सवाल है, ये हर 2-3 महीने में फोकस ही चेंज हो जाता है कि अच्छा अभी ये राग में थोड़ा और
0: अच्छा,
1: फिर नया राग शुरू हो जाता है, तो हम लोग कुछ ऐसे राग राग होते हैं जो हमेशा उसमें रिटर्न आते ही है, कहीं भी नया राग हो कुछ भी हो तो भी, तो जैसे जोग हो गया, बिहाग हो गया, मालकाउंस, चारुकेशी, किरवानी,
0: अच्छा,
1: भैरव, ये राग एक्चुअली

0: उन मतलब ये दे आर कंसेप्ट इन देमसेल्व्स, ऐसे बोल सकते हो कि आप भैरव हो गया तो भैरव का एक कंसेप्ट होता है जो आपको अगर समझ में आया तो फिर आप अलग अलग तरह के भैरव बजा सकते हो।
1: अच्छा।
0: या मालकाउंस का एक कंसेप्ट होता है, वो एक बार समझ में आ गया तो आप अलग अलग तरह के काउंट्स बजा सकते हो। तो ये जो बेसिक्स है उसमें तो करते ही रहना पड़ता है।
1: अच्छा। मैं देख रहा हूँ आप हाथ से भी बजा रहे हैं, मतलब उंगलियों से।
0: हाँ।
1: और आपके एक उंगली में एक स्टील का रॉड लगा हुआ है, इसका किस तरह से इस्तेमाल करते हैं आप, वो भी जरा बताइए।
0: ओके, ये एक्चुअली वीडियो में ज्यादा बेटर समझ में आएगा अभी ऑडियो में, लेकिन गिटार पर क्या होता है ना, एक स्लाइड एक कंसेप्ट है
1: जी,
0: जो मैंने पहले बोला था ब्लूज गिटार में। वो क्या होता है, पाइप जैसा एक स्लाइड होता है जो आपके रिंग फिंगर के ऊपर आप लगा देते हो और उससे आप स्लाइड कर सकते हो। जैसे मेरा साउंड आ रहा है, सिमिलर साउंड आएगा उसमें से भी
1: जी,
0: लेकिन उसमें फिंगर ब्लॉक हो जाती है। तो अब मैं जब, मेरे गुरुजी वायलिनिस्ट है तो मैं वायलिन सुन सुन के सीख रहा था और थोड़े टाइम के बाद ऐसा लगने लग गया कि अरे फ्रेट्स के वजह से मुझको वो स्मूथनेस आई नहीं रही है जो वायलिन पे आती है।
1: अच्छा।
0: वो फ्रेटलेस इंस्ट्रूमेंट है।
1: हाँ हाँ।
0: और वो बहुत प्रेसाइज इंस्ट्रूमेंट है
1: जी।
0: तो मैं एक्चुअली ऑनलाइन ढूंढने लग गया और मुझे ये एक स्लाइड मेकर है जो यूएस में है।
1: अच्छा।
0: वो ये मैन्युफैक्चर करते हैं, तो उनको आपको रिंग फिंगर का साइज देना होता है और फिर वो
1: बना करके
0: भेजते हैं।
1: अच्छा अच्छा।
0: तो उनसे मैंने ऑर्डर किया और फिर मैंने सीखने लग गया। तो बेसिकली ये एक रिंग है, मतलब जो अपनी नॉर्मल रिंग होती है वैसी रिंग है
1: जी जी,
0: और उसको एक बार अटैच्ड है और वो बार मोहन वीणा का जो बार होता है वैसा ही है, बट बहुत छोटा वर्जन है उसका।
1: अच्छा।
0: और बस वो जब यूज कर रहा होता हो तो मैं मेरी फिंगर से उसको पोजिशन में रखता हूँ और हाँ। जब नहीं यूज करना हो तो वो पीछे लटकते रहता है और वो फिंगर भी फ्री हो जाती है, तो मैं अच्छा। फिंगर से भी बजा सकता हूँ।
1: अच्छा। तो अब उस धुन की तरफ बढ़ते हैं जो आपने खुद बनाई हुई, उसकी झलक हमें सुनवाएं। या कोई ऐसी धुन जो किसी और कलाकार की आपने सुनी है और आपको बहुत पसंद आई, आपने उसे रिप्रोड्यूस किया।
0: हाँ, ऐसे तो है। तो एक धुन है राग देश में
1: जी,
0: जो एक्चुअली मैंने रिप्रोड्यूस करने से ज्यादा सीखी है गुरुजी से, लेकिन वो बहुत इंटरेस्टिंग है। थोड़ी सी झलक उसका मुखड़ा।
1: स्वागत है। तो

0: अभी आप सुन रहे थे गिटारिस्ट अनिकेत गुंडेवार से जयंत पात्रकर की बातचीत की दूसरी कड़ी। तीसरी कड़ी लेकर हाजिर होंगे अगले सप्ताह। विविध भारती की ओर से कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता तेज श्री कांबले। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: इनसे मिलिए, जैसे कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर।

लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त, आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।

0: आप कौन हैं?
1: मैं लक्ष्मी हूँ, वही लक्ष्मी जिसकी तुम आरती कर रहे थे।
0: लक्ष्मी देवी माँ, प्रणाम, साष्टांग प्रणाम।
1: मैं तुमसे प्रसन्न हूँ गरीब दास, तुम्हें वरदान देने आई हूँ। मांगो, क्या मांगते हो?
0: मैं क्या मांगू देवी माँ? मैं
1: धन, संपदा और ऐश्वर्य की देवी हूँ गरीब दास। तुम मुझसे कुछ भी मांग सकते हो।
0: लेकिन देवी माता, मैंने तो इस बारे में कुछ सोचा भी नहीं। मैं
1: अरे, तुम्हारी आवाज क्यों कांप रही है गरीब दास? मुझे देखकर तुम्हारी आंखें क्यों चौंधिया रही हैं? तुम घबरा क्यों रहे हो?
0: आपका रूप ही ऐसा है देवी माँ, ऐसी चमक, ऐसी रोशनी कभी देखी नहीं।
1: घबराओ नहीं गरीब दास, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। तुम जो जी चाहे मांग सकते हो।
0: देवी माँ क्षमा करना, इस समय मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है, मुझे सोचने का तनिक समय दीजिए।
1: गरीब दास, मैं तुम्हें रात भर का समय देती हूँ, खूब सोच लो। सुबह का सूरज निकलते ही मैं फिर आऊंगी, मैं फिर आऊंगी, मैं फिर आऊंगी, मैं फिर आऊंगी।
0: कृपा देवी माँ, आपकी बहुत बहुत कृपा, बहुत बहुत कृपा। धनिया, अरे ओ धनिया, है सो गई? अरे उठ तो है, अरे ये तो बेहोश पड़ी है, लक्ष्मी जी को देख के बेहोश हो गई। धनिया, ओ धनिया, अरे आंखें खोल धनिया।
2: अरे वो औरत गई?
0: औरत? अरे वो औरत नहीं धनिया, देवी जी थी, साक्षात लक्ष्मी माँ।
2: लक्ष्मी जी?
0: हाँ माता लक्ष्मी, हम दोनों से बहुत प्रसन्न है, वरदान देने आई थी।
2: वरदान?
0: हाँ, सवेरे फिर आएंगी, पता था क्या मैं क्या मांगूंगा उनसे?
2: अरे दया, कितनी तेज रोशनी निकल रही थी उनके बदन से, मुझे तो मुरझा आ गई।
0: अरे मेरा भी तो यही हाल था धनिया, तभी तो घबराहट के मारे मैं कुछ मांग ही ना पाया। अब तू ही बता क्या मांगू, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा।
2: मैं बताऊं?
0: ओहो तो जल्दी से बोल।
2: सुनो, तुम कहते थे ना, मेरे कानों में झुन झुन करने वाला चांदी का झुमका बहुत अच्छा लगेगा, तो मांग लो झुमका।
0: ओफो, तू जब भी सोचेगी अपने झुमके की सोचेगी। अरे इतनी बड़ी देवी से इतनी छोटी चीज मांगी जाती है कहीं? अरे झुमका तो मैं खुद भी खरीद सकता हूँ तेरे लिए।
2: हाँ हाँ, वो तो मैं 5 साल से देख ही रही हूँ, जब भी कहती हूँ तो कह देते हो पैसे नहीं है, और आज देवी जी खुद देने आई रही है और तुम मांगना ही नहीं चाहते। मैं खूब जानती हूँ तुम मुझे मेरा झुमका लाना ही नहीं चाहते।
0: अरे धनिया,

0: मिठाइयाँ तो समझती क्यों नहीं। देवी जी वरदान देने रोज रोज तो आएंगी नहीं, एक बार मांगना है तो कोई ऐसी चीज क्यों ना मांगे जिससे हमारे कष्ट हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाए। झुमका तो बस कानों में पड़ा पड़ा झुनझुन करता रहेगा।
1: झुनझुन की आवाज कितनी मीठी लगती है, लेकिन तुम्हें तो दारू की बोतल भली लगती है ना, वही तो मांगोगे देवी जी से।
0: अरे धनिया तू कैसी बातें करती है, देवी जी से भला दारू की बोतल मांगूंगा। राम राम राम। अरे भगवान मैं तो कुछ और ही सोच रहा हूँ।
1: क्या सोच रहे हो?
0: मैं सोच रहा हूँ धनिया, अपने पास घर नहीं है, गर्मी में हम धूप से जलते रहते हैं, बारिश में पानी में भीगते रहते हैं, जाड़े में ठंड में ठिठुरते रहते हैं, क्यों ना हम देवी जी से एक छत वाला और चार दीवारों वाला घर मांग ले। बस हम धूप में ना जलेंगे, ना पानी में भीगेंगे, ना सर्दी में ठिठुरेंगे।
1: हाँ ये तो तुमने बहुत अच्छी बात सोची, घर।
0: हाँ, देवी जी आएंगे तो मैं उनसे यही कहूंगा, हे देवी माँ हमें घर दे दो, एक छत वाला चार दीवारों वाला एक घर। ठीक है ना धन्या?
1: हाँ बिल्कुल ठीक है, घर।
0: हाँ तो अब तू सो जा, मैं भी सोता हूँ, देवी जी से हम घर मांग लेंगे, हम घर मांग लेंगे। धनिया सो गई क्या?
1: नहीं तो।
0: ससुरी नींद नहीं आ रही, जाने कहाँ उड़ गई है।
1: एक बात कहूँ?
0: बोल।
1: लक्ष्मी जी से जो भी मांगोगे वही मिलेगा?
0: जो मांगेंगे वही मिलेगा।
1: तो फिर उनसे ऐसी कोई चीज क्यों ना मांग ले जो थानेदार से भी बड़ी हो।
0: यही तो मैं भी सोच रहा हूँ धनिया। अरे हाँ याद आया, एक दिन मैं कलेक्टर साहब की कोठी में घास छील रहा था, मैंने देखा कि अपने थानेदार साहब कलेक्टर साहब के आगे हाथ बांध के खड़े हैं और कलेक्टर साहब गिटर पिटर जाने क्या चिल्ला रहे हैं।
1: अच्छा?
0: अरे हर गली फू फू करने वाला वो थानेदार बेचारा कलेक्टर साहब के सामने जैसे भीगी बिल्ली बना हुआ था। अरे सुन तो, इसीलिए तो मैं सोच रहा हूँ कि देवी जी से कहूं कि हे देवी जी मुझे कलेक्टर साहब बना दो, फिर तो थानेदार भी मुझ जैसे गरीब दास को सलाम ठोकेंगे। अरे अपनी कोठी होगी, गाड़ी होगी, नौकर चाकर होंगे और मेरी धनिया, ओए मेरी धनिया रानी की तरह रहेगी।
1: और मेरे सोने के झुमके?
0: अरे धनिया झुमके तो झुमके, मैं तेरे लिए सोने का चंदर हार ले दूंगा।
1: हाय सोने का चंदर हार?
0: हाँ चंदर हार। अब तू सो जा, सवेरे नींद ना खुली तो देवी जी आके लौट जाएंगी, सो जा।
1: अरे हाँ हाँ तो फिर तुम भी सो जाओ, जल्दी से सो जाओ।
0: थानेदार क्या, थानेदार तो सलाम मारेगा।
1: सो जाओ सो जाओ।
0: धनिया धनिया सो गई क्या?
1: नहीं तो।
0: ससुरी नींद क्यों नहीं आ रही? धनिया मेरा तो दिमाग ही घूमने लगा है।
1: अब क्या सोचने लग गए?
0: सोच रहा हूँ देवी जी रोज रोज तो वरदान देने नहीं आएंगी, जो कुछ मांगना है एक ही बार मांग लो, कोई चीज ऐसी नहीं जो कलेक्टर साहब से भी बड़ी हो।
1: ए? कलेक्टर साहब से भी बड़ी?
0: हाँ धनिया तुझे याद है एक दिन हम मैदान में घास छील रहे थे, इस सड़क से एक मोटर निकली थी, मोटर में झंडा लगा हुआ था और सड़क की दोनों तरफ दर्शन करने वालों की भीड़ लगी हुई थी और मोटर में एक आदमी बैठा हुआ था, मालूम है कौन था वो?
1: कौन था?
0: सेठ करोड़ीमल। सेठ करोड़ीमल के पास चार मोटरें हैं, चार कोठियां हैं, चार बीवियां हैं, चार
1: हाय दया चार।
0: हाँ धनिया सब कुछ चार चार। अरे रे क्या हुआ धनिया, क्या हुआ?
1: तुम सेठ करोड़ीमल बन जाओगे तो तुम भी चार बीवियां रखोगे।
0: नहीं रे मेरी तो एक धनिया ही चार के बराबर है, मेरा मतलब था धनिया मैं सेठ करोड़ीमल बन जाऊंगा तो मेरे पास भी चार मोटरें होंगी, चार कोठियां होंगी, चार
1: हाय सब कुछ चार चार, मेरे झुमके भी चार चार,
0: तेरे झुमके भी चार चार
1: और चंदर हार भी चार चार।
0: ओ चंदर हार भी चार चार।
1: हाय हाय।
0: लेकिन धनिया सुन, अब भी समय है, खूब अच्छी तरह सोच ले।
1: अरे मैं क्या सोचूं, मेरा तो सिर दुखने लगा सोचते सोचते।
0: सारी रात गुजर गई।

0: हम सो भी ना सके। देवी लक्ष्मी माँ आप आ भी गई?
1: हाँ, मैं आ गई गरीब दास। मांगो, क्या मांगते हो?
0: देवी माता क्षमा, मुझे कुछ नहीं चाहिए।
1: कुछ नहीं चाहिए? ये क्या कह रहे हो गरीब दास?
0: मैं सच कह रहा हूँ देवी माँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। गरीब दास को बस सुख की नींद दे दो, शांति और संतोष का वर दे दो देवी, और कुछ नहीं चाहिए मुझे।
1: लेकिन क्यों?
0: देवी जी, देवी माँ, मोटर बंगला, हीरे जवाहरात और राजा महाराजा की बातें सोच सोच के हम दोनों सारी रात सो नहीं सके, आंखों से नींद उड़ गई। सिर्फ सोचने से यह हाल है तो ये सब कुछ मिल जाने पर क्या होगा? हमारी कितनी रातों की नींद उड़ जाएगी। नहीं नहीं देवी माँ, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें अपनी रूखी सूखी और ये आसमान की छत कबूल है। सोने का वो बंद पिंजरा हमें नहीं चाहिए जिसकी दीवारों के भीतर हमारी सांस घुट जाए, हमारी नींद उड़ जाए, हमारा सुख चैन लुट जाए।
1: गरीब दास, तुम घसियारे हो लेकिन बहुत समझदार हो। मैं तुम्हारे उत्तर से अत्यंत प्रसन्न हूँ। लो, अपनी ओर से मैं तुम्हें यह वरदान देती हूँ। इससे न तुम्हारा सुख चैन लुटेगा, न नींद उड़ेगी, न सांस घुटेगी।
0: ये क्या है देवी?
1: ये ज्ञान का दिया है जो कभी नहीं बुझता। इसमें प्यार का तेल भरा हुआ है जो कभी समाप्त नहीं होता। तेल में डूबी हुई बाती सत्य की बाती है जो कभी नहीं चुकती। इसमें से निकलने वाली मंगल ज्योति कभी नहीं बुझती। इस ज्योत से न केवल तुम्हारे वरन समस्त मानवता के मन में ज्ञान, प्रेम, सुख, शांति और संतोष का उजाला होगा। अंधेरे को भगाने के लिए फिर तुम्हें मिटने के ये हजार हजार दिए नहीं जलाने होंगे। ये एक अकेला ज्ञान दीपक ही बहुत होगा। इसे संभाल के रखना।
0: धन्य हो देवी माँ, लक्ष्मी माता धन्य हो। मैं आपका दिया हुआ ये ज्ञान दीपक सदा संभाल के रखूंगा और इससे सारी दुनिया में उजाला करता रहूंगा, सारी दुनिया में उजाला करता रहूंगा।
1: तथास्तु। निरक्षरता अंधेरा है, साक्षरता प्रकाश। साक्षर बनो, ज्ञानी बनो, ज्ञान के दीप प्रकाशित होंगे तभी वास्तव में इस देश में दिवाली होगी। दिवाली।

मंगल वरदान हवा महल के अंतर्गत अभी आपने कुंभे श्रीवास्तव द्वारा लिखित और पुरुषोत्तम दारवेकर द्वारा प्रस्तुत ये नाटिका सुनी।

ये है विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम चित्रलोक लेकर हम बस थोड़ी ही देर में हाजिर होंगे।

प्रस्तुत है कार्यक्रम चित्रलोक। आप सभी विविध भारती सुनने वालों का स्वागत करती हूँ। मैं आज हूँ आपके साथ पूजा नरानिया। आइए आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का पहला गीत फिल्म धड़कन से, कुमार सानू की आवाज में, समीर के लिखे बोल, नदीम श्रवण का संगीत।

0: किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
1: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।

0: जैसे कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त, आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
1: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। आइए अब आपको सुनवाते हैं कसूर फिल्म का गीत। उदित नारायण अलका याग्निक का गाया, समीर की लिखे बोल है, धुन बनाई है नदीम श्रवण।

उदित नारायण और अलका याग्निक के युगल स्वरों में कसूर फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। समीर ने इस गीत के बोल लिखे थे, धुन बनाई थी नदीम श्रवण ने।

लीजिए, अंतराल का वक्त खत्म हुआ और हम फिर से लौट आए हैं कार्यक्रम चित्रलोक लेकर। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आइए अब आपको सुनवाते हैं तरकीब फिल्म से जगजीत सिंह और अलका याग्निक की आवाजों में, निदा फाजली का लिखा, आदि श्रीवास्तव का संगीत पद किया गीत।

आइए अब आपको सुनवाते हैं सोनू निगम, श्रेया घोषाल, मधुश्री, बेला शेंडे, कलापनी कोमाकली की आवाजों में पहेली फिल्म का गीत। संगीत पर किया है इस गीत को MM करीम ने।

पहली फिल्म का गीत सुन रहे थे आप सोनू निगम, श्रेया घोषाल, मधुश्री, बीला शिंदे और कलापनी कोमाकली की आवाजों में। अगला गीत गली में चांद निकला, जख्म फिल्म से, अलका याग्निक की आवाजों में, आनंद बख्शी के बोल हैं, संगीत MM करीम का ही है, फिल्म का नाम जख्म।

जख्म फिल्म से अलका याग्निक का गाया गीत आप सुन रहे थे। आनंद बख्शी के बोल थे, एमएम करीम का संगीत, और इसी गीत के साथ कार्यक्रम चित्रलोक अब यहीं संपन्न होता है।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स का लक्ष्य है बहुपक्षीय और समावेशी विश्व व्यवस्था। निर्वाचन आयोग ने 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया SIR के तीसरे चरण की घोषणा की। केरलम में कांग्रेस नेता VD सतीशन ने राज्यपाल से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश किया। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में बारिश, तूफान और बिजली गिरने से 70 से अधिक लोगों की मौत। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच पेइचिंग में वार्ता। होर्मूज जल डमरू मध्य को खोलने पर बल दिया। और गांधीनगर में एशियाई सीनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में अजित नारायण ने पुरुषों के 71 किलोग्राम वर्ग में दोहरे कांस्य पदक जीते। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स बहुपक्षवाद को सशक्त बनाने, सतत विकास को बढ़ावा देने, आर्थिक लचीलापन बढ़ाने और अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था निर्मित करने के लिए मिलकर काम करेंगे। आज नई दिल्ली में श्री मोदी से मुलाकात करने आए ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों और प्रतिनिधिमंडल के प्रमुखों के साथ बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बीच सहयोग को आगे बढ़ाने और ग्लोबल साउथ के देशों की आकांक्षाओं को आवाज देने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है। ये बैठक नई दिल्ली में जारी ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक से अलग हुई। इससे पहले ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के अपने शुरुआती संबोधन में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है।
1: हमारी चर्चाओं का उद्देश्य एक ऐसा सतत विकास सुनिश्चित करना होना चाहिए जो समानता के सिद्धांतों तथा सांझी लेकिन अलग अलग जिम्मेदारी की भावना पर आधारित हो। तकनीकी प्रगति वैश्विक परिदृश्य को बदल रही है। इसका उपयोग सुशासन और समावेशी विकास के लिए प्रभावी रूप से किया जा सकता है। आतंकवाद के खिलाफ सहयोग मजबूत करने पर सभी देशों की गहरी और साझा सहमति है।
0: बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री पारस्परिक हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली के 6 दिवसीय दौरे पर रवाना होंगे। 5 देशों की यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी कल अबू धाबी के लिए रवाना होंगे, जहां वे व्यापार, निवेश, ऊर्जा सुरक्षा और उभरती प्रौद्योगिकियों पर केंद्रित उच्च स्तरीय चर्चाओं के लिए संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे। ये यात्रा दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों में तीव्र वृद्धि के बीच हो रही है। एक रिपोर्ट।
2: भारत के UAE को एक्सपोर्ट्स अब $36.63 billion से अधिक हो गए हैं, जिससे एमिरेट्स भारत का दूसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन बन गया है। प्रमुख एक्सपोर्ट्स में रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, सोना और डायमंड ज्वेलरी, इंजीनियरिंग गुड्स, गारमेंट्स, फार्मास्यूटिकल्स और प्रोसेस्ड फूड शामिल है। इम्पोर्ट्स की बात करें तो UAE से भारत आने वाले सामान में मुख्य रूप से क्रूड ऑयल, सोना और पेट्रोकेमिकल शामिल है। पारंपरिक व्यापार से आगे बढ़ते हुए अब दोनों देशों के बीच उच्च मूल्य वाले क्षेत्रों में भी सहयोग बढ़ रहा है, जिनमें सेमीकंडक्टर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रिन्यूएबल एनर्जी, फिनटेक, हेल्थ केयर, क्रिटिकल मिनरल्स और सिविल न्यूक्लियर एनर्जी शामिल है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबू धाबी।
0: निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान के तीसरे चरण की घोषणा कर दी है। अभियान 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में संचालित किया जाएगा।
3: इस चरण में आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, पंजाब, सिक्किम, त्रिपुरा, तेलंगाना और उत्तराखंड राज्य शामिल हैं। केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव शामिल हैं। अभियान के दौरान 3,94,000 से अधिक बूथ स्तरीय अधिकारी 36,73,00,000 मतदाताओं के घर जाकर से संपर्क करेंगे। तीसरे चरण में हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख को छोड़कर पूरे देश में मतदाता सूची संशोधन का कार्य पूरा हो जाएगा। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
0: केरलम में आज तिरुवनंतपुरम में आयोजित कांग्रेस विधायक दल की बैठक में VD सतीशन को औपचारिक रूप से नेता चुना गया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता VD सतीशन ने आज शाम राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर से मुलाकात की और केरलम में नई सरकार बनाने के लिए औपचारिक रूप से अपना दावा पेश किया। कांग्रेस विधायक

0: थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं आकर्षिता सिंह।

0: की आज शाम तिरुवनंतपुरम में बैठक हुई और उन्होंने वीडी सतीशन को अपना नेता चुना। इस बीच निवर्तमान मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन को सीपीएम के विधायक दल के नेता के रूप में चुना गया। तिरुवनंतपुरम से स्मृति की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: तमिलनाडु में ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम AIADMK के महासचिव एडप्पा डी पलनीस्वामी ने आज राज्यपाल विश्वनाथ अर्लीकर से मुलाकात कर उन्हें एसपी वेलुमड़ी के नेतृत्व वाले AIADMK विधायकों के गुट के संबंध में एक याचिका सौंपी। पूर्व मुख्यमंत्री ने राज्यपाल से इस मुद्दे को अध्यक्ष JCD प्रभाकर के समक्ष उठाने का अनुरोध किया। एसपी वेलुमणि के नेतृत्व वाले गुट के 25 AIADMK विधायकों ने OS मनियन द्वारा जारी विप की अवहेलना करते हुए टीवी के सरकार के पक्ष में मतदान किया था। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: भारत अभियान
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते टीबी रोगी व परिजन को पोषण जांच इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार
2: निक्षय मित्र इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है आपको जानकर हैरानी होगी हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है सरकार ने कहा है कि देश में कच्चे तेल एलपीजी और प्राकृतिक गैस की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाए गए हैं नई दिल्ली में पश्चिम एशिया के घटनाक्रम पर अंतर मंत्रालयी प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि घरेलू एलपीजी आपूर्ति सुचारू रूप से जारी है
4: भारत सरकार ने कई इफेक्टिव स्टेप्स लिए हैं जिसके चलते हमारे पास पेट्रोल डीजल एलपीजी और नेचुरल गैस के पर्याप्त स्टॉक्स अवेलेबल है हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही हैं और एलपीजी प्रोडक्शन भी इंक्रीज किया जा चुका है हमारे किसी भी रिटेल आउटलेट पर और एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप पर कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है सब जगह पर नॉर्मल ऑपरेशन चल रहे हैं
3: पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग सचिव मुकेश मंगल ने बताया कि भारतीय व्यापारिक जहाज हाजी अली ओमान के जल क्षेत्र में कल तड़की आग लगने से कथित तौर पर डूब गया
5: एन इंडियन डो
6: सोमालिया से शारजाह जा रहे भारतीय जहाज हाजी अली पर 13 मई की सुबह ओमान के समुद्री क्षेत्र में हमला हुआ जिससे जहाज में आग लग गई और वो डूब गया जहाज पर सवार चालक दल के सभी 14 सदस्यों को ओमान तटरक्षक बल ने सुरक्षित बचा लिया भारत सरकार ओमान सल्तनत के अधिकारियों भारतीय मिशन के अधिकारियों और संबंधित समुद्री एजेंसियों के साथ संपर्क में है
5: इंडियन मिशन ऑफिशियल्स एंड रिलेवेंट मैरिटाइम एजेंसीज
3: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 7 अपीलों के मद्देनजर अपने संबंधित मंत्रालयों और विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री की अपील के अनुरूप मंत्रालय स्तर पर एक वर्ष तक सोने की खरीद न करने का निर्णय लिया गया है दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली सरकार राजधानी में कल से 90 दिनों तक मेरा भारत मेरा योगदान अभियान चलाने की घोषणा की है
7: दिल्ली सचिवालय में पत्रकारों को संबोधित करते हुए श्रीमती गुप्ता ने कहा कि इस अभियान के अंतर्गत आवश्यक सेवाओं को छोड़कर दिल्ली सरकार के सभी कार्यालय सप्ताह में 2 दिन घर से काम करेंगे मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार निजी क्षेत्र को भी सलाह जारी करेगी कि जहां भी संभव हो सप्ताह में 2 दिन घर से काम करने की नीति अपनाएं वहीं सरकारी वाहनों में पेट्रोल डीजल की खपत 20% तक कम करने का लक्ष्य रखा गया है
8: हर मंडे को हम मेट्रो मंडे के रूप में काम करेंगे जिसमें हम सभी मंत्री हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारी संभव हो मेट्रो से ऑफिस जाएंगे और वापस आएंगे
7: इसके अलावा दिल्ली सरकार ने सप्ताह में एक दिन नो व्हीकल डे मनाने की भी अपील की है आरजू के साथ आकाशवाणी समाचार के लिए शित कुमार वैद्यान
3: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है

0: स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टॉल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने आज बीजिंग में वार्ता की। व्यापार, प्रौद्योगिकी और क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर तनाव के बावजूद दोनों नेताओं ने टकराव के बजाय सहयोग पर बल दिया। व्हाइट हाउस के अनुसार दोनों नेताओं ने इस बात पर सहमति व्यक्त की कि ऊर्जा का निरंतर प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए होर्मुज जल डमरू मध्य खुला रहना चाहिए। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने टकराव की बजाय सहयोग को बढ़ावा देने पर बल दिया और कहा कि चीन और अमेरिका को प्रतिद्वंद्वी नहीं बल्कि साझेदार होना चाहिए। श्री ट्रंप ने कहा कि अमेरिका चीन के साथ व्यापार और निवेश के अवसरों का विस्तार करने के लिए उत्सुक है।
2: अमेरिका और चीन के लोगों में कई समानताएं हैं। हम साहस और उपलब्धि को महत्व देते हैं। दोनों देशों के एकजुट होकर काम करने से हमें इन मूल्यों का उपयोग करके इस क्षेत्र और विश्व के लिए अधिक समृद्धि, सहयोग, सुख और शांति से भरे भविष्य का निर्माण करने का अवसर मिलेगा।
1: इस बीच अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने चीन को चेतावनी दी है कि ताइवान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई एक भयानक गलती होगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग की मुलाकात के बाद ताइवान के प्रति अमेरिका की नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। श्री रूबियो ने ताइवान को लेकर चीन की धमकी पर कोई जवाब देने से परहेज किया है। इससे पहले राष्ट्रपति जिनफिंग ने चेतावनी दी थी कि ताइवान मुद्दे पर गलत तरीका अपनाने से चीन और अमेरिका के बीच टकराव और संघर्ष हो सकता है। ये टिप्पणियां दोनों देशों के बीच ईरान संघर्ष, ऊर्जा सुरक्षा और व्यापार जैसे व्यापक मुद्दों पर हुई बातचीत के दौरान आई। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में बारिश, आंधी और बिजली गिरने से 70 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिला मजिस्ट्रेट और संबंधित अधिकारियों को घटनास्थल का तत्काल सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया है। एक रिपोर्ट।
3: मौसम में आए अचानक बदलाव ने राज्य भर में भारी तबाही मचाई है। आंधी, भारी बारिश और बिजली गिरने से कई लोगों की जान चली गई। प्रयागराज में 21, भदोही जिले में 15, मिर्जापुर में 18, फतेहपुर में 9, बदायूं में 5 और बरेली जिले में 4 लोगों की मौत हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की और निर्देश दिया कि मुआवजा राशि, बचाव अभियान समेत अन्य कार्यों को सोशल मीडिया पर अपडेट किया जाए और सभी जिलों को हर 3 घंटे में हालात का अपडेट भेजने के लिए भी कहा गया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: इस बीच मौसम विभाग ने कल अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरलम, माहे, दक्षिणांतरिक कर्नाटक, पश्चिम बंगाल में हिमालय की तराई क्षेत्रों, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारिककाल और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। गुजरात में एशियाई सीनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में आज अजीत नारायण ने कांस्य पदक अपने नाम किया। पुरुषों के 71 किलोग्राम वर्ग के क्लीन एंड जर्क और समग्र दोनों स्पर्धाओं में अजीत ने पदक हासिल किया। प्रतियोगिता में अजीत कोमल कोहर और ज्ञानेश्वरी यादव के बाद पदक जीतने वाले तीसरे भारतीय बन गए हैं। धर्मशाला में आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस और पंजाब किंग्स के बीच मुकाबला जारी है। पंजाब ने 17वें ओवर में 7 विकेट पर 140 रन बना लिए हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स का लक्ष्य है बहुपक्षीय और समावेशी विश्व व्यवस्था। निर्वाचन आयोग ने 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया SIR के तीसरे चरण की घोषणा की। केरलम में कांग्रेस नेता VD सतीशन ने राज्यपाल से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश किया। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में बारिश, तूफान और बिजली गिरने से 70 से अधिक लोगों की मौत। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के बीच बीजिंग में वार्ता। और गांधीनगर में एशियाई सीनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में अजित नारायण ने पुरुषों के 71 किलोग्राम वर्ग में दोहरे कांस्य पदक जीते। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: ये है विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली।

धड़कन लीजिए, अब प्रस्तुत है कार्यक्रम आपके लिए। कार्यक्रम का पहला गीत नया रास्ता फिल्म से, आवाज मोहम्मद रफी की, साहिल लुधियानवी का लिखा गीत एंड दत्ता का संगीत।

0: हिंदी फिल्म संगीत के स्वर्णिम युग की एक संगीतमय यात्रा।
1: मेरे सपने अब
0: पुराने दिनों की मनमोहक धुनों में गोता लगाएं, सुरों के पंख लगाकर आसमां में उड़ उड़ जाएं।
1: भीगी भीगी रातों में मीठी मीठी बातों में
0: याद रहे, ये वो कैप्सूल है जो धुनों को, आवाज को और यादों को जीवंत रख

वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपके लिए। आर जी बर्मन के संगीत से सजा ये गीत लिखा है गुलजार ने, आवाज लता मंगेशकर की है और फिल्म का नाम है गोलमाल।

फिल्म गोलमाल से लता मंगेशकर का गाया ये गीत आप सुन रहे थे। आइए अब आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में अगला गीत। इस गीत को लिखा है साहिर लुधियानवी ने, राजेश रोशन के संगीत से सजा, फिल्म काला पत्थर का गीत।

0: आकाशवाणी के सेवानिवृत्त कार्यक्रम अधिशासी लवेश कुमार परमार।
1: हम लोग उनके लिए हैं, आकाशवाणी पूरा जो है हमारे सुनने वालों के लिए।
0: अपनी यादें बांटेंगे कार्यक्रम स्मृतियों के स्वर।
1: और प्रोग्राम की दृष्टि से देखोगे तो आप हमारे जितने भी कलाकार हैं, जितने भी हमारे आर्टिस्ट हैं, अनाउंसर्स हैं, उन सबके नाम उनके जवान पे है। क्यों है? क्योंकि उनका प्यार है।
0: 18 मई शाम 7:45 पर।
2: आइए अब आपको सुनवाते हैं अगला गीत। किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में।
3: न्याय विभाग भारत सरकार ने गरीब और जरूरतमंदों को न्याय दिलाने की प्रक्रिया को किया और भी आसान।
4: हाँ बिल्कुल, टेलीलॉ और न्याय बंधु सेवाओं का हो गया है एकीकरण।
3: अब चाहे टेलीलॉ के माध्यम से मुफ्त कानूनी सलाह लेनी हो
4: या न्याय बंधु में पंजीकृत वकीलों से कोर्ट में निशुल्क कानूनी सहायता के लिए जुड़ना हो,
3: अब दोनों एक ही ऐप पर उपलब्ध। डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉगिन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी CSE सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में ये गीत अभी आपने सुना। गुलजार का लिखा, आजी बर्मन का संगीतबद्ध किया फिल्म घर से।
1: जैसे कि आप जानते हैं, विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर। लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने, देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त, आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
0: आशा भोसले का गाया ये गीत सुनिए। शहरयार ने इस गीत को लिखा है, खय्याम का संगीत है, फिल्म का नाम उमराओ जान।

0: उमराव जान फिल्म से ये गीत आपने अभी सुना। शहरयार का लिखा, खय्याम के संगीत से सजा, आशा भोसले की आवाज में।
1: एक बेमिसाल शायर।

0: एक शानदार शख्सियत।
1: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
0: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी,
1: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, उस टीम का जवाब नहीं, जिसने मुझे इतने चढ़े से इन चीजों को संवारने और साकार करने का अवसर दिया।
0: कुछ बेमिसाल किस्से।
1: मैंने पढ़ा जाने कितनी उड़ान बाकी, इस परिंदे में जान बाकी, और दिग्विजय जी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए, ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
0: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 20 मई शाम 4 बजे और 21 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

आइए अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम आपके लिए की ये आखिरी प्रस्तुति। मजनू सुल्तानपुरी का लिखा गीत। इस गीत को संगीत से सजाया है लक्ष्मीकांत प्यारे लाल ने। शागिर्द फिल्म का गीत है। आवाजें हैं मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की।

शागिर्द फिल्म का गीत आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में। मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा गीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की संगीत से सजा और इसी गीत के साथ कार्यक्रम आपके लिए यहीं संपन्न होता है।

आप सुन रहे हैं विविध भारती। यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। आज के फनकार, ये कार्यक्रम होगा बस थोड़ी ही देर में।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान,
2: और बीच में एक गैप था लिटरली, जो आप कह रही हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हूँ, जंप कर जाती हूँ। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
0: ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

कुचामन सिटी राजस्थान के जिला मुख्यालय में 14 मई 1943 को प्रसिद्ध निर्माता ताराचंद बड़जात्या के यहाँ जन्मे राजकुमार बड़जात्या। खनन इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए 1962 में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर में इन्होंने दाखिला लिया, लेकिन पिता के अनुरोध पर राजश्री प्रोडक्शंस में शामिल होने के लिए इन्होंने पढ़ाई अधूरी छोड़ दी।

राजश्री प्रोडक्शन एक फिल्म निर्माण और वितरण कंपनी। इसकी स्थापना 1947 में हुई थी, जिसमें मुख्य रूप से हिंदी फिल्में शामिल रही हैं। राजश्री प्रोडक्शंस के बैनर तले बनी फिल्में मनोरंजन की मांग को हमेशा ही पूरी करती रही हैं। फिल्मों के वितरण और प्रोडक्शंस के कार्यों को पूरा पूरा सफलतापूर्वक अंजाम देना राजकुमार बड़जात्या ने आरंभ कर दिया था। एक निर्माता के रूप में 1994 से लेकर 2019 तक ये सक्रिय रहे। एसोसिएट प्रोड्यूसर के रूप में पिया के घर से लेकर मैंने प्यार किया तक का सफर इन्होंने पूरा किया। सह निर्माता के रूप में 1979 की फिल्म नैया से ये जुड़े।

राजकुमार बड़जात्या एक फिल्मकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। बड़जात्या परिवार का एक ऐसा सदस्य जिन्होंने फिल्म निर्माण और वितरण के अपने पारिवारिक व्यवसाय को बड़ी ही शिद्दत से निभाया। फिल्म निर्माण की अपनी विरासत में इन्होंने कई पारिवारिक मूल्यों के साथ ली हुई लोकप्रिय संगीतमय कलात्मक फिल्मों का निर्माण किया। एक फिल्मकार की संपत्ति और समाज में मान मर्यादा उनकी फिल्मों से ही पहचानी जाती है। राजकुमार बड़जात्या हिंदी सिनेमा जगत में बेहतरीन कथाओं, अभिनय, गीत संगीत के माध्यम से आम और खास दर्शकों को उनके पसंदीदा विषयों की सार्थक फिल्में देने के लिए हमेशा याद किए जाएंगे। राजकुमार बड़जात्या सबसे पहले 1972 की फिल्म पिया का घर से जुड़े। बासु चटर्जी की लिखी और निर्देशित इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था ताराचंद बड़जात्या ने।

राष्ट्रीय प्रोडक्शंस की फिल्म सौदागर, जिसके निर्देशक थे सुधेंदु रॉय, नूतन, अमिताभ बच्चन, पद्मा खन्ना अभिनीत। इस फिल्म के राजकुमार बड़जात्या सहयोगी निर्माता थे। एसोसिएट प्रोड्यूसर के रूप में राजकुमार बड़जात्या ने तपस्या फिल्म में काम किया, एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म। इस फिल्म का निर्देशन अनिल गांगुली ने किया और निर्माता थे ताराचंद बड़जात्या। ये फिल्म अनुभवी बांग्ला उपन्यासकार आशा पूर्णा देवी की कहानी पर आधारित थी। फिल्म में राखी, परीक्षित साहनी, ललिता पवार ने मुख्य भूमिकाएं अदा की थी। संगीत रविन्द्र जैन का था। इस फिल्म ने 1976 वर्ष की संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार जीता था। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री रही राखी। सन 1980 में इसी फिल्म को तेलुगु भाषा में भी बनाया गया। सन 1976 की चितजोश, 1980 की एक बार कहो, 1984 की सारांश और 1989 की सुपरहिट फिल्म मैंने प्यार किया में भी राजकुमार बड़जात्या एसोसिएट प्रोड्यूसर के रूप में रहे।

1994 में आई हम आपके हैं कौन, एच के यानी हम आपके हैं कौन, राजकुमार बड़जात्या की एक निर्माता के रूप में आई संगीतमय रोमांटिक ड्रामा फिल्म, जिसे इनके पुत्र सूरज बड़जात्या ने लिखा और निर्देशित किया और राष्ट्रीय प्रोडक्शंस के बैनर तले इसका निर्माण किया गया। माधुरी दीक्षित और सलमान खान अभिनीत 5 अगस्त 1994 को रिलीज हुई ये फिल्म वर्ष की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई। इस फिल्म ने फिल्म वितरण के नए तरीकों को अख्तियार कर साफ सुथरी कहानी के साथ भारतीय फिल्म उद्योग को हिंसक कहानी ली हुई फिल्मों के बीच बदलाव का एक सुकून भरा एहसास दिया। साथ ही साथ निर्माण और वितरण का तरीका भी बदला इस फिल्म ने। राष्ट्रीय पुरस्कार, फिल्म फेयर पुरस्कार और अन्य अवार्ड्स में इस फिल्म की

एचएएच के बाद 1999 में आई निर्माता राजकुमार बड़जात्या की हम साथ साथ हैं। अजीत कुमार बड़जात्या, कमल कुमार बड़जात्या, अपने परिवार के सदस्यों के साथ राजकुमार बड़जात्या ने इस फिल्म का निर्माण किया। कहानी और निर्देशन सूरज बड़जात्या का था। ये फिल्म भी उस वर्ष की सबसे अधिक कमाई करने वाली और दशक की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर बन गई। समीक्षकों ने भी इसे खूब सराहा। ये फिल्म टोरंटो में 6 स्क्रीन्स पर कनाडा के सिनेमा घरों में प्रदर्शित होने वाली पहली बॉलीवुड फिल्म थी। वैसे ये फिल्म अपनी निर्धारित प्रदर्शित तिथि से पहले ही रिलीज हो जाती, पर संगीतकार राम लक्ष्मण ने साउंड ट्रैक एल्बम की जांच के लिए समय लिया। पोस्ट प्रोडक्शन, सिनेमेटोग्राफी, कोरियोग्राफी के साथ साथ अन्य सभी काम पूरे होने के बाद आखिरकार 5 नवंबर 1999 को स्क्रीन्स पर ये फिल्म आई और

2002 में फिल्म आई हम प्यार तुमसे कर बैठे। जुगल हंसराज और टीना राणा इस फिल्म में मुख्य कलाकार थे। 2003 की फिल्म मैं प्रेम की दीवानी हूँ जो चितचोर पर आधारित फिल्म थी और इस फिल्म के कलाकार थे ऋतिक रोशन, करीना कपूर और अभिषेक बच्चन। राशि प्रोडक्शंस की इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया था यशराज फिल्म्स ने।

राजकुमार बड़जात्या द्वारा निर्मित सन 2006 में फिल्म आई विवाह। मुख्य कलाकार थे शाहिद कपूर और अमृता राव। रोमांटिक ड्रामा फिल्म जिसमें सगाई से लेकर शादी तक के सफर की कहानी को बखूबी प्रदर्शित किया गया था।

एक विवाहक ऐसा भी, इस नाम की फिल्म लेकर आए राजकुमार बड़जात्या साल 2008 में। मुख्य भूमिकाएं निभाई थी ईशा कोप्पिकर, सोनू सूद और आलोक नाथ ने। ये फिल्म आशापूर्णा देवी की कहानी पर आधारित

हम राजकुमार बड़जात्या द्वारा निर्मित फिल्मों का जिक्र कर रहे हैं। 2010 में इन्होंने फिल्म बनाई इस लाइफ में, 2011 में लव यू मिस्टर कलाकार। ये फिल्में राजकुमार बड़जात्या की अन्य फिल्मों की तरह लोकप्रिय नहीं हुई।

इसी क्रम में 2011 में सचिन पिलगांवकर के निर्देशन में राष्ट्रीय फिल्म्स की प्रसिद्ध फिल्म अखियों के झरोखों से की सीक्वल आई जाना।

पहचाना, जिसमें सचिन और रंजीता ने मुख्य भूमिकाएं निभाई। ये फिल्म भी कोई खास प्रभाव नहीं छोड़ पाई। फिर 2015 में आई राजकुमार बड़जात्या द्वारा निर्मित फिल्म। ये फिल्म उस वर्ष की दूसरे नंबर की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी। फिल्म थी प्रेम रत्न।

सलमान खान, सोनम कपूर, नील नितिन मुकेश अभिनीत ये फिल्म दर्शकों के मापदंड पर खरी उतरी। 2019 में एक निर्माता के रूप में राजकुमार बड़जात्या अपनी आखिरी फिल्म लेकर आए, हम चार। अभिषेक दीक्षित लिखित और निर्देशित इस फिल्म में चार नए चेहरों को पेश किया गया था। ये राजश्री प्रोडक्शंस प्राइवेट लिमिटेड की 58वीं फिल्म थी।

0: राजकुमार बड़जात्या का 21 फरवरी 2019 को मुंबई के एक अस्पताल में निधन हो गया। एक निर्माता के रूप में राजकुमार बड़जात्या ने पारिवारिक फिल्मों की अपने परिवार की परंपरा का निर्वहन करते हुए भारतीय दर्शकों के लिए अपनी जमीन से जुड़ी हुई कहानियों को, भावनाओं को, रिश्तों को बड़े ही जतन और प्यार से सिनेमा के पर्दे पर प्रदर्शित किया। इनकी फिल्में भारतीय सिनेमा इतिहास में बेहतरीन कथानकों और प्रस्तुतिकरण के लिए हमेशा ही चिन्ही जाएंगी। और जब भी दर्शक इन फिल्मों को देखेंगे, राजकुमार जी की कथा शैली और निर्माण कला के मुरीद हुए बिना नहीं रह सकेंगे। आज के फनकार, ये कार्यक्रम केंद्रित था फिल्म निर्माता राजकुमार बड़जात्या पर। आलेख और स्वर जी श्याम का, और इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी तेजश्री कांबले।
1: आज के फनकार।

भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की, श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर।

0: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा छाया गीत कार्यक्रम आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं वीको वज्रदंती पेस्ट।

नाशाद हैं जो शाद भी हो जाएंगे, एक हल्के से तबस्सुम से आबाद भी हो जाएंगे। गुलशन में उनका आना कुछ ऐसा ही होता है, फूलों में खुशबू, शाखों पे तराना होता है।

रफ्तार धड़कनों की बताती है कि वो आए हैं, शाखे गुल की लचक है या शानों पे जुल्फों की बिखरी हैं लटें, ये परेशानियां वो आंखों को झुकाने की अदा, अपने आप को खुद से ही छुपाने की अदा, यूं लगता है कि आज ये दिल संभल न पाएगा, शबनमी कतरों पे रात का नूर बरस ही जाएगा।

0: अंधेरे का इशारा समझो, अब तेरा दिल का जलाना होगा।
1: तुम बड़े हो, मुझे जाने दो।
0: जा सकोगी?
1: मुझे जाना होगा।
0: जाओ।
1: छोड़ो
0: नहीं।
1: छोड़ो ना।
0: आज की रात तो दिल तोड़ो ना।

भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं छाया गीत। छाया गीत कार्यक्रम में आज बस इतना ही। दीजिए इजाजत संगीता श्रीवास्तव को। नमस्कार।

जैसे कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।

0: ये आकाशवाणी जोधपुर का FM सन सिटी चैनल है। FM बैंड 102.1 MHz पर कुछ ही देर में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से पहले हिंदी और फिर अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स बहुपक्षवाद को सशक्त बनाने, सतत विकास को बढ़ावा देने, आर्थिक लचीलापन बढ़ाने और अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था निर्मित करने के लिए मिलकर काम करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बीच सहयोग को आगे बढ़ाने और ग्लोबल साउथ के देशों की आकांक्षाओं को आवाज देने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है। यह बैठक दिल्ली में जारी ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक से अलग हुई। इससे पहले ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के अपने शुरुआती संबोधन में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है।
2: हमारी चर्चाओं का उद्देश्य एक ऐसा सतत विकास सुनिश्चित करना होना चाहिए जो समानता के सिद्धांतों तथा साझी लेकिन अलग अलग जिम्मेदारी की भावना पर आधारित हो। तकनीकी प्रगति वैश्विक परिदृश्य को बदल रही

0: है। इसका उपयोग सुशासन और समावेशी विकास के लिए प्रभावी रूप से किया जा सकता है। आतंकवाद के खिलाफ सहयोग मजबूत करने पर सभी देशों की गहरी और साझा सहमति है।
1: प्रधानमंत्री मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली के 6 दिवसीय दौरे पर रवाना होंगे। 5 देशों की यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी के लिए रवाना होंगे, जहां वे राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता व्यापार, निवेश, ऊर्जा सुरक्षा और उभरती प्रौद्योगिकियों पर केंद्रित उच्च स्तरीय चर्चा करेंगे। यह यात्रा दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों में तीव्र वृद्धि के बीच हो रहा है। सरकार ने कहा है कि देश में कच्चे तेल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाए गए हैं। नई दिल्ली में पश्चिम एशिया के घटनाक्रम पर अंतर मंत्रालयीय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि घरेलू एलपीजी आपूर्ति सुचारू रूप से जारी है। निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान के तीसरे चरण की घोषणा कर दी है। अभियान 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में संचालित किया जाएगा। केरलम में आज तिरुवनंतपुरम में आयोजित कांग्रेस विधायक दल की बैठक में VD सतीशन को औपचारिक रूप से नेता चुना गया। विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता VD सतीशन ने आज शाम राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर से मुलाकात की और केरलम में नई सरकार बनाने के लिए औपचारिक रूप से अपना दावा पेश किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने आज बीजिंग में वार्ता की। व्यापार, प्रौद्योगिकी और क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर तनाव के बावजूद दोनों नेताओं ने टकराव के बजाय सहयोग पर बल दिया। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने टकराव के बजाय सहयोग को बढ़ावा देने पर बल देते हुए कहा कि चीन और अमेरिका को प्रतिद्वंदी नहीं बल्कि साझेदार होना चाहिए। श्री ट्रंप ने कहा कि अमेरिका चीन के साथ व्यापार और निवेश के अवसरों का विस्तार करने के लिए उत्सुक है। इस बीच अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने चीन को चेतावनी दी है कि ताइवान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई एक भयानक गलती होगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात के बाद ताइवान के प्रति अमेरिका की नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। इससे पहले राष्ट्रपति जिनपिंग ने चेतावनी दी थी कि ताइवान मुद्दे पर गलत तरीका अपनाने से चीन और अमेरिका के बीच टकराव हो सकता है। मौसम विभाग ने कल अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरलम, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। मौसम में आए अचानक बदलाव ने उधर उत्तर प्रदेश में भी भारी तबाही मचाई। आंधी, भारी बारिश और बिजली गिरने से कई लोगों की जान चली गई। प्रयागराज में 21, भदोही जिले में 15, मिर्जापुर में 18, फतेहपुर में 9, बदायूं में 5 और बरेली जिले में 4 लोगों की मौत हो गई। और खेलों में गुजरात में एशियाई सीनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में आज अजीत नारायण ने कांस्य पदक अपने नाम किए। पुरुषों के 71 किलोग्राम भार वर्ग के क्लीन एंड जर्क और समग्र दोनों स्पर्धाओं में अजीत ने पदक हासिल किया। प्रतियोगिता में अजीत, कोमल कोहर और ज्ञानेश्वरी यादव के बाद पदक जीतने वाले तीसरे भारतीय बन गए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Renuka. Prime Minister Narendra Modi has said that under India's chairmanship this year, BRICS will work together to strengthen multilateralism, promote sustainable development, enhance economic resilience, and build a more inclusive world order. Interacting with foreign ministers and heads of delegation of BRICS countries who called on Mr. Modi in New Delhi today, Mr. Modi said BRICS has emerged as an important platform for advancing cooperation among emerging economies and giving voice to the aspirations of the Global South. The meetings took place on the sidelines of the BRICS foreign ministers' meeting, which is being held in New Delhi. Earlier, in his opening remarks at the BRICS foreign ministers' meeting, External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar said that peace and security remain central to the global order.
3: Our discussions must advance sustainable development while upholding principles of equity and common but differentiated responsibilities. Technological advancement